प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्केयम् राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। ओम शम। सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता पार्वती शुभ का सादर सप्रेम अभिवादन। आज के इस प्रातःकालीन शुभ बेला में जागृति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सत्यार्थ प्रकाश, लिखने का उद्देश्य और प्रयोजन। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का रचयिता आर्य समाज का प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद।
3: कल 14 जून को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ने आज दिन की 11 बजे से क्यूबिप नगर पालिका में रक्तदान का आयोजन किया है। इससे पूर्व एक पद यात्रा भी निकाली जाएगी। इस आयोजन के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन युवाओं से कम उम्र से ही रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जो न सिर्फ अन्यों की जान बचाने में मदद दे सकता है बल्कि खुद के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि लेबनान सहित पूरे मध्य पूर्व में सभी सैन्य कार्यवाहियां समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता कायम हुआ है। जानकारियों के अनुसार इस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस संधि पर हस्ताक्षर होंगे। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जल्द ही तेल सप्लाई सामान्य पर लौटेगा। उनके इस बयान के तुरंत बाद वैश्विक मंडी में तेल के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर रहकर हमारे इलाके पर पड़ेगा अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण पूर्व और ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं और रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो वाले इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए आज रात से दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सरल प्लाटो पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 24 से 26 डिग्री

सेल्सियस, शहरी इलाकों पर न्यूनतम 22 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:43 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 के मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ है। जी हाँ, आज सोमवार 15 जून 2026 और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। और कहते हैं ना, हर सुबह एक नई उम्मीद का दिया जलाती है और बस हौसला रखना पड़ता है। और सुबह की रोशनी हमेशा यही याद दिलाती है कि अंधेरी रात कभी हमेशा नहीं रहती। और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए साथ निभाऊंगी, 9 बजे तक आप भी साथ निभाएगा। और सबसे पहले तो चलिए सुनते हैं जागृति।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्केयम् राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। ओम शम। सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता पार्वती शुभ का सादर सप्रेम अभिवादन। आज के इस प्रातःकालीन शुभ बेला में जागृति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सत्यार्थ प्रकाश, लिखने का उद्देश्य और प्रयोजन। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का रचयिता आर्य समाज का प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। सत्यार्थ सत्य और अर्थ शब्दों से बना है। सत्य का अर्थ सच्चाई है, जो झूठ नहीं है, जो मिथ्या नहीं है। सत्य असत्य पर अपने मंतव्य में महर्षि जी ने लिखा है कि मेरा कोई नवीन कल्पना का मत मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना मनवाना और जो असत्य है उसको छोड़ना छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। प्रकाश का अर्थ ज्योति है, उजाला है, रोशनी है। सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश सत्य ज्ञान का प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश वेद ज्ञान का कभी न बुझने वाला प्रकाश है। वेदों में ईश्वरीय सत्य ज्ञान का भंडार है। वेदों का सत्य ज्ञान मानवता के लिए अमृत के सदृश है। अपने वेद विद्या शिक्षा का अध्ययन पूरा करके अपने गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती जी से विदा लेते हुए महर्षि दयानंद जी ने भारत माता को अज्ञानता के अंधकार से निकालने और मुक्त करने का जो वचन दिया था, उन्होंने उसे पूरी श्रद्धा, लगन और आत्मीयता के साथ निभाया। महर्षि दयानंद जी तुरंत अपने लक्षित समाज सुधार कार्य में लग गए। इस जटिल कार्य के आरंभ में महर्षि जी के सामने

बहुत सारी चुनौतियों आई। सूर्य तो सूर्य ही होता है, भला उसे कौन सी आंधी प्रकाश देने से रोक सकती है। सभी चुनौतियों का सामना करते हुए महर्षि दयानंद जी ने पूरे संकल्प के साथ अपने साधे हुए कार्यों को अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए एक एक करके अपनी योजनाओं को कार्य सिद्धि में परिणत करने लगे। महर्षि दयानंद जी का प्रथम तथा श्रेष्ठतम और महत्वपूर्ण उद्देश्य था पूरे संसार को वेद की ओर लौटाना। बैक टू वेदास, क्रीन्वन्तु विश्वमार्यम्, पूरे विश्व को आर्य बनाए। वसुदेव कुटुम्बकम्, पूरे संसार को एक परिवार बनाए। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। पूरे संसार के मानवों के बीच एक ईश्वरवाद का सिद्धांत लागू करना। महर्षि दयानंद जी भारतवर्ष के उस समय की संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज आदि का नाश करते हुए प्रचलन को रोकने का साहस रखते थे। भारतवर्ष जो कभी आर्यों का देश माना जाता था, जो आर्यवर्त नाम से पूरे विश्व में कीर्तिमान हो रहा था, जिसका यश सुगंध के रूप में चारों दिशाओं में फैल रहा था, आज ऋषियों की यही पावन धरती अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने पूरे समाज को साथ लिए कुरीतियों के दल दल में फंस रही थी, भूल भुलैया में गुम हो चुकी थी। आरंभ में महर्षि दयानंद जी अनेक शहरों, गांवों और तीर्थ स्थानों पर वेदों का प्रचार प्रसार करते रहे। महर्षि जी की मेधा बुद्धि वेदों का ज्ञानकोश बन गई थी। महर्षि दयानंद जी एक चमत्कारी प्रचारक थे। वे जो कुछ बोलते थे उसे पूरे प्रमाण के साथ बोलते थे और उनके श्रोता उनके प्रवचनों से अत्यंत प्रभावित हुआ करते थे। महर्षि जी की वाचा शक्ति जनता में एक परोक्ष दर्शिता, क्लेवायंस की क्रांति, रिफॉर्म वाला जागरण करवाते थे। महर्षि जी की कार्यशैली में एक मूलधन मूल्य, कैपिटल वैल्यू की स्पष्टता, क्लैरिटी पाई जाती है। कभी भी उनके सत्य वचन न मानने पर विरोधियों से अपने विश्वास और आत्मबल के आधार पर महर्षि जी शास्त्रार्थ करके अपने सत्य वचनों को मनवाते थे। अपने परम तथा विश्वसनीय सहयोगियों की विनती और आग्रह से महर्षि दयानंद जी ने अपने उद्देश्य पूर्ति से संबद्ध कार्यों की शैली में ठोस प्रगतिशील बदली लाना स्वीकार किया। उन अनुयायियों में एक पंडित केशव चंद्र शेखर जी थे और दूसरा श्री राजा जय कृष्ण दास जी थे। महर्षि दयानंद जी अपने प्रवचन तथा प्रचार प्रसार वेदों की भाषा संस्कृत में करते थे। पंडित केशव चंद्र शेखर जी का आग्रह यह था कि सभी लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते थे। यदि महर्षि जी हिंदी भाषा में प्रवचन करते तो सभी के समझ में आता। महर्षि जी ने स्वीकार करते हुए तब से हिंदी भाषा में प्रवचन करने लगे। बाद में महर्षि जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। श्री राजा जय कृष्ण दास जी ने निवेदन करते हुए महर्षि जी के समक्ष अपना विचार रखा। उन्होंने बताया कि महर्षि जी के प्रवचन को संस्कृत से बदलकर जन समूह की भाषा हिंदी में करना सराहनीय और लाभकारी होगा। फिर भी श्रुति रूप से श्रोतागण इन प्रवचनों का लाभ अपने तक ही सीमित रखेंगे। यदि इन प्रवचनों को लिखित रूप दिया जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी इससे पूरा लाभ उठाती। महर्षि जी ने इस विचार को स्वीकृति में बदली और कार्य आरंभ हुआ। महर्षि जी बोलते जाते थे और उनके वक्तव्यों को

0: पंडित केशव चंद्र जी उनको लिपिबद्ध करते जाते थे। सामान्यतः लिखने का यह संग्रह लगभग 2.5 महीनों में पूरा हुआ। महर्षि दयानंद जी ने इस संग्रह को, जिसे पुस्तक या धर्म ग्रंथ का आकार दिया, उनका नामकरण हुआ, क्योंकि यह ग्रंथ सत्य वचनों से वैदिक संस्कृति और वैदिक दर्शन का दर्पण सिद्ध हुआ। समाज सुधार संबंधी ज्ञान से भरपूर किया गया। उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा गया। महर्षि दयानंद जी ने अपने अध्ययन काल में लगभग 300 से अधिक धर्म ग्रंथों का चयन किया। उन्होंने इन सभी का उदाहरण तथा प्रमाण अपने प्रवचनों में देते थे। उनका उल्लेख अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में भी किया। आवश्यकता अनुसार सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में इन मनीषियों, ऋषियों, विद्वानों तथा वेदों के नाम अंकित है, जैसे चारों वेद, मनुस्मृति, शतपद ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, सभी उपनिषद, पूर्व मीमांसा, अष्टाध्यायी पाणिनि, चाणक्य नीति, भर्तृहरि और अनगिनत विचारक और ग्रंथ। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को नियमित संकलन के साथ 14 समुलासों में विधिवत पिरोया गया। सत्यार्थ प्रकाश के समुलासों में वैदिक संस्कृति तथा धर्म से जुड़ा मर्यादित जीवन दर्शन का अपार शिक्षाप्रद ज्ञान शोभायमान है। सत्यार्थ प्रकाश में इन विषयों का विस्तार है। एक ईश्वरवाद, ओम आदि ईश्वर के नाम। 2, संतान के पालन पोषण का वर्णन। 3, ब्रह्मचर्य पाठ्य पुस्तकें और पढ़ाई लिखाई। 4, गृहस्थ आश्रम का वर्णन। 5, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों का वर्णन। 6, राजधर्म पर। 7, वेद और ईश्वर पर। 8, सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। 9, विद्या और मोक्ष। 10, आचार अनाचार, भक्ष्य अभक्ष्य। 11, मत मतांतर। 12, चार्वाक, बौद्ध और जैन मतों पर। 13, ईसाई मत। 14, मुसलमानों का मत। इस ग्रंथ की पूर्णता महर्षि जी के मूल उद्देश्यों की कार्य सफलता का प्रमाण है। पाठकों की बुद्धि में इस ग्रंथ का ज्ञान आज भी अंकुरित हो रहा है, जिसका अनुवाद लगभग 27 भाषाओं में हुआ, जो मरती हुई भारतीय संस्कृति की औषधि बनी। आधुनिक युग में वैदिक साहित्य का दर्शन का विश्व कोश बना। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

0: जी हाँ दोस्तों, कहते हैं संसार की रीत को हमेशा आसान नहीं होता। कभी लोग बिना वजह साथ छोड़ देते हैं तो कभी अनजान लोग अपनापन दे जाते हैं। तो चलिए 6:20 होने को है और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। अभी के लिए सुनते हैं सत्यार प्रकाश पर विशेष कार्यक्रम और भूलिएगा नहीं 6:30 समाचार। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

शांति। आदरणीय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती तोरिया राम भोजन का सादर नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष पर आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज का विषय है महर्षि दयानंद सरस्वती की कालजयी रचना सत्यार्थ प्रकाश और वेद। सत्यार्थ प्रकाश कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह अज्ञान के अंधकार को मिटाकर सत्य का प्रकाश दिलाने वाला एक दिव्य पुस्तक है। महर्षि दयानंद जी ने इसी उद्देश्य से वेदों के शाश्वत ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का मुख्य प्रयोजन सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में स्थापित करना था। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि मानव जाति को कुरीतियों से मुक्त कर वैदिक ज्ञान और तर्क के मार्ग पर ले जाना था। इस महान ग्रंथ की रचना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सत्य का प्रचार, लोगों को वेदों के शाश्वत और सार्वभौमिक ज्ञान से परिचित कराना, ताकि वे सही गलत का निर्णय स्वयं कर सकें। सामाजिक सुधार, समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करके समाज को एक नई दिशा देना।

ना। धार्मिक मंत मंत्रांतरों की समीक्षा। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों की मान्यताओं का तार्किक विश्लेषण करना ताकि लोग बिना किसी पक्षपात के सत्य को अपना सकें और भ्रांतियों का त्याग कर सकें। श्रोताओं, यदि इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया जावे तो कहना पड़ता है कि सत्यार्थ प्रकाश से बढ़कर इन तीनों रोगों की और कोई औषधि नहीं है। वैदिक धर्म के प्रेमियों को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो रूपरेखा स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म की हमारे सम्मुख रखी है उससे उत्तम और इनके विस्तार से किसी भी ग्रंथ में नहीं पाई जाती। श्रोताओं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर जिस वैदिक धर्म सनातन धर्म की रूपरेखा तैयार की उसका मूल उद्देश्य समाज को वेदों की ओर लौटो का संदेश देकर शुद्ध और तार्किक मार्ग पर लाना था। उन्होंने धर्म को किसी अंधविश्वास या रूढ़ि के रूप में नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और नैतिक जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी दयानंद द्वारा रेखांकित वैदिक धर्म के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं। एक, ईश्वरवाद। वैदिक धर्म केवल एक ही निराकार सर्वव्यापक और सच्चिदानंद ईश्वर की मानता है। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ईश्वर अजन्मा है। तीन, अनादि तत्व। स्वामी जी ने वैदिक दर्शन के अनुसार तीन तत्वों को अनादि, हमेशा रहने वाला और स्वतंत्र माना। ईश्वर जो सृष्टि का रचयिता, न्यायकारी और व्यवस्थापक है। जीव जो कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने में ईश्वर के अधीन है। प्रकृति जड़ तत्व जिससे यह भौतिक संसार बनता है। वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को ईश्वरीय ज्ञान माना गया है। वेद स्वतः प्रमाण है। यह मंत्र स्पष्ट करता है गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था, जन्म के आधार पर जाति प्रथा का पूर्ण विरोध किया गया। वैदिक रूपरेखा के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता, ज्ञान और कर्म से होता है। सभी मनुष्यों को, चाहे वे किसी भी कुल के हो, वेद पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने का सम्मान अधिकार है। सामाजिक समानता और नारी सशक्तिकरण। समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी यजुपवीत धारण करने, वेद पढ़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। पांच, महायज्ञ दैनिक कर्तव्य। प्रत्येक मनुष्य के लिए पांच दैनिक कर्मों कर्तव्यों का पालन अनिवार्य बताया गया। ब्रह्मयज्ञ से ईश्वर की उपासना, संध्या और स्वाध्याय। देवयज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि
और स्वास्थ्य के लिए अग्निहोत्र।

0: पितृयज से माता पिता, गुरुओं और वृद्धों की सेवा व सत्कार। बलि वैश्य देव यज्ञ पशु पक्षियों और समाज के असहाय जीवों को भोजन देना। अतिथि यज्ञ विद्वानों, संन्यासियों और धार्मिक अतिथियों का स्वागत सत्कार करना। श्रोताओं, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी की वह विरासत है जो हमें अपने वेदों की ओर लौटने का संदेश देती है। सत्य को अपने जीवन में अपनाएं और मानवता को भलाई के लिए कार्य करें। यही इस ग्रंथ के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी का मानव जाति को एक अनमोल उपहार है। यह हमें सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ और मानवतावादी बनाता है। इस महान ग्रंथ का अवश्य अध्ययन करें, इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और विश्व में अज्ञान का नाश और सत्य का प्रकाश फैलाएं। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: सुबह की ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि, केयरर्स के पेशेवर प्रशिक्षण जैसे कई प्रस्ताव दिए हैं। ये घोषणा आज 15 जून को बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में मंत्री अशोक सुबो ने की। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर आज फिर से लातूकनी का दौरा करेंगे। पिछले 4 दिनों से वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इलाके में गंदे पानी की पंपिंग जारी रहे और GECC लिमिटेड प्रभावित क्षेत्र से मृत मछलियां हटाए। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के 5वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है। 14 से 23 साल की उम्र के नौजवानों को आवेदन भेजने के लिए अगले 22 जून तक का समय। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि लेबनान सहित पूरे मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाइयां समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता कायम हुआ। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि, घरों और रेजिडेंशियल केयर होम्स के केयरर्स के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक फंड की स्थापना और 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर चिकित्सा सेवाओं के विस्तार जैसे प्रस्ताव दिए हैं। ये घोषणा आज 15 जून को बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुबो ने अपने संदेश में की। उन्होंने बुजुर्गों की बेहतर सुरक्षा के लिए बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मौजूदा सहायता मैकेनिज्म्स पर फिर से गौर करने और नए कानूनी ढांचे स्थापित करने की बात कही। उन्होंने मॉरिशन समाज के विकास में बुजुर्गों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार प्रकट किया। उनको सुनते हैं, उनसे बात की राजमिला सीतामणि ने।
4: Nous ne pouvons pas aussi un changement fondamental lui-même à la loi Protection of Elderly Persons Act. C'est quelque chose d'important. Elle pour redéfinir toute la notion de maltraitance lui-même.
3: ये बात मंत्री अशोक सुबो ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित और वृद्ध जनों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय शोषण तथा उपेक्षा से लड़ने के लिए समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रसारित एक संदेश में कही। इस दिन का उद्देश्य मॉरिशस और विश्व भर में वृद्धजनों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना भी है। मंत्री अशोक सुबो के अनुसार, देश को चल रहे सामाजिक परिवर्तनों का सामना करने के लिए गहन संस्थागत सुधार करने होंगे, साथ ही राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों का बेहतर पुनर्वितरण भी करना होगा। उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्सन्स एक्ट 2005 के तहत संशोधित किए जाने वाले नियमों को अंतिम रूप देने की भी घोषणा की ताकि बुजुर्गों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से मजबूती से बचाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून की धारा 9 को पिछली सरकारों द्वारा कभी लागू नहीं किया गया था जो ऐसे विशिष्ट नियमों को अपनाने की अनुमति देती हैं। अब से देश के सभी बुजुर्ग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स से लाभ उठा सकेंगे, चाहे वे घर पर रहते हों या किसी रेजिडेंशियल केयर होम में। प्रस्तावित संशोधनों में दुर्व्यवहार की एक नई परिभाषा शामिल है जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और वित्तीय शोषण, दुर्व्यवहार, परित्याग और उपेक्षा शामिल हैं। मंत्रालय दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने को एक नागरिक कर्तव्य बनाने की भी योजना बना रहा है। इसके अलावा वृद्धजनों के लिए ओम्बुड्समैन फॉर द एल्डरली बिल नामक एक नया कानून तैयार किया जा रहा है जिसका उद्देश्य बुजुर्गों की सुरक्षा को और मजबूत करना है। आखिर में दुर्व्यवहार के कई मामलों की रिपोर्ट के बाद रेजिडेंस के नियंत्रण, उनकी निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रेजिडेंशियल केयर होम्स रेगुलेशंस 2005 में संशोधन किया जा रहा है। इस तत्काल उपाय के बाद मॉरिशस में वृद्धजनों के लिए सुविधाओं से संबंधित कानूनी ढांचे और सार्वजनिक नीतियों में व्यापक सुधार किया जाएगा। कल 14 जून को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ने आज दिन के 11 बजे से क्यूपिप नगर पालिका में रक्तदान का आयोजन किया है। इससे पूर्व एक पदयात्रा भी निकाली जाएगी। इस आयोजन के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन युवाओं को कम उम्र से ही रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जो न सिर्फ अन्यों की जान बचाने में मदद दे सकता है बल्कि खुद के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। ज्यादा जानकारियां ब्लड डोनर्स एसोसिएशन से शोभानंद सिंह गुलाम जी के साथ।
5: दुनिया भर में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनावल जला 14 जून को। जैसे कि जाने लजा 2004 से ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ई वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनावत हुआ जा और हई बरिस हमनी के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ब्लड डोनर्स एसोसिएशन इन कोलाबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिलजुल के और म्यूनिसपालिटी ऑफ क्यूपिप के साथ मनावब जा हमनी टाउन हॉल क्यूपिप में मंडे 15 जून को 11 बजे। तो एकर से आगे हमनी एगो मार्च करत है जा एगो सेंसिटाइजेशन मार्च शुरू हुई फॉरेस्टसाइड विनर्स से। वो 10 बजे शुरू हुई। हमनी के साथ पुलिस बैंड रही, प्रिजन बैंड रही और माजोगेट लोग भी रही और कितने कॉलेज के चीज़ लोग बात जो कैपिप के रेजियों में हवन जा वो लोग सब मिलजुल के हमनी के एगो मार्च करब जा। 10 बजे शुरू करब जा विनर्स फॉरेस्ट साइड से और समाप्त हो टाउन हॉल कैपिप लगे।
3: राष्ट्रीय बजट प्रस्तुति के लिए और कुछ ही दिन रह गए हैं। शुक्रवार 19 जून को वित्त मंत्री बजट 2026-2027 प्रस्तुत करेंगे। इस बीच देश के कई आर्थिक ऑपरेटर अपने प्रस्ताव और सुझाव सामने रख रहे हैं। इनमें डेलॉइट मॉरिशस भी शामिल हैं। कंपनी ने वित्तीय क्षेत्र, छोटे एवं मध्यम उद्योगों, डिजिटाइजेशन, व्यापारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित कई सिफारिशें तैयार की हैं। हमारे सहयोगी शैली नियबन ने डेलॉइट मॉरिशस की कानूनी और नियामक मामलों की निदेशिका स्मिता सिबरन के साथ बात की। विस्तार अभी उड़ोई।
6: डेलॉइट के लिए प्राथमिकता स्पष्ट है, विकास को नई गति देना, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और एक अधिक लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। कंपनी का मानना है कि वित्तीय क्षेत्र को ऐसे उपायों के माध्यम से एक केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए जो मॉरिशस में अधिक निवेश को आकर्षित करने में सक्षम हो।
7: Il est impératif pour offrir des incitations attractives aux investisseurs.
6: जितना हो सके निवेश की संभावनाओं को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इससे उद्योगों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। एक और प्रमुख क्षेत्र डिजिटलाइजेशन है, डिलॉयट एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रणनीति का समर्थन करता है जिसे लक्षित निवेश यानी कि टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स का बल मिले। इसके साथ ही कार्यक्षमता से जुड़े कौशलों का विकास और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग को भी पहचान की गई प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।
7: La digitalisation de notre économie doit être soutenue avec des investissements ciblés et une stratégie nationale claire.
6: हमारी अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन लक्षित निवेशों के समर्थन पर संभव होगा, इसीलिए राष्ट्रीय रणनीति अपनानी होगी जैसे कि ट्रेनिंग, व्यावसायिकता पर ज्यादा बल तथा मानवीय संसाधन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कंपनी ने छोटे एवं मध्यम उद्योगों को भी अधिक सहायता देने की मांग की जिन्हें रोजगार सृजन और विकास का एक आवश्यक माध्यम माना जाता है।
7: Nous plaidons pour des mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises afin de renforcer
6: देश के आर्थिक क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में SMEs की मदद चाहिए। निर्यात के प्रति हमारी निर्भरता को कम करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकें। स्मिता सिबरन ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि अधिक टिकाऊ ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन अब एक व्यापक विषय बन चुका है जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
3: वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर आज फिर से लातूकोनी का दौरा करेंगे। पिछले चार दिनों से वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इलाके से गंदे पानी की पंपिंग जारी रहे और GECC लिमिटेड प्रभावित क्षेत्र से मृत मछलियां हटाए। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जनरल मैनेजर नवीन जवाहिर के अनुसार 6000 लीटर की क्षमता वाले 3 सैनिटेशन ट्रकों ने 50 से ज़्यादा चक्कर लगाए हैं और इसके अतिरिक्त GECC लिमिटेड की लोरियों के भी 106 चक्कर हुए हैं। असल में एक सोलर फार्म परियोजना के सिलसिले में पिछले 11 जून को GECC लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे खुदाई कार्यों के दौरान वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई। इस पाइपलाइन के जरिए मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल जोन से गंदा पानी निकलता है। पाइपलाइन की मरम्मत गुरुवार शाम तक ही कर दी गई थी। GECC लिमिटेड को इस क्षेत्र में काम करने के लिए अपने सभी परमिट प्रस्तुत करने होंगे। नवीन जवाहिर के अनुसार वहां के वेस्ट वाटर को मोताजरा को ट्रीटमेंट केंद्र पहुंचाया जाता है जहां एनवायरनमेंट एक्ट के मानकों के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है। जलवायु परिवर्तन का असर स्थानीय कृषि उत्पादन पर लगातार पड़ रहा है। सूखा, भारी बारिश और मौसम की अनिश्चितताएं पैदावार के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाना और किसानों को सहायता प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इन उपायों से स्थानीय उत्पादन की रक्षा करने के साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। लगभग एक महीने में एल नीनो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना शुरू कर देगा जो 8 महीने तक चल सकता है और इसका असर मॉरिशस पर भी पड़ेगा। समुद्री वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार इस अवधि के दौरान स्थानीय मौसम अप्रत्याशित हो सकता है जिसमें लंबे समय तक सूखा, अत्यधिक भारी बारिश और कृषि, समुद्री व खाद्य सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना का सामना करने के लिए संसाधनों को तैयार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही ये दूर की घटना लगे लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। माधवी जागवनाथ, यशना मिश्रा।
8: प्रशांत महासागर में होने वाले उतार चढ़ाव का मॉरिशस की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमारा द्वीप एल नीनो घटना से प्रभावित हो सकता है। समुद्र वैज्ञानिक वासेन कुपायमुटु के अनुसार प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की इस घटना का प्रभाव जुलाई से शुरू होकर लगभग 8 महीनों तक बना रह सकता है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। जुलाई अगस्त तक इसका प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ेगा। संभव है कि गर्मी के पूरे सीजन में बारिश ही न हो। मॉरिशस में इस जलवायु परिवर्तन के दौर का पर्यावरण, कृषि और समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
9: Avec cette masse d'eau chaude qui arrive,
8: गर्मी के कारण कोरल्स प्रभावित होंगे, तापमान ज्यादा होगा, सूखा होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकता है.
9: Et la sécheresse importante qui va être là va créer beaucoup d'impact sur notre sécurité alimentaire.
8: समुद्र वैज्ञानिक का कहना है कि इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. गर्मी और नमी एक साथ होगी तो हमारा देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है.
9: 45-50 degrés, donc l'effet ce qu'on appelle wet bulb. Donc notre pays sera grandement affecté.
8: बसंत कोपाईमुतु के अनुसार एल नीनो कोई असाधारण या नई घटना नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता और तीव्रता में लगातार वृद्धि होती दिखाई दे रही है. यही कारण है कि इस पर पहले से कहीं अधिक सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता है.
9: Tous les services météorologiques internationaux sont en train de mettre en garde.
8: अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा हर जगह इसकी चेतावनी दी जा चुकी है. इस बार एल नीनो के कारण एक ही समय पर कई प्राकृतिक प्रकोप एक साथ होंगे, व्यवस्था करनी चाहिए. एल नीनो हमें याद दिलाता है कि हमारा छोटा टापू देश भी वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के बड़े प्रभावों से अछूता नहीं. इसकी अवधि लगभग 8 महीने तक रह सकती है, इसलिए इसके संभावित प्रभावों का समय रहते आंकलन करने और उससे निपटने के लिए निरंतर निगरानी बेहद आवश्यक है.
3: नेशनल यूथ पार्लियामेंट के 5वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है. राष्ट्रीय सभा द्वारा आयोजित इस पहल के तहत 14 से 23 साल की उम्र के नौजवानों को संसदीय कार्य प्रणाली समझने, समसामयिक मुद्दों पर बहस करने तथा लीडरशिप और कम्युनिकेशन क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं विकसित करने का मौका मिलेगा. आवेदन भेजने के लिए अगले 22 जून तक का समय है. राजमीला सीतामणि, अभ्युदय.
6: नेशनल यूथ पार्लियामेंट यानी राष्ट्रीय युवा संसद का 5वां संस्करण आगामी 13 और 14 अगस्त को पोटलवी स्थित राष्ट्रीय सभा में आयोजित किया जाएगा. 8 जून से उन युवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो संसद की कार्य प्रणाली को समझना चाहते हैं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं. इस पहल का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति युवाओं की रुचि विकसित करना और साथ ही उनके संचार यानी कि कम्युनिकेशन, नेतृत्व तथा निर्णय लेने के कौशलों को मजबूत करना है. भाग लेने के लिए आवेदकों का मॉरिशस का नागरिक होना अनिवार्य है. 22 जून 2026 तक उनकी आयु 14 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें फ्रेंच तथा अंग्रेजी जैसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. जो लोग पहले के किसी संस्करण में भाग ले चुके हैं वे इसके पात्र नहीं हो पाएंगे. पंजीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है और इसके साथ जन्म पत्र की एक प्रति संलग्न करना आवश्यक है. चयनित प्रतिभागियों को 3 दिवसीय अनिवार्य ट्रेनिंग में भी भाग लेना होगा. आवेदन भेजने की अंतिम तारीख सोमवार 22 जून को शाम के 4 बजे तक निर्धारित की गई है. सभी तरह के संचार केवल ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे. इच्छुक युवा अधिक जानकारी के लिए नेशनल असेंबली की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
3: रुख करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि लेबनान सहित पूरे मध्य पूर्व में सभी सैन्य कार्रवाइयां समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता कायम हुआ है. जानकारियों के अनुसार इस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस संधि पर हस्ताक्षर होंगे. इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जल्द ही तेल सप्लाई सामान्य पर लौटेगा. उनके इस बयान के तुरंत बाद वैश्विक मंडी में तेल के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई. आज से जिनेवा में शुरू हो रहे G7 शिखर सम्मेलन के विरोध में कल वहां वृहद प्रदर्शन हुए. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ हुई, दुकानों के शीशे तोड़े गए और एक गाड़ी में आग लगाई गई. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. लोगों का कहना है कि ये बड़े देश पैसे और ताकत के बल पर छोटे देशों और उनकी जनता पर दबाव डालते हैं. चलिए जानते हैं मौसम का हाल। आम हालत दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर

हमारे इलाके पर पड़ेगा अगले 24 घंटों के लिए। अनुमान आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। रात के दौरान भी पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए आज रात से दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 22 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:43 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि, केयरर्स की पेशेवर प्रशिक्षण जैसे प्रस्ताव दिए हैं। ये घोषणा आज बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में मंत्री अशोक सुभो ने की। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर आज फिर से लातूर क्योनी का दौरा करेंगे। पिछले चार दिनों से वे इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इलाके से गंदे पानी की पंपिंग जारी रहे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के पांचवें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन चलाई जा रही है। 14 से 23 साल की उम्र के नौजवानों को आवेदन भेजने के लिए अगले 22 जून तक की मोहलत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि पूरे मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाइयां समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता कायम हुआ। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फैजान हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Shok samachar suniye. Robert Kennedy Street, Réunion Morel Petit Raffrémé. Robert Kennedy Street, Réunion Morel Petit Raffrémé, qui a 6 ans, qui est 81 years old, Shri भारद्वाज सुकन, श्री भारद्वाज सुकन जो लाल सुकन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती निशी सुकन के मकान रोबर्ट केनेडी स्ट्रीट रेनियो मॉल पे चाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाह इच्छी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। पांचू स्ट्रीट स्टैनले रोजिल में, पांचू स्ट्रीट स्टैनले रोजिल में इकसठ साल की 61 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देविका मायपत, श्रीमती देविका मायपत पैदाशी नाम विदेशी जो राधा शौतर्स नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान पांचू स्ट्रीट स्टैनले रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोआमा महल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। एवेन्यू श्रीनिवासन पाल्मा कथोबोन में, एवेन्यू श्रीनिवासन पाल्मा कथोबोन में गाराज दया के बगल में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री नारायण दत्त जानकी प्रसाद, श्री नारायण दत्त जानकी प्रसाद जो आनंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले NTC के पूर्व ट्रैफिक सुपरवाइजर थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके मकान अवनी श्रीनिवासन पाल्मा काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डे 3 PM। पीरो लेन कॉन्डमास में, पीरो लेन कॉन्डमास में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड श्री विशाल उस्मान, श्री विशाल उस्मान जो दादू पैंत नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनकी माँ श्रीमती सावित्री

मन के मकान पियरुलेन कौंदमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में, लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड श्री हरी सुकन इनकी मृत्यु हो गई है। केयर थी आज दिन के 2 बजे, केयर थे आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री गुंतु सुकन के मकान लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू दिया 2 PM। गुदा लेन मेबर्ग में, गुदा लेन मेबर्ग में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती खुमती टिप्सु पिताशी नाम बालचंद इनकी मृत्यु हो गई है। केयर थी आज दिन के 10:30 बजे, केयर थी आज दिन के 10:30 बजे इनके मकान गुदा लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM। प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासे थ्रियोले में, 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जानेगी मुतु पैदाशी नाम पुम्बिया जो रागिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज दिन के 10 बजे, केयर थी आज दिन के 10 बजे इनके पति श्री रामास्वामी मुतु के मकान प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासे थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। कौबानान गांव बामे 46 साल के 46 ईयर्स ओल्ड श्री महेश्वर नाथ सिंह सुंदर जो सचिन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज सुबह 10 बजे, केयर थी आज सुबह 10 बजे की माँ श्रीमती लीलावती सुंदर के मकान कौबानान गांव वासी उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। आस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड श्री विनय रघुबर जो विकास नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज दिन के 11 बजे, केयर थी आज दिन के 11 बजे के मकान आस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहोश गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। रॉयल रोड रोस्टेया में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड श्रीमती परमावती पुरंग पिताशी नाम दुबरी जो परमावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज दिन के 1 बजे, केयर थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे श्री तुलसी शीतल तिल पुरंग के मकान रोड होस्टिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। रॉयल रोड लावंचिया में 43 साल की 43 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रामेश्वरी शीतल पैदाशी नाम जोहल जो मनीषा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज दिन के 2 बजे, इनके अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पति श्री मदन शीतल के मकान रॉयल रोड लावंचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। रॉम्प्लेमोर मॉडल बेयर में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड श्री गोपाल शामलोल जो सूरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवयानी शामलोल के मकान रॉम्प्लेमोर मॉडल बेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस सोमवार 15 जून को पितों आर्य समाज में शाम के 5:30 बजे

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: वर्ल्ड कप 2026 का पहला वीकेंड भारी भरकम वीकेंड रहा और काफी गोल भी बने। जर्मनी की ओर से मेनी गोल। पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही कुआसाओ टीम के खिलाफ द मैनचेस्टर की भारी जीत 7-1 से। इस बार इसे धुलाई या पछाड़ना नहीं कहेंगे, क्योंकि कुआसाओ की बहादुर टीम के लिए यह पहला वर्ल्ड कप मैच था और ऐतिहासिक पहला गोल भी। जर्मनी का पहला गोल एमेचा ने स्कोर किया, फिर कुमिनेंसिया ने इक्वलाइज किया। इसके बाद फर्स्ट हाफ में श्लोटरबर्ग और हावर्ट्स स्कोर कर पाए। सेकंड हाफ में मुसियाला, ब्राउन, उंडव और हावर्ट्स का एक एक गोल, मतलब काय हावर्ट्स का डबल। जर्मनी के 7 गोलों के से सबसे कीमती रहेगा कुआसाओ का वर्ल्ड कप में पहला ऐतिहासिक गोल। केवल 158,000 लोगों का छोटा सा टापू पर जिगर वाले फुटबॉल खिलाड़ी। ये ग्रुप ई का मैच था। इसी ग्रुप में मैनचेस्टर यूनाइटेड का खिलाड़ी अहमद जालो हीरो बना। रेगुलेशन टाइम के अंतिम मिनट में सब्स्टिट्यूट अहमद जालो ने आइवरी कोस्ट को जीत दिलाई। आइवरी कोस्ट 1-0

0-0. इक्वाडोर की टीम ने काफी कोशिश की, गेंद 3-3 बार पोस्ट से टकराया। दो साल बाद इक्वाडोर की हार हुई। अब 20 जून को आइवरी कोस्ट का मुकाबला जर्मनी से होगा, इक्वाडोर वर्सेस कुरासाओ। ग्रुप एफ में न किसी की जीत न किसी की हार, नेदरलैंड्स 2 जापान 2। दो दो बार नेदरलैंड्स की टीम लीड ले पाई पर जवाब हिम्मत नहीं हारी। जापान की टीम दो दो बार इक्वलाइज किया। पहला गोल वर्जिल वान डाइक ने स्कोर किया सेकंड हाफ में। 6 मिनट बाद नाकामुरा ने इक्वलाइज किया। 7 मिनट बाद समरविल ने फिर से नेदरलैंड्स को आगे भेजा पर 89वें मिनट पर कामादा ने जापान को एक अंक दिलाया। डिजर्विंग 1 पॉइंट, इस एक अंक को कमाया जापान ने। नेदरलैंड्स के दोनों गोल ग्रेवेनबर्ग के पास पर रहे। नेदरलैंड्स का अगला मैच 20 जून को स्वीडन के खिलाफ, जापान खेलेगा ट्यूनिजिया के खिलाफ। ग्रुप एफ में इसी समय स्वीडन और ट्यूनिजिया के बीच मैच चल रहा है। कुछ समय पहले स्वीडन 2-0 से आगे था आयारी और ईसाक का एक के गोल। ग्रुप जी में आज 11 बजे बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट, ग्रुप एच में 8 बजे स्पेन वर्सेस केप वर्दे और कल सुबह 2 बजे सऊदी अरब वर्सेस यूरुग्वे। स्पेन वर्सेस केप वर्दे ये मैच आज रात 8 बजे एमबीसी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा 8 बजे, जबकि सभी मैच आप देख पाएंगे एमबीसी प्ले पर। अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्द कीजिए। असिस्टेंस के लिए एमबीसी को फ़ोन कर सकते हैं या फिर एमबीसी में उसके खास डेस्क में जाकर जानकारियां ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसफर न्यूज़, रियल मैड्रिड में जोसे मोरिनो बॉस हैं। चेल्सी के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ। आते ही उसने चेल्सी के कुकुरेला को साइन करने की ओर कदम बढ़ाया। लगभग 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर समझौता हो रहा है। अभी कुकुरेला स्पेन के साथ वर्ल्ड कप में खेलने गया है। रियल मैड्रिड अब बेर्नार्डो सिल्वा, डेंजेल डम्फ्रीज और कुनाते को साइन करने जा रहा है। पारी सेंट जर्मे के स्ट्राइकर ब्राडली बाकोला के पीछे हैं लिवरपूल और आर्सेनल। पारी सेंट जर्मे उसे सही दाम पर बेचने के लिए तैयार है। इधर मार्कस राशफोर्ड को साइन करने के लिए बायर्न म्यूनिख भी रेस में है। अभी बार्सा के यहाँ है लोन पर, मैनचेस्टर यूनाइटेड उसे बेचना चाहता है। ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। इंडिया की महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन का टारगेट रखा 170। स्मृति मंदाना 68 रन बना पाई, ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा केवल 10 रन देकर 5 विकेट ले पाई। टीम इंडिया के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के पास 2-2 अंक हैं। ग्रुप में नेदरलैंड्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका हैं। भारतीय लड़कियां अब बुधवार को खेलेंगी नेदरलैंड्स के खिलाफ। इधर फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के बार्सिलोना कैटालोनिया ग्रां प्री में फेरारी पर सवारी करते हुए लेविस हैमिल्टन की जीत हुई। 2 सालों के बाद हैमिल्टन एक ग्रां प्री जीत पाया। रसेल दूसरे स्थान पर आया, लांडो नोरिस तीसरे स्थान पर। चैंपियनशिप लीडर रेस पूरा नहीं कर पाया। एंटोनेली अब हैमिल्टन से 41 अंक आगे है। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको बता दें कि इस समय स्वीडन 2-1 से आगे हैं। हाफ टाइम पूरा हुआ, सेकंड हाफ में क्या होगा आपको बताएंगे RN2 पर 7:40 पर। और भूलिएगा नहीं 8:30 स्पेशल वर्ल्ड कप ये होगा RN2 पर। नमस्कार, आप सभी लोगों को करवीन की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: 7:09 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो चलिए आप सबका स्वागत है। मैं हूँ उषा कौर। जी हाँ, मैं हूँ उषा कौर, यहाँ पर साथ निभाने के लिए। और प्रस्तुत है सुबह का नजराना प्रोग्राम, आज सोमवार 15 जून 2026। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आप लोग साथ दे रहे हैं और इस दिन की शुरुआत साथ मिलकर करेंगे। कहते हैं ना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानते। और अपने सपनों पर विश्वास रखो क्योंकि वही आपकी मंजिल का रास्ता दिखाती है। तो चलिए यहाँ पर सुनने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं चिंतन से। डॉक्टर शांति महावीर जी को सुनते हैं।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहाँ विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जिसे परमात्मा का सहारा मिल जाता है, उसे दुनिया के सहारे की जरूरत नहीं रहती है। जहाँ परमात्मा आगे होते हैं, वहाँ हार कभी पीछे नहीं होती है। इसलिए संसार वालों पर नहीं, संसार बनाने वाले पर भरोसा रखिए।

7:16 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। जी हाँ, चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं रेडियो सुर्खियाँ। अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम और इसके बाद जी हाँ 8:00 भोजपुरी समाचार और समाचारों के बाद आपकी राशि हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ आप सुनेंगे 8:50 पर। 9:00 संक्षिप्त समाचार और नीतूषा के साथ भूलिएगा नहीं आप सुन पाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम 9 से 10 तक। 10:00 संक्षिप्त समाचार और 10:00 के बाद संक्षिप्त समाचारों के बाद जी हाँ भक्ति धारा कार्यक्रम और जिसके दौरान आप सुन पाएंगे मानस मंथन प्रोग्राम। 11:00 संक्षिप्त समाचार और सायदा के साथ शाम फरोजन प्रोग्राम और 12:00 मराठी प्रोग्राम मिसेस दरमिया द्वारा आप सुनेंगे। आरासी के साथ जी हाँ आरासी के साथ तमिल प्रोग्राम दोपहर के 1:00 से 2:15 तक। 1:45 रंगारंग प्रोग्राम आप सुन पाएंगे गुजराती प्रोग्राम रत्ना के साथ। होंग होंग द्वारा चाइनीज प्रोग्राम 2 से 2:30 आपकी पसंद प्रोग्राम आपका मनपसंद प्रोग्राम रत्ना प्रस्तुत करेगी 4:00 तक और 4:00 प्रकाश कार्यक्रम। 4:15 तेलुगु प्रोग्राम राजेंद्र के साथ और रत्ना प्रस्तुत करेगी 5:30 बच्चों का कार्यक्रम। 6 से 6:30 तक जी हाँ भूलिएगा नहीं समाचार और जिन द्वारा 6:30 चाइनीज प्रोग्राम पुवाना प्रस्तुत करेगी तमिल प्रोग्राम रात के 7:00 और 7:30 वंदना के साथ तेलुगु प्रोग्राम मराठी प्रोग्राम गीत गंगा नितिन बापू प्रस्तुत करेगा रात के 7:50 पर। भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम रोशनी के साथ रात के 8:10 पर। सैयदा सुबाई के साथ जी हाँ 8:40 पर महफिल शब प्रोग्राम। भोजपुरी तर का प्रोग्राम रात के 9:00 से 11:00 तक किरण जानकी प्रस्तुत करेगी और गिनिशा द्वारा सुनहरे पल प्रोग्राम आप सुनेंगे रात के 11:00 से 12:00 तक और रात के 12:00 से कल सुबह के 6:00 तक का हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट आप एंजॉय कर पाएंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रेडियो सुर्खियाँ।

तेरा मेरा साथ रहे। जी हाँ दोस्तों, धूप हो या छाव हो, हम तो हमेशा आपका साथ देंगे, ये वादा रहा। चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी। होशियारी पर एक वृद्ध माली पूरी जिंदगी फूल उगाता रहा। उसने कभी बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी और ना ही दुनिया की चतुराई सीखी। लोग अक्सर कहते तुमने होशियारी ना सीखी, इसीलिए जिंदगी में बहुत पीछे रह गए। माली मुस्कुराकर चुप रह जाता। एक दिन तेज आंधी आई, बहुत से लोग अपने स्वार्थ और होशियारी में उलझे रहे, लेकिन माली ने सबके बगीचे और पौधे बचाने में मदद की। जब आंधी थम गई तो लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ फूल ही नहीं, रिश्तों को भी संभाल कर रखा। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, इसने होशियारी नहीं सीखी लेकिन इंसानियत सीख ली, और अक्सर इंसानियत की एक सीख हजार होशियारियों से बड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हर बात में होशियार बनना ज़रूरी नहीं, कभी कभी अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है।

7:40 हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पर एक से बढ़कर एक गीत आप लोगों के नाम। और कहते हैं ना, जब गाना अच्छा होता है तो दिन भी अच्छी तरह से शुरू होता है। और यहाँ पर आपके तमाम मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के लिए हम आपको कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोमांटिक गाना उन सभी लोगों के लिए जो इस समय जुड़े हुए हैं और शायद खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो चलिए इस गाने के साथ आप गुनगुनाइए।

पल पल दिल के पास तुम रहते हो जहाँ किशोरा की आवाज़ में, और ये गाना फिल्म ब्लैकमेल से लिया गया। कहते हैं नसीब पर इतना भी भरोसा मत करो कि मेहनत छूट जाए, और मेहनत पर इतना भी घमंड मत करो कि नसीब का किरदार भूल जाए। और जिंदगी दोनों के बीच का एक खूबसूरत इम्तिहान है दोस्तों, इसीलिए हर बार नसीब को दोष देना आसान होता है, लेकिन सच ये है कि कई बार ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो हमें मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी होता है। चलिए अगला गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में दो बदन फिल्म से लिया गया, नसीब में मिलेगा जो लिखा है।

जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब और उनकी आवाज़ लाखों में एक है। दोस्तों आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। कौन सा रिश्ता साथ रहेगा, कौन बीच रास्ते छोड़ जाएगा, कौन सी दुआ कबूल होगी और कौन सा ख्वाब अधूरा रह जाएगा, ये सब वक्त के पर्दे में छुपा है। इसीलिए ज़िंदगी को इतनी सख्ती से मत पकड़ो कि उसकी खूबसूरती ही खो जाए। जो आज आपका है उसकी कदर करो, क्योंकि कल का यकीन ना किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। चलिए, आपने साथ दिया इस खूबसूरत प्रोग्राम में, बहुत धन्यवाद। 7:52 हुए हैं। अगला गाना सुनते हैं, वक्त फिल्म से लिया गया, 1965 में रिलीज हुई, आशा जी की प्यारी आवाज में। और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 8:00 के भोजपुरी समाचारों की ओर। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय बजट 2026-2027 खातिर केयरर्स अलावेंस में वृद्धि। घर आर रेजिडेंशियल केयर होम के केयरर्स लोग के पेशेवर प्रशिक्षण खातिर लोग प्रारंभिक फंड की स्थापना। आर 85 वरिष्ठ से जस्ती के उम्र के बर्जन लोग खातिर घर पर ही चिकित्सा सेवा के विस्तार जैसन प्रस्ताव दिले बाटे। घोषणा आज 15 जून के बुजुर्ग लोग पर ही दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुभो अपन संदेश में करलन। उ बर्जन लोग के बेहतर सुरक्षा खातिर बदलल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मौजूदा सहायता मेकानिज्म पर ही फिरो से गौर करे के और नवा कानूनी ढांचा स्थापित करे की बात बोले हवन। उमर्शन समाज के विकास में बुजुर्ग लोग के महत्वपूर्ण योगदान खातिर ओ लोग के आभार प्रकट करलन। काल 14 जून के मनावल गल विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में ब्लड डोनर्स एसोसिएशन आज दिन के 11 बजे से क्यूपिप नगर पालिका में रक्तदान के आयोजन कर ले बाटे। एक से अगते एगो पद यात्रा निकालल जाए। ये आयोजन खातिर स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय की सहयोग प्राप्त होता। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर लोग आज फिर सिलासू क्लिनिक के दौरा करियन जा। गल 4 दिन से वो लोग इस बात पर ध्यान देवत हन जा कि इलाका से गंदा पानी पंपिंग करे के कार्य जारी रही और GECC लिमिटेड प्रभावित क्षेत्र से मरल मच्छी हटाए। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जनरल मैनेजर नवीन जवाहिर के अनुसार 6,000 लीटर के क्षमता होला 3 गो सैनिटेशन ट्रक वहाँ से 50 ले जस्ती चक्कर लगैले बाटे और एक अतिरिक्त GECC लिमिटेड के लॉरी के भी 106 गो चक्कर होल बा। असल में एगो सोलर फार्म परियोजना के सिलसिला में गल 11 जून के ई कंपनी देने से चलावल जाए होला खुदाई कार्य के दौरान वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एगो पाइपलाइन के टूट गल रहल। ई पाइप के जरिए मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल जोन से गंदा पानी निकलेला। पाइपलाइन के मरम्मत बीफे सांझले ही कर देवल गल रहल। लगभग 1 महीना में एलनीनो वैश्विक जलवायु के प्रभावित करे के शुरू करी जे 8 महीना ले चले सकी और एक असर मॉरिशस पर भी पड़े सकी। समुद्री वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ लोग के अनुसार ये अवधि के दौरान स्थानीय मौसम अप्रत्याशित हो सकी जेकर में लंबा बखत ले सूखा जस्ती मोटका पानी और कृषि समंदर और खाद्य सुरक्षा पर ही एक गंभीर प्रभाव पड़े सकी। विशेषज्ञ लोग के अनुसार ये घटना के सामना करे खातिर संसाधन के तैयार करे के जरूरी है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के 5वां संस्करण खातिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलावल जाता। राष्ट्रीय सभा देने से आयोजित पहल के तहत 14 से 23 बरिस की उम्र के नौजवान लोग के संसदीय कार्य प्रणाली समझे के समसामयिक मुद्दा पर ही बहस करे के और लीडरशिप तथा कम्युनिकेशन क्षेत्र में अपन क्षमता विकसित करे के मौका मिली। आवेदन भेजे खातिर अवत 22 जून तक के मोहलत बा। दूसरे देश के खबर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शबाज

0: शरीफ ऐलान कर ले हुआ कि लेबनान के संगे संगे पूरा मध्य पूर्व में सैन्य कार्यवाही समाप्त करे खातिर अमेरिका और ईरान के बीच एगो शांति समझौता कायम होल बा। जानकारी के अनुसार ई सुख के स्विट्जरलैंड में ई संधि पर ही हस्ताक्षर करल जाए। तय रहल भोजपुरी के समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मनी की खबर सुना जा। गोबेक नदी स्ट्रीट रेनियो मोगल पे चिराफे में 81 बरिस के 81 नौ के शिभरद्वाज सुकन जे लाल सुकन नाम से जसी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी श्रीमती निशी सुकन के खरे गोबेक नदी स्ट्रीट रेनियो मोगल पे चिराफे से उठा के अंतिम संस्कार खाते दाहुची की श्मशान भूमि ले जाल जाए। पांचू स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में 61 बरिस की 61 नौ के श्रीमती देविका मायपत पैदाशी नाम विदेशी जे राधा शौतेज नाम से जस्ती जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घर ए पांचू स्ट्रीट स्टैनली रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तमाम मिलके श्मशान भूमि ले जाल जाए। अविनी श्रीनिवासन पालमा का थोबोन में गाराज दया लगे 78 बरिस के 78 के श्री नारायण दत्त जानकी प्रसाद जे आनंद नाम से जस्सी जान जातरलन और पहले सेंते के ट्रैफिक सुपरवाइजर रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर घर अविनी श्रीनिवासन पालमा का थोबोन से उठा के अंतिम संस्कार का खातिर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाल जाए। पीरू ले नकों दे मास में 45 बरिस के 45 अंक के श्री विशाल उस्मान जे दादू पैंत नाम से जस्ती जाल जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा उनकर माँ श्रीमती सावित्री उस्मान के घरे पीरू ले नकों दे मास से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुई की श्मशान भूमि ले जाल जाए। लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में 89 बरिस के 89 अंक के श्री हरी सुकन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा श्री गंतो सुकन के घरे लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो के श्मशान भूमि ले जाल जाए। गुदा लेन मेबर्ग में 83 बरिस के 83 अंक के श्रीमती खुमती टिप्सू पैदाशी नाम बालचन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बज के आधा उनकर घर एक उदलेन मायबू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तो वो मेबा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। प्रिंस दे गाल प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा का से त्रियोले में 65 बरिस के 65 अंके श्रीमती जानेगी मुतु पैदाशी नाम पुम्बियन जे रागिनी नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर पति श्री रामास्वामी मुतु के घरे प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा का से थ्रियोली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दाहुची के श्मशान भूमि ले जाल जाए। कौबानान गौबा में 46 बरिस के 51 जो के श्री महेश्वरनाथ सिंह सुंदर जे सचिन नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर माँ श्रीमती लीलावती सुंदर के घरे कौबानान गाँव बुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाल जाए। अस्तोया रोड गुडलैंड में 49 बरिस के 59 के श्री विनय रघुबर जे विकास नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरे अस्तोगिया रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बाघोश गुडलैंड के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड रोस्टेया में 86 बरिस के 84 के श्रीमती परमावती पुरंग पैदाशी नाम दुबरी जे परमावती नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज

दिन के 1 बजे उनका बेटा श्री तुलसी शीतल पुरंग के घरे रारोद गोष्ठी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गाँव गप के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रारोद लावांचमी 43 बरिस के कान 3 जों के श्रीमती रामेश्वरी शीतल, श्रीमती रामेश्वरी शीतल पैदाशी नाम जोहल जे मनीषा नाम से जस्सी जाल जात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर पति श्री मदन शीतल के घरे रॉयल रोड लावांचे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौ दमास के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉम्प्लेमोर मौदालबे में 59 बरिस के 59 वों के श्री गोपाल शामलोल, श्री गोपाल शामलोल जी सूरज नाम से जस्सी जान जात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर पत्नी श्रीमती देवयानी शामलोल के घरे ओंप्लेमो मौदालवे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्रेमानियों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवारों के संगे हमने की संवेदना है।

0: आज 8:25 हुए हैं और चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, नमस्कार आपको। और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस सुबह का नजराना प्रोग्राम, मैं उषा कौर साथ निभाने के लिए। और या आज सोमवार 15 जून 2026 आपको सुनाने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। साथ दीजिए
1: आपकी राशि रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस पर। एरीज मेष राशि,
0: ये सप्ताह ऊर्जा और साहस से भरपूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और आप अपनी नेतृत्व क्षमता से लोगों को प्रभावित करेंगे। नौकरी या व्यापार में प्रगति के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, किंतु अहंकार और जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। और धन की स्थिति सुधरेगी पर खर्च भी बढ़ सकता है। लकी नंबर है 9, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: ये सप्ताह स्थिरता और प्रगति का संकेत दे रहा है। आप अपने कामों को धैर्य और योजना से पूर्ण करेंगे। व्यापार में लाभ के योग हैं। प्रेम जीवन में विश्वास और समर्पण बढ़ेगा। धन की स्थिति सुदृढ़ होगी और पुराने रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। लकी नंबर है 2, लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: ये सप्ताह संपर्क और वार्तालाप से लाभ दिलाने वाला है। नए लोगों से मिलना भविष्य में उपयोगी साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता रखना आवश्यक है, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है। धन के नए स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य में नींद और आराम पर ध्यान देना चाहिए। लकी नंबर है 5, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: यह सप्ताह भावनाओं से भरा रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर अधिक सजग रहेंगे। पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं। प्रेम संबंध गहरे होंगे, किंतु कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार होगा। धन का प्रबंधन सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य में तनाव से बचना होगा। लकी नंबर है 7, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेव सिंह राशि,
0: यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण और उत्साह रहेगा, किंतु नियंत्रण आवश्यक है। धन की स्थिति मजबूत होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु कर्मी से सर्दी से सावधान रहें। लकी नंबर है 4, लकी कलर है सुनहरा रंग।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: ये सप्ताह योजना और मेहनत का पूरा फल देने वाला है। आप अपने कामों को व्यवस्थित रूप से पूरा करेंगे। नौकरी में प्रशंसा मिलेगी। प्रेम जीवन स्थिर और मधुर रहेगा। धन के मामले में सुधार होगा और निवेश से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य में पेट संबंधी समस्या हो सकती है। लकी नंबर है 8, लकी कलर है हरा रंग।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: ये सप्ताह संबंधों में संतुलन बनाए रखने का है। साझेदारी के काम में सफलता मिल सकती है। प्रेम जीवन में मधुरता और

0: आकर्षण बना रहेगा। नए संबंध बनने के योग हैं। धन की स्थिति स्थिर रहेगी और स्वास्थ्य में थकान और कमर दर्द हो सकता है। लकी नंबर है 6, लकी कलर है गुलाबी रंग।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: ये सप्ताह कहाँ सोच और मजबूत निर्णय क्षमता का है। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी किंतु शक और जलन से बचना होगा। धन के मामले में अचानक लाभ मिल सकता है और स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। लकी नंबर है 9, लकी कलर है गहरा रंग।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: ये सप्ताह ज्ञान और यात्रा के अवसर ला सकता है। नए अवसर मिलेंगे और भाग्य के सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में ईमानदारी आवश्यक है। परिवार का सहयोग बना रहेगा। धन में वृद्धि के योग है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा किंतु अति विश्वास से बचना होगा। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: ये सप्ताह परिश्रम और अनुशासन का फल देने वाला है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता और प्रगति मिलेगी। प्रेम जीवन में गंभीरता रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धन का सही प्रबंधन लाभदायक रहेगा और स्वास्थ्य में जोरों का दर्द हो सकता है। लकी नंबर है 17, लकी कलर है नीला रंग।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: ये सप्ताह नए विचारों और रचनात्मकता से भरा रहेगा। सामाजिक संबंधों से लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन में नए अनुभव मिल सकते हैं। मित्रता से प्रेम संबंध बन सकते हैं। धन में सुधार के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। लकी नंबर है 4, लकी कलर है बैगनी।
1: पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: ये सप्ताह शांति और आध्यात्मिक प्रगति का है। आप अपने अंदर संतुलन महसूस करेंगे। प्रेम और पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा। कार्य क्षेत्र में धैर्य से सफलता मिलेगी। धन स्थिर रहेगा और स्वास्थ्य में मन की शांति पर ध्यान देना आवश्यक है। लकी नंबर है 7, लकी कलर है पीला रंग।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मिशन।

8:33 हुए हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। चलिए, आपका साप्ताहिक राशिफल आपने सुन लिया। बस यही कामना है कि ये सप्ताह आपके लिए शुभ हो। 80s के खूबसूरत गाने एंजॉय कीजिए साथ ना सरगम की आवाज़ में। ये अगला गाना

गोरों की नकालों की ये दुनिया है दिलवालों की। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और ये खूबसूरत गाना सुरेश वाडकर की आवाज़ में। जी हाँ, इस दुनिया में हम सब दिलवाले हैं, है ना। और इस गीत को लेकर हम बढ़ेंगे आगे और सुनेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने पृथ्वी ग्रह और उकर बायोडायवर्सिटी और प्लैनेट के सुरक्षा पर बतियाब जा। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी हमने के पृथ्वी ग्रह के जान है। ये वर्तमान और भविष्य के जन समय बा उकर में मानव कल्याण पर जोर देवेला और बायोडायवर्सिटी के पतन उकर बर्बादी से मानव जीवन पर जन खराब असर पड़ेला ऊपर चाहिए ध्यान देवे के। बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम पर एगो रिपोर्ट के बाद ये पता चला बा कि बायोडायवर्सिटी अगर खराब होता तो एकर पीछे सबसे बड़ा हाथ बा जलवायु परिवर्तन, जेके क्लाइमेट चेंज बोलीला सा, और इनविजिव स्पीशीज यानी कि आक्रामक प्रजाति, प्राकृतिक संसाधन के हद से ज्यादा शोषण ओवर एक्सप्लॉयटेशन, प्रदूषण और शहरीकरण जेके अर्बनाइजेशन बोलीला सा। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के हानि के अर्थ है प्रजाति के कमी या पूरा रूप से गायब होइला और इकोसिस्टम के ह्रास। ई मानवतावाद खातिर जरूरी संसाधन प्रकृति के जरूरी योगदान पर आघात करेला, जेकर से अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, आजीविका और खाना पीना के भंडार, साथ साथ सांस्कृतिक विविधता और जीवन के जोन किस्म बा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ओकर जोन गुणवत्ता बा क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर भी संकट चलावेला। ई गिरावट के रोके खातिर या फिर ई जोन स्थिति बा ओके पलटे खातिर बायोडायवर्सिटी के संगे संबंध, इंसान के भूमिका और हमनी के जोन गतिविधि है, हमनी के जोन कार्य

0: यह ओके बदलना बहुत जरूरी बा। एकर खातिर बहुत समाधान बा। यूनेस्को के विविध नेटवर्क कार्यक्रम और भागीदार दुनिया भर में बदलाव के सकारात्मक बीज देखले हवन सा। यूनेस्को सदस्य देश और ओकर जनता के मदद भी करेला जैव विविधता के बिलावे से बचे में और बायोडाइवर्सिटी के अप्रिसिए करे खातिर संरक्षण करे के और लंबा समय तक जीवित रखे के एकर दम पर आजीविका कमावे पर प्रोत्साहन देवेला। 2030 तक हासिल करे होला 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बायोडाइवर्सिटी भी बा और बायोडाइवर्सिटी सब दूसर सस्टेनेबल गोल से जुड़ल बा। हमने के इकोसिस्टम के मजबूत बनावे के और ई प्लैनेट के बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण, ई पृथ्वी पर से गरीबी के घटावे के इंसान के स्वास्थ्य और भलाई खातिर बहुत जरूरी बा। ई बायोडाइवर्सिटी में सफा पानी, खाना, उपजाऊ जमीन, बायोडाइवर्सिटी के अनेकों प्रजाति के सुरक्षा, जलवायु में संतुलन इत्यादि शामिल बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। फिर मिलब जा। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

चलिए सुदेश बोईजो की आवाज़ में ये गाना सुनिए, भोजपुरी गाना, और इसी गीत के साथ हम भरेंगे 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के की ओर। और भूलिएगा नहीं आपकी आज की चर्चा नीतू शाह के साथ आप सुन पाएंगे इसके बाद।

0: 13 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि, घरों और रेजिडेंशियल केयर्स होम्स के केयरर्स के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक फंड की स्थापना और 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर चिकित्सा सेवाओं के विस्तार जैसे प्रस्ताव दिए हैं। ये घोषणा आज 15 जून को बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुबो ने अपने संदेश में की। उन्होंने बुजुर्गों की बेहतर सुरक्षा के लिए बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मौजूदा सहायता मेकानिज्म्स पर फिर से गौर करने और नए कानूनी ढांचे स्थापित करने की बात कही। उन्होंने मॉरिशन समाज के विकास में बुजुर्गों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार प्रकट किया। कल 14 जून को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ने आज दिन के 11 बजे से क्यूपिप नगर पालिका में रक्तदान का आयोजन किया है। इससे पूर्व एक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर आज फिर से लातूर क्लिनिक का दौरा करेंगे। पिछले 4 दिनों से वे इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इलाके से गंदे पानी की पंपिंग जारी रहे और GECC लिमिटेड प्रभावित क्षेत्र से मृत मछलियां हटाए। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जनरल मैनेजर नवीन जवाहिर के अनुसार 6000 लीटर की क्षमता वाले 3 सैनिटेशन ट्रकों ने 50 से ज़्यादा चक्कर लगाए हैं और इसके अतिरिक्त इस कंपनी की लोरियों के भी 106 चक्कर हुए हैं। असल में एक सोलर फार्म परियोजना के सिलसिले में 11 जून को GECC लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे खुदाई कार्यों के दौरान वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक पाइप क्षतिग्रस्त हुई। इस पाइपलाइन के जरिए मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल जोन से गंदा पानी जाता है। पाइपलाइन की मरम्मत गुरुवार शाम तक ही कर दी गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज से जनेवा में शुरू हो रहे G7 शिखर सम्मेलन के विरोध में कल वहां वृहद प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ें हुई, दुकानों के शीशे तोड़े गए और एक गाड़ी में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लोगों का कहना है कि ये बड़े देश पैसे और ताकत के बल पर छोटे देशों और उनकी जनता पर दबाव डालते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया, दीजिए नमस्कार।

0: कार्यक्रम में आप सब का स्वागत है। स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। जी हाँ, हर सोमवार की तरह हम लोग कृषि बाड़ी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको याद है तो पिछले हफ्ते हम एग्रो फॉरेस्ट्री माने कि कृषि वन पर चर्चा कर रहे थे और जो उसके बेसिक्स कैसे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए कृषि वन का लाभ होता है और आर्थिक विविधीकरण और रोज़ाना का काम, इन सब पर हमने चर्चा की थी। लेकिन समय के अभाव के कारण हमारा जो कार्यक्रम था वो पूरा नहीं हो पाया था। इसीलिए आज एक बार फिर जो एग्रो फॉरेस्ट्री माने कि कृषि वन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो दूसरा और आखिरी भाग है। और आज इस दूसरे और आखिरी भाग में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार कृषि वन में प्रैक्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। साथ ही जब हम बात करते हैं बात कृषि वन एग्रोफॉरेस्ट्री वगैरह, तो क्लाइमेट चेंज, जो मौसम का जो बदलाव हम लोग देख पा रहे हैं, इसका जो असर है कैसे, लाइक क्लाइमेट रेजिलियंस, और जो भविष्य है वो कैसा रहने वाला है, कैसे उज्जवल हो सकता है, और नेशनल विजन, सपोर्ट सिस्टम और टेक्नोलॉजी। आज हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ ही हम चल रहे हैं। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत आज की चर्चा कार्यक्रम में। और एक बार फिर हमारे मेहमान हैं फागे की तरफ से सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट श्रीमान विशाल भिखारी जी, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विशाल जी, आपका स्वागत है आज की चर्चा कार्यक्रम में। नमस्कार। तो हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हमने की अबाउट कृषि वन एग्रोफॉरेस्ट्री। तो बहुत सारे लोगों को की दिलचस्पी रहती है जब हम लोग बात करते हैं कृषि के बारे में, और एग्रोफॉरेस्ट्री उसके एडवांटेजेस के बारे में हमने देखा कि कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप कृषि वन के एक रफ जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं दे सकते हैं जिससे किसानों ने अपनाया।
1: पहले तो नमस्कार सभी।

0: सुनने वालों को और हमारे को जो देख रहे हैं, तो आपके सवाल के के ऊपर पूरे विश्व में कुछ एग्जांपल हैं। एक 100 करोड़ के ऊपर यानी कि 1.2 बिलियन से ज़्यादा लोग अपने फूड सिक्योरिटी सिक्योरिटी लाइवलीहुड घर की इनकम के लिए डायरेक्टली कृषि वन के ऊपर निर्भर है। जैसे सब सहारन अफ्रीका यानी कि सहारा डेजर्ट के नीचे जो सभी कंट्रीज जो आते हैं, 48 कंट्रीज हैं जो मॉरिशस में भी शामिल हैं, तो इसमें 2019 में किसानों की संख्या 10 लाख थी।
1: अच्छा।
0: 2019 तो धीरे धीरे 2024 में वो बढ़ गए हैं और जो जो लगातार ये कृषि वन का जो अपना रहे हैं बढ़ गए धीरे धीरे। तो जब भारत की संख्या देखते हैं तो लगभग 50 लाख किसानों ने काफ़ी स्ट्रक्चर और इंटेंसिव टिम्बर का एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कि वुड का एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल को अपना लिया है। और चाइना में 3 मिलियन 30 लाख हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन पर फास्ट ग्रोइंग टिम्बर का कमर्शियल स्पीसीज के रोज के बीच में फसलें उगा रहे हैं।
1: अच्छा, ये तो काफ़ी बड़ी मात्रा में, जैसे कि आपने कहा 2019 से अब तक कितनी सारी बढ़ोतरी हो गई हैं और कितने सारे जो लोग उगाते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कृषि वन, अगर कुछ सवाल पूछना है, हम मांग करेंगे, हमारे जितने भी श्रोता है, दर्शकगण हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर हो सके तो उसी टॉपिक पर आप प्रश्न पूछें, कोई सवाल पूछ सकते हैं हमारे मेहमान से। विशाल जी, जब वृक्षों की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, सालों लग जाते हैं उनके उगाने में, तो जो छोटा किसान है फाइनेंशियली आर्थिक तौर पर वो कैसे सर्वाइव करते हैं?
0: ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग पूछते हैं, ये कॉमन है। लेकिन याद रखिए कि एनुअल क्रॉप्स जो को छोटे पौधे के साथ की ही प्लांट किया जाता है तो बड़े पौधे टाइम लगता है। किसान अपने वेजिटेबल्स ग्रेन्स या ट्यूबर जैसे स्वीट पोटैटो या कुछ तो भी इसे तुरंत इनकम तुरंत यानी कि दो तीन महीने के बाद मिलते हैं, थोड़ा सा 6 महीने के बाद। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से जब जब भी वृक्ष बैकग्राउंड में ग्रो करते हैं तो इसके इसके मिडल में जो मीडियम एंड शॉर्ट साइकिल क्रॉप्स होते हैं धीरे धीरे उगाते हैं और इनकम मल्टी डिसिप्लिनरी में आते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उनका मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत कम होते हैं।
1: अच्छा, ये तो सही बात आपने कही है। आपने बताया कि क्या एक फ्लैट या फिर ओपन खेत जो खुला मैदान होता है उसके मुकाबले एग्रोफॉरेस्ट्री जो है, एग्रोफॉरेस्ट्री फार्म को मैनेज करना, फसल करना मुश्किल है? कितना मुश्किल, कितना कम?
0: अगर फ्लैट ज़मीन है ये तो एडवांटेज हो गए
1: जी,
0: तो सोने पे सुहागा हो गए अभी। तो इसमें मशीन इंटेंसिव मोनोकल्चर के हद कर थोड़ा थॉटफुल मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: तो हालांकि वृक्ष के रोज के बीच जैसे आले क्रॉपिंग, जैसे पिछले बार मैंने बोला था आले क्रॉपिंग में प्रॉपर स्पेसिंग प्लान करना है
1: जी,
0: ताकि किसानों का वो जो स्टैंडर्ड फार्म मशीनरी है, गार्डन रोटोवेटर्स या कोई ऑटोमेटेड टूल्स आसानी से प्रयोग कर सकते
1: जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक किसान को कैसे पता चलेगा कि उसकी स्पेसिफिक जो ज़मीन के लिए कौन से वृक्ष, पेड़ की स्पीशीज जो है सबसे अच्छा है?
0: ये बहुत टेक्निकल है, तो ये पूरी तरह से लोकल क्लाइमेट।
1: अच्छा।
0: लाइक लोकल क्लाइमेट, क्योंकि मॉरिशस में बहुत सी माइक्रो क्लाइमेट होते हैं, तो लोकल क्लाइमेट है, सॉइल टाइप और किसान के लक्ष्य यानी कि एम पर निर्भर होते हैं। तो हमारे संस्था फरे के एक्सटेंशन ऑफिसर्स और साइंटिस्ट इसमें मदद कर सकते हैं, ये देखकर कौन से नेटिव ट्रीज लोकली अच्छे से उगते हैं वहाँ।
1: अच्छा।
0: जैसे फास्ट ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज या नाइट्रोजन फिक्सिंग श्रब ज़्यादातर स्मॉल होल्डर्स के लिए सबसे अच्छा शुरुआत है।
1: मैंने कि ज़्यादा रिसर्च भी करने पड़ते हैं ना।

0: एग्रोफोरेस्ट्री करने के लिए थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड होना पड़ता है
1: जी,
0: मालूम है,
1: इट्स अ मस्ट जी,
0: इट्स अ मस्ट
1: जी। तो आप हमें बताएं कि क्या एग्रोफोरेस्ट्री को एक बहुत छोटी जमीन पर भी प्रैक्टिस की जा सकती है, या इसके लिए ज्यादा जो बड़ी जगह होनी चाहिए?
0: कृषि वन को ये हर एक स्केल पर परफेक्टली काम करता है। कोई लोग रूफ के ऊपर एक माइक्रो फॉरेस्ट बन सकते हैं
1: जी,
0: लेकिन जब मुनाफा की प्रॉफिट की बात आती है तो थोड़ा सा ज़मीन ज़्यादा होते हैं। जब प्रॉफिटेबल का होते हैं तो एक एक छोटे फैमिली प्लॉट पर भी, जैसे एक एकर में मल्टी लेयर लाने, यानी कि ऊपर का बड़ा वृक्ष मीडियम साइज और छोटे का, और इसके मिडल में जो क्रॉप्स डालते हैं
1: जी,
0: होम गार्डन कर सकते हैं। फ्रूट ट्रीज, क्लाइंबिंग बेलेन यानी कि क्रीपर्स जो बेलेन होते हैं, जैसे पेपर या वनीला, और ग्राउंड वेजिटेबल्स आसानी से फिट हो सकते हैं। छोटी ज़मीन पर स्पेस को मैक्सिमाइज करने का ये आमतौर पर सबसे एफिशिएंट तरीका है।
1: अच्छा,
0: मिक्स क्रॉपिंग।
1: तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, साथ निभाते रहिएगा। बस थोड़ी देर में एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
2: आज की चर्चा रेडियो मॉरिशस।

0: आज की चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की चर्चा कार्यक्रम में। और आज भी हम बात कर रहे हैं एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वन के बारे में, और जितने भी पहलुए हैं आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक बार फिर हमारे मेहमान हैं फागे की तरफ से सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट श्रीमान विशाल भिखारी जी। विशाल जी, आप के बारे में हमको पता चला कि आप भारत के झांसी गए हुए थे यानी कि एक स्टडी टूर के लिए, और वहाँ पर एग्रोफॉरेस्ट्री इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर गए हुए थे, और जो टेक्निकल टर्म्स हैं यानी कि एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में और भी, क्योंकि आप एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं, वहाँ पर गए हुए थे। ये हालांकि काबिले तारीफ की बात है।
2: हाँ, तारीफ की बात है, क्योंकि शायद मैं पहला मॉरिशन हूँ जहाँ पे वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एक एक हफ्ते वो जो स्टडी टूर था, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलना चाहता हूँ इक्राफ के सभी स्टाफों को। काफ़ी काफ़ी टेक्निक्स को वहाँ पे सीख गए थे, कैसे करते हैं ये आली क्रॉपिंग, कैसे करते हैं टिम्बर की फार्मिंग, कैसे करते हैं। तो अलग अलग की टेक्निक थी जो हमने सीख के यहाँ पे लाए
1: जी। और आपकी जो सीख है आज आपके काम आ रहे हैं, और आपकी वजह से हमारा भी, जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पर, जब क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं जंगल फॉरेस्ट्री, तो हमेशा कहा जाता है कि आप एक, अभी जो स्थिति आ गई है, आप एक पेड़ को काटते हो, हालांकि काटना नहीं चाहिए, अगर आप काटते हो तो एक दूसरे को आप उगाते चले ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, और हम भी आने वाले जो जनरेशन है वो सब सुरक्षित रहे। तो चलिए 402-4-02-8-0-8-5 पर अगर कोई प्रश्न है, सवाल है, तो हमारे मेहमान हैं श्रीमान विशाल भिखारी जी, आपका प्रश्न, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए बिल्कुल सच है। अभी हम बात कर रहे थे अबाउट क्लाइमेट चेंज, जो मौसम का बदलाव हो रहा है, ये काफ़ी चर्चे में है, और साल दर साल बहुत सारे ऐसे जो बातें होती रहती हैं, कन्वेंशंस होती रहती हैं कि कैसे हम क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो छोटे देश हैं, बड़े देश हैं, सब कोई अपना अपना हाथ बटा रही है, हर कोई अपना काम कर रहा है ताकि आने वाले दिनों, आने वाले सालों में हम लोग और सुरक्षित हो जाए। तो विशाल जी, आप हमें बताएं कि क्योंकि आजकल हम मौसम की अचानक जो बदलाव है और तेज़ हवाएं ज़्यादा देख रहे हैं, हालांकि अभी तो सर्दी का मौसम है, लेकिन 10 यानी कि मौसम बदलता चला जा रहा है। जब जोरों की बारिश होती है तो एक ही घंटे में फ्लैश फ्लड हो सकता है। अभी सुखारी आ रही है तो हमें बहुत ही फज्जत, जैसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, तो वृक्ष जो हैं, पेड़ जो हैं, और खेत को खराब मौसम से कैसे बचाया जाए?
2: पहले तो अभी जो हम जो फेज जो वर्ल्ड का जहाँ पे जो फेज हम अब में है वो एल नीनो का है
1: जी।
2: एल नीनो का असर बहुत ज्यादा अब है, लेकिन आने वाले कुछ हफ्ते या महीने में उसका असर बहुत बहुत प्रभावित होगा।
1: काफी लोग आपको देख रहे, सुन रहे, बोल रहे, एल नीनो नाम से तो सुना होगा, इनको बता दीजिएगा एल नीनो है क्या।
2: एल नीनो एक एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे गर्मी वर्ल्ड में ऊपर का गर्मी
1: तापमान जो है
2: तापमान है बढ़ जाते हैं, और नीचे

0: जो आते हैं ज्यादा तक पानी होते हैं या बर्फ होते हैं या ठंड होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम में अभी अभी हालांकि मैं भारत में 3,000 के ऊपर लोग मर गए
1: जी
0: सिर्फ तापमान के वजह से। तो तापमान है, टेम्परेचर है, फ्लड है, बर्फ है, विंड है, साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन है, सब मिक्स करके जब ये होते हैं ये एल नीनो के स्पेस इसमें होते हैं, तो इसके इसके ओपोजिट जो है वो लानीना बोलते हैं, जो अभी हम गुजर में रहे हैं वो एल नीनो होते हैं।
1: एल नीनो जी जी। तो यहाँ पर यानी कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम लोग कौन सा एक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो एल नीनो है और ना हो जाए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे कि अभी आपने कहा कई देशों में इतनी ठंड लग रही है, पड़ रही है कि लोगों की जान भी चली जा रही है, और धीरे धीरे हम भी यहाँ पर देख रहे हैं मॉरिशस में भी जो तापमान है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम अभी संभल कर नहीं चलेंगे अपना कार्य नहीं करेंगे तो शायद 5-10 सालों में 40+ का हो जाएगा, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जब आते हैं आपके आपके सवाल को, जब जो खराब मौसम के लिए बोल रही थे, तो वृक्ष खेत के लिए एक ढाल जैसे बनते हैं
1: जी,
0: ढाल जैसे काम करते हैं। खेत के चारों तरफ पर अगर मजबूत पैरों की रोज लगाते हैं
1: जी,
0: वो विंड ब्रेक का काम करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो जो हवा का झोंका होते हैं जो तेज होते हैं उसको स्लो कर देते हैं
1: जी।
0: तो ये उन तेज हवाओं की स्पीड को कम करते हैं जो डेलिकेट क्रॉप्स को तोड़ सकते हैं और जो टॉप सॉइल को उड़ सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे इरोजन हम बोलते हैं, सोइल इरोजन पानी के साथ, वो सोइल इरोजन होते हैं एयर के साथ भी
1: जी।
0: तो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के खेत के ऊपर बनते हैं उसको बचा सकते हैं, ये एक जैसे एक सुरक्षित माहौल बनते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: वृक्ष के साथ।
1: अच्छा। तो यहाँ पर बात हो रही है बात क्लाइमेट चेंज, तो बस हम सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाते चले पूरी ईमानदारी के साथ, और जो हमारे बच्चे हैं अभी से ही उनको सिखाना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा जो पर्यावरण है और एक वृक्ष की क्या अहमियत होती है हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में उनको सिखाना चाहिए। आप हमें बताएं विशाल जी कि एग्रोफॉरेस्ट्री फार्मिंग हाउस होल्ड को ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाती है।
0: ये एक क्या बोलते हैं, एक होलिस्टिक होमस्टेड का निर्माण करते हैं
1: जी,
0: राइट। तो एक डाइवर्स फार्म फैमिली को फलों और सब्जियों की बैलेंस डाइट देते हैं, कटे हुए ब्रांचेस से कुकिंग के लिए फ्यूल मिलता है। हालांकि यहाँ मॉरिशस में हम लोग बहुत कम वुड का प्रयोग करते हैं कुकिंग के लिए
1: जी।
0: तो पशुओं के लिए चारा यानी कि फोडर मिलता है, मधुमक्खी से शहद मिलते हैं, पशु बेचकर लगातार आमदनी मिलते हैं। ये बाहर की चीज़ें खरीदने पर कम निर्भर करता है
1: जी। अभी आप बात कर रहे थे कि पहले से ज़्यादा यानी कि आज काफ़ी लोग हम लोग गैस यूज़ करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात अभी होने वाली है, और पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी तो लकड़ियों का ही इस्तेमाल करते
0: exactly.
1: थे, अभी तो है नहीं। तो आजकल एक और प्रॉब्लम है हमारे नौजवान, हमारे नौजवान जो है आजकल खेतों में ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग समझते हैं कि नहीं इतनी पढ़ाई कर ली हमने हम लोग खेत में काम करेंगे, बिल्कुल नहीं, जो जैसे कहते हैं हमें अवैध करना पसंद नहीं करते हैं। तो उनको एग्रोफॉरेस्ट्री के जरिए खेतों में आने के लिए जो है कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: जब हमारे दादा लोग खेती बाड़ी करते थे
1: जी,
0: तो वो एक अलग सी खेती बाड़ी करते थे
1: जी,
0: क्योंकि उस टाइम पे ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी नहीं था। आज के नौजवान अक्सर ट्रेडिशनल फार्मिंग को रिस्की और फिजिकली एग्जॉस्टिंग समझते हैं।
1: अच्छा।
0: वो नहीं चाहते हैं धूप जाने के लिए, ये करने के लिए, सिर्फ काम करने का, गाड़ी चलाने का और खरीदने का
1: जी,
0: लेकिन उगाने का नहीं। अगर कोई ये जो सब जो एआई पे जा रहे हैं अभी
1: जी,
0: लेकिन एआई खाना नहीं देता है, एग्रीकल्चर खाना देता है। तो

0: एग्रोफोरेस्ट्री एक एग्रीटेक और इकोसिस्टम मैनेजमेंट का माइंडसेट लेकर आती है
1: जी।
0: ये खेती बाड़ी जो को एक सस्टेनेबल मल्टी रेवेन्यू बिजनेस में बदल देता है। तो नौजवानों को आज की जनरेशन के लिए कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव मॉडर्न और फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, लेकिन प्लानिंग अच्छा करना पड़ेगा।
1: वो तो ज़रूरी बात है ये डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा प्लानिंग, एक जो भी हम लोग काम करते हैं प्लानिंग के सिवा उसके बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो एग्री फॉरेस्ट्री जो है एक ऐसा माध्यम हो सकता है, हमारे जितने नौजवान हैं अगर आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं देन वाई नॉट, और इतनी सारी मदद भी मिलती है फाग की तरफ से, सरकार की तरफ से इतने सारे स्कीम्स होते हैं, तो आप लोग ट्राई तो कीजिए। और हमेशा कहते हैं माटी के हमेशा मोल ही रहती हैं और उसका मोल कभी घटती नहीं है, तो बस हमारे ज़मीन के साथ जुड़े रहें। आप हमें बताएं कि अगर कोई किसान कल से एग्रोफॉरेस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहे तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
0: पहला स्टेप है कि लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं, फूल शहद टिम्बर का पैदावार, फल का या पशुपालन का। दूसरे बाद में अपने खेत को या मिट्टी को ऑब्जर्व करो
1: जी,
0: देखिए आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी फसलें को सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे होते हैं, जोर हवा से या धूप से या चोरी से या सोइल इरोजन से, और अपनी खली जगहों को नोट कीजिए कहाँ फेंसिंग डालना पड़ेगा या फील्ड बॉर्डर्स को लगाना पड़ेगा। और तीसरी एक कृषि वन की प्रोजेक्ट को पूरा प्लानिंग के साथ करना है
1: जी,
0: एक अच्छा मैप टोपोग्राफी के साथ तैयार करने का और अपने मिट्टी का लैबोरेटरी का एनालिसिस करने का। देखते हैं जैसे एनपीके या ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, ये सब आधार पर प्लानिंग करना है। और फिर हमारा संस्था जो फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट के द्वारे से हमारे एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर्स या साइंटिस्ट से बात कीजिए, हम हैं यहाँ पे मौजूद हैं बात करने के लिए, ताकि उन स्पॉट्स या उन प्रोजेक्ट्स को फॉलो साथ ही साथ काम कर सकते हैं, तो बेस्ट मैचिंग ट्रीज की एडवाइस दे सकते या वो मिल सकते हैं
1: जी।
0: और पांचवा, शुरुआत में स्मॉल स्केल पर कीजिए, स्मॉल सीखिए
1: जी,
0: स्मॉल स्केल पर, और फिर एक्सपांड कीजिए हर साल या हर 6 महीने, ऑल डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल। अगर फाइनेंस है तो आप एक ही तरफ से 10 एकड़ तो लगा सकते हैं, लेकिन धीरे से स्लोली कीजिए। ये नई तरीके को अपनाइए और हमारे मिट्टी को बचाइए, मोनोक्रॉपिंग पर मत जाइए, मिक्स क्रॉपिंग को अपनाइए वृक्षों के साथ
1: जी। और पिछली बार भी आपने कहा था कि मोनोक्रॉपिंग पर मत, तो मिक्स क्रॉपिंग जो है बहुत ही फायदेमंद है। तो अभी जैसे विशाल जी ने कहा कि अपनी मिट्टी को पहचानिए, आप एनालिसिस कीजिएगा और अपनी मिट्टी के बारे में, आपको अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जितने भी खेतीहर अपने खेत के बारे में अपनी मिट्टी के बारे में उनको सब कुछ अब पता होना चाहिए। और स्कीम्स के बारे में इतनी सुविधाएँ जैसे कि आप बता रहे हैं विशाल जी कि फागे की तरफ से इतने सारे प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है दी जाती हैं, प्रशिक्षण दी जाती है, सुविधाएं मिलती हैं, तो कितने सारे लोगों ने फायदा उठा लिया है, अब आपकी बारी है। चलिए वापस आते हैं एक छोटे से मिस कॉल ब्रेक के बाद।
2: आज की

0: आज की चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमारे हम सफर बनने के लिए आज की चर्चा कार्यक्रम में। तो हम इस अंतिम पढ़ाओ के बस आ ही पहुँचे हैं करीब, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको अपनाने से हमारे पर्यावरण, हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा भविष्य कैसे उज्ज्वल हो सकता है, कितने सारे चैलेंजेस होते हैं और इनको अपनाते हुए अडॉप्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान विशाल भिकारी जी, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट फागे की तरफ से। विशाल जी, हम लोग अब बात कर रहे हैं भविष्य के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। जिस क्षेत्र में भी आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी ने अपना कदम बढ़ा ही लिए है। तो हम बात करेंगे नेशनल विजन सपोर्ट सिस्टम एंड

0: टेक्नोलॉजी के बारे में. आप हमें बताएं कि जो फार्मर आज हमें सुन रही हैं, देख पा रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, और एग्रोफॉरेस्ट्री में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, क्या उन्हें इस ट्रांजिशन करने में कोई मदद, लोकली कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम है, कोई ग्रांट जैसे कि स्कीम्स के बारे में बात करें, टेक्निकल जो असिस्टेंट प्रोग्राम है, क्या कुछ उनके लिए अवेलेबल है?
1: जो संस्था है, संस्थाएं जी, सिर्फ फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट सिर्फ ये नहीं, फॉरेस्ट्री सर्विस भी है
0: जी,
1: एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी है
0: जी.
1: तो टेक्निकल गाइडेंस के लिए किसानों डायरेक्टली फरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. हम बात करेंगे, देखेंगे उसकी ज़मीन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, एरिया क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्या दे सकते हैं, और इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे उसको कैसे कनालाइज करेंगे ताकि उसकी लक्ष्य पर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं. और सेकंडली, जब आप बात कर रहे थे इंसेंटिव के लिए, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल ग्रांट स्कीम को एक्सप्लोर करें, बहुत सी स्कीम है जो एक्सटेंशन सर्विसेज में है, जो ऑर्गेनिक जोन, बायो फार्मिंग और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए हैं, बहुत सी स्कीम है. और कम्युनिटी और नेटवर्क सपोर्ट के लिए लोकल एग्रीकल्चरल नेटवर्क्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से जुड़े एसोसिएशन, और आपस की मेंटरशिप. जब बात करते हैं, जब ग्रुप होते हैं, क्या करना है, अगर मैं ये आपको मदद कर सकता हूँ, मैं ये आपको देता हूँ,
0: आप आइडियाज मिल जाते हैं,
1: मिल जाते हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं
0: जी, जी.
1: और साधन के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग में काफी मदद करते हैं. तो डिस्कशन करना पड़ेगा
0: जी.
1: और फाइनली, अगर अच्छे प्लानिंग है
0: जी,
1: और जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग या कुछ तो भी, जैसे कैसे उगाना है, कैसे करने का सब प्लानिंग करना है,
0: मैंने कि साधन तो है, वेस्ट तो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है फागी है, जैसे कि और आपने अभी नाम लिया है, और कम्युनिटी जो नेटवर्क, जैसे कि आपके कोऑपरेटिव्स होते हैं बहुत सारे. तो सबसे पहले जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, उनको वो कदम बढ़ाना पड़ेगा, सबसे पहले
1: बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट का संस्था नहीं है, सिर्फ पैरासिटिकल बॉडीज नहीं है, एनजीओज भी है, प्राइवेट बॉडीज भी है.
0: अच्छा,
1: अगर सब एक ही लक्ष्य पे काम करते हैं तो हम आसानी से वो जो गोल है
0: अचीव
1: कर सकते हैं
0: जी. अब आप हमें बताएं कि जो इंडिविजुअल फार्म से आगे अगर पूरे आइलैंड पर बड़ी संख्या पर एग्रोफॉरेस्ट्री को अपनाया जाए तो इससे पूरे आइलैंड को क्या फायदा हो सकता है, हमारा जो छोटा सा मॉरिशस है?
1: ये आपके सवाल की बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी
0: पेचीदा है.
1: आसानी से करता हूँ क्योंकि कार्बन जो बोलते हैं, जो हमारे देश का जो फायदा होते हैं, रिफोरेस्टेशन एक चीज, और एक और चीज जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन को बोलते हैं. जब एक वृक्ष या कुछ तो ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कैप्चर करते हैं
0: जी,
1: और इसके फ्रूट्स में या पूरे वृक्ष में जाते हैं, पूरे वेजिटेबल्स में जाते हैं, और शुगर बनाते हैं. तो एक तरफ से एक चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, तो यानी कि क्वांटिफाइबल कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन. तो इसके बारे बड़े पैमाने से एग्रोफॉरेस्ट्री एक मैसिव कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं. जैसे हम सब कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट करते हैं, अगर वृक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं है एब्सॉर्ब करने के लिए
0: जी.
1: तो अगर पहले से ही मिट्टी खराब हो गए हैं, जैसे सालों तक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना, तो डेकेड्स में वो मिट्टी का खराब हो जाएगा. तो वृक्ष कृषि वन से एक जो जब हर बार मैं बोलता

0: मल्टी लेयर ट्री सिस्टम, यानी कि बड़ा, मीडियम और छोटे के साथ धीरे धीरे समय के साथ एटमोस्फेरिक कार्बन मेट्रिक टन्स में कैप्चर होते हैं और नेशनल क्लाइमेट टारगेट्स, हमारे जो नेशनल क्लाइमेट टारगेट्स हैं जहाँ पे काम करते हैं बहुत की संस्थाएं काम कर रहे हैं इसके ऊपर, को पूरी करने में मदद करती है।
1: अच्छा, तो ऐसी अगर बात है तो अगले एक दशक माने कि जो डिकेड को देखते हुए एग्रोफॉरेस्ट्री को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड बेसलाइन बनाने के लिए कौन सी पॉलिसीज की आवश्यकताएं हैं?
0: एक चीज है जो उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स।
1: बाप रे बाप, बड़े बड़े शब्द है।
0: यानी कि मानकित वैज्ञानिक ढंच। तो पॉलिसी मेकर्स को लॉन्ग टर्म रिसर्च को सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है ताकि लोकलाइज। एक चीज एक और बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक है, उसको बोलते हैं एलोमेट्रिक इक्वेशन या डेंडोमेट्रिक्स, जो मैथमेटिक्स और प्लांट पौधे के जब मिक्स करते हैं तो डेंडोमेट्रिक्स बन जाते हैं, और कार्बन स्टॉक वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप किए जा सकते हैं। तो एलोमेट्रिक इक्वेशन से या ऐसे ऐसे कैलकुलेशन से हम जान सकते हैं अगर हमारा कंट्री, हमारा देश का ब्लूप्रिंट कार्बन प्रूफिंग क्या है। तो एक्यूरेट और आइलैंड स्पेसिफिक साइंटिफिक डेटा होने से इंश्योर होगा कि एग्रोफॉरेस्ट्री को नेशनल कार्बन अकाउंटिंग में फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जा सकते हैं पूरे विश्व में हम क्या कर रहे हैं। ऐसे छोटे देश में जो हम इतना छोटा है तो एक मिसाल बन जा सकते हैं।
1: जी, यहाँ पर आप इतने बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं ये कौन से शब्द हैं भाई। बस हमको आम इंसान हैं और यही सोचते हैं कि हम जो करते हैं उसका रिएक्शन होता है, प्रसिक्यूशन भी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अभी आपने कहा कि हम मॉरिशस जो है एक छोटा सा देश है और इतने बड़े बड़े देश जो हैं कभी कभी बोलो काफ़ी पॉपुलेट, यानी कि ओवर पॉपुलेटेड भी हैं, और पॉल्यूशन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो वे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन इसका असर जो है हम लोगों को भी भुगतना पड़ता है ना।
0: हम लोग तो कैसे बोलते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को बोलते हैं, तो हम लोग बहुत नाजुक हैं।
1: जी,
0: छोटे देश हैं, ज्यादा तक बाउंड्रीज नहीं है, सिर्फ समुंदर है। एक सुनामी आ जाएगा तो लाखों लोग मर जाएंगे यहाँ पे। तो अभी गर्मी के वजह से जो ओशानिक साइकिल है बदल रहे हैं, तापमान समुद्र का बढ़ रहा है, हमारे कोरल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे इरोजन बीच को इरोद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो समस्या आने वाले हैं सबसे गंभीर होने वाले हैं, अवश्य गंभीर होने वाले हैं। तो जो भी हम कर सकते हैं करना पड़ेगा
1: जी
0: अभी।
1: जी, तो हमारे ये जब हम लोग मॉरिशस की बात कर रहे हैं, छोटा सा देश है और लाइक अगर देखा जाए तो अगर आप बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज है जब हम फॉरेस्ट्री जंगल की बात करते हैं तो
0: मॉरिशस में।
1: जी,
0: ज़्यादा तक फिगर्स दिमाग में नहीं है लेकिन बहुत घट चुके हैं, शायद 3-4% है मॉरिशस।
1: बस यही है,
0: क्योंकि 1800 में मॉरिशस का 80% 75% के ऊपर था।
1: जी,
0: तो धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ गए,
1: डेवलपमेंट होने लगी, कंस्ट्रक्शंस,
0: एग्जैक्टली
1: जी,
0: तो ये धीरे धीरे फॉरेस्ट को घट गई है। तो हम सिर्फ 3-4% पर है,
1: देखा जाए तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर डेवलपमेंट भी ना हो, कंस्ट्रक्शन भी ना हो, तो जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनका हम कैसे समाधान ढूंढेंगे, ये भी एक प्रश्न है। तो हम क्या कर सकते हैं अगर ये 3% तो थोड़ा सा उसको और बढ़ा सके तो?
0: बढ़ा सकते हैं जैसे भारत या चीन या ब्राज़ील को एग्जांपल लेते हैं, तो वो पाइलर्स के ऊपर रोड बनाते हैं।
1: जी,
0: फॉरेस्ट नीचे होते हैं, वाइल्ड लाइफ नीचे होते हैं, तो एरियल रोड बनाते हैं। तो अगर ये कर सकते हैं अच्छा होगा, तो जमीन ही बचेगा और ट्रैफिक भी अच्छा होगा। शायद ये सोचने की बात है
1: जी,
0: कैसे करने का, कैसे बचाने का वृक्षों को या नेचर को।
1: जी चलिए, हर कोई सोचता रहे, एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। आज की

0: आज की चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे हम सफर बनने के लिए। तो हम इस आज की चर्चा कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक पहुंच आए हैं। विशाल जी, अभी आपने इतने बड़े बड़े शब्द की बात की है, कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, पता है हमने सीखा है स्कूल कॉलेजेस में, जब आप पेड़ वगैरह उगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको अब्सॉर्ब करते हैं। ये कार्बन फुटप्रिंट क्या है, अभी इसके बारे में आपने काफ़ी बात की है, लेकिन जो कार्बन फुटप्रिंट्स है

0: फूड जो क्रॉप्स हैं उनके साथ जो पेड़ लगाना वगैरह यानी एग्रोफॉरेस्ट्री आखिर में एक फॉर्म को क्लाइमेट चेंज से लड़ने में कैसे मदद करते हैं?
1: पहले एक चीज को बोलना चाहता हूँ कि जो जब हम फुट कार्बन फुटप्रिंट को बोलते हैं
0: जी,
1: एक वृक्ष, जैसे वन एग्जांपल लेता हूँ, एक वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और प्रकृति में
0: जी
1: सिर्फ प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं
0: जी,
1: कोई नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। तो जब भी एक वृक्ष या कोई स्पीसीज या एक एरिया जो भी जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब किया, जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना कार्बन, कितना मेट्रिक टन कार्बन को सेकेस्ट्रेट किया, वो इसका एक एक जैसे एक फुटप्रिंट, जैसे हम वॉक करते हैं
0: जी,
1: एक फुटप्रिंट होते हैं
0: जी,
1: तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसे फुटप्रिंट होते हैं।
0: अच्छा।
1: कहाँ पे छोड़ दिया, कितने मात्रे में छोड़ दिया, कैसे में छोड़ दिया, तो ये एक एक एक पूरी वर्ल्ड डिबेट है
0: जी,
1: जो कौन सी देश कौन सी फुटप्रिंट को लगाते हैं। तो जैसे फूड कार्बन प्रिंट या ये एक बिजनेस बन गई है। तो कृषि वन को आप प्रकृति के, एक चीज बोल रहा हूँ जो जो जो टेक्निकल है लेकिन सब समाते हैं इसमें, उसके बोलते हैं अल्टीमेट ग्रीन वैक्यूम।
0: मतलब
1: यानी कि एक एक ऐसा वैक्यूम, ऐसा स्पेस होते हैं जो जो सभी जो कार्बन है, जो जब भी आप सोप करते हैं सब स्टडीज में वो इसके अंदर में जाते हैं। तो अल्टीमेट ग्रीन वैक्यूम समझ सकते हैं कृषि वन के ऊपर, जहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग से अक्सर कार्बन रिलीज होता है, वहाँ क्रॉप्स के साथ वृक्ष लगाना पूरा खेल ही बदल देता है।
0: अच्छा।
1: पूरा वो पलट देता है जब भी वृक्ष आते हैं। तो वृक्ष हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, जो खींच करके उन्हें सालों तक अपने वुड या जड़ें या लीव्स या ब्रांचेस में लॉक कर देते हैं। तो अगर वृक्षें और फसलें को साथ साथ कृषि करेंगे तो हम सिर्फ खाने नहीं उगाएंगे
0: जी,
1: हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं और फार्म पर ही क्या बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट फ्यूचर
0: जी
1: बना रहे हैं
0: जी,
1: जो आने समय में बहुत लाभ होगा। हमारे जनरेशन जो आ रहे हैं वो नहीं जानते हैं पीछे में हम लोग क्या किया, काटा है या डिस्ट्रॉय किया है। तो आने वाले समय में हम तैयारी करना पड़ेगा
0: जी जी। तो चलिए, चलते चलते हमारा आज का जो प्रोग्राम है, आज की चर्चा कार्यक्रम समाप्त हो चला। आपका जैसे कहते हैं अंतिम मोदुलाफा
1: मोदुलाफा एक एक एक चीज है, जैसे पिछले बार मैंने बोला था कि बहुत समय पहले हम लोग कृषि करते थे वन में, तो एक अथर्ववेद के एक एक श्लोक है जो कृषि वन फूड प्रोडक्शन सिस्टम पर पूरी तरह से फिट होते हैं। तो ये जो श्लोक है, यते भूमे विखानामी श्री प्राण ताद प्री रोहतु, अर्थात जो भी मिट्टी से लेता हूँ जल्दी फिर से उगाना
0: जी।
1: तो जो भी हम लेते हैं प्रकृति से वापस देने का।
0: तो चलिए, हम भी मिट्टी में ही आए थे, मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही चले जाएंगे। बस अंतिम शब्द है, जितना हो सके आप वृक्ष जो हैं, पेड़ जो हैं उगाते रहे, और जो कार्बन मोनोक्साइड है, जैसे यहाँ पर श्रीमान विशाल भिकारी जी ने कहा, जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, आगे जो जनरेशन है वो ही उनको पता चलेगा हमने क्या किया, और उनके आने वाले भविष्य को हम सुरक्षित करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विशाल भिकारी जी, आप फागे के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और जितने भी हमारे श्रोता दर्शकगण हम लोगों को देखा, फॉलो किया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन, प्रणाम।

0: स्टूडियो में आ गया थी, उनसे मिलते हैं जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रीय बजट प्रस्तुति के लिए और कुछ ही दिन रह गए हैं। शुक्रवार 19 जून को वित्त मंत्री बजट 2026-2027 प्रस्तुत करेंगे। इस बीच देश के कई आर्थिक ऑपरेटर अपनी प्रस्ताव

0: संरक्षण और ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित कई सिफारिशें तैयार की हैं। जलवायु परिवर्तन का असर स्थानीय कृषि उत्पादन पर लगातार पड़ रहा है। सूखा, भारी बारिश और मौसम की अनिश्चितताएं पैदावार के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाना और किसानों को सहायता प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इन उपायों से स्थानीय उत्पादन की रक्षा करने के साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के 5वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है। राष्ट्रीय सभा द्वारा आयोजित इस पहल के तहत 14 से 23 साल की उम्र के नौजवानों को संसदीय कार्य प्रणाली समझने, समसामयिक मुद्दों पर बहस करने तथा लीडरशिप और कम्युनिकेशन क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं विकसित करने का मौका मिलेगा। आवेदन भेजने के लिए अगले 22 जून तक की मोहलत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका और ईरान ने आखिरकार ऐलान किया है कि दोनों पक्ष मध्य पूर्व में संघर्ष पूरी तरह रोकने और हॉर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए एक शांति संधि पर सहमत हुए हैं, जिस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि इस दस्तखत के बाद तेल सप्लाई की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस दावे के तुरंत बाद वैश्विक मंडी में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी ताकतों द्वारा किए गए सिलसिलेवार मिसाइल हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और एक ऐतिहासिक कैथीड्रल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनियन प्रधानमंत्री ने इसे देश की ऐतिहासिक विरासत पर गहरा आघात बताया। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। Robert Kennedy Street, Réunion Morel Petit Raffremé. Robert Kennedy Street, Réunion Morel Petit Raffremé, 81 saal ki, 81 years old, Shri Bhardwaj Sukan. Shri Bhardwaj Sukan, jo Lal Sukan naam se zyada jani jaate the, ki mrityu ho gayi hain. Ki arthi aaj din ke 11 baje, inki patni Shrimati Nishi Sukan ke makan, Robert Kennedy Street, Réunion Morel Petit Raffremé se utha kar antim sanskar ke liye Daruchi ki shmashan bhumi le jaayi jayegi, cremation today. At 11 a.m. Number 9, impasse Belle Étoile Coromandel-Me. Number 9, impasse Belle Étoile Coromandel-Me. 84 saal ki, 84 years old. Shrimati Renganayegi Valaiten. Shrimati Renganayegi Valaiten. Petachi naam Virapen, jo amla naam se zyada jani jati thi. Aur Jitu Hospital mein purv matron thi. Inki मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे आज लाशा पहला दौंत मुगा रॉयल रोड पे चित्रीविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वालिदे पद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। नंबर 251 एवेन्यू जॉन केनेडी कॉन्टेन वाकुआमे। एवेन्यू जॉन केनेडी कॉन्टेन वाकुआमे 83 साल की, 83 years old, श्रीमती विसाताची रामनारायण। श्रीमती विसाताची रामनारायण, पैदाशी नाम अनामले, जो कानू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे के पति श्री श्याम रामनारायण के मकान नंबर 251 एवेन्यू जॉन केनेडी कौतम वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.

10:05 हुए हैं श्रोताओं, नमस्कार आप सबको। आप सबका अभिवादन है रेडियो मॉरिशस पर, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए प्रस्तुत है भक्ति धारा कार्यक्रम। आज सोमवार 15 जून 2026, और इस कार्यक्रम को आप साथ दे रहे हैं। कहते हैं धरती केवल एक स्थान नहीं है जहाँ मनुष्य जीवन व्यतीत करता है, अभी तो ये समस्त जीव जगत की जननी है। ये हमें जल, अन्न, वायु और आश्रय प्रदान करती है। जो मनुष्य धरती माँ के उपहारों का सम्मान नहीं करता, वे अपने ही भविष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। धरती की रक्षा करना केवल एक कर्तव्य नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक पवित्र धर्म है।

जो भी प्राणी भगवान शिव की भक्ति सच्चे मन से करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो मन वांछित फल पाता है। ब्रह्मा और विष्णु भी जिनका ध्यान लगाते हैं, वो महातपस्वी भवभंजन स्वयं भवसागर पार कराएंगे। वो बड़े भोले हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं।

0: 10:17 हुए हैं श्रोताओ, चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं मानस मंथन कार्यक्रम डॉक्टर विनु अरुण जी से।
1: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर विनु अरुण।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, हम रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 250 के नीचे की चौपाइयों को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रसंग आपको याद होगा, धनुर्यज्ञ का प्रसंग है और अलग अलग देशों के बड़े बड़े राजा इस यज्ञ में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं। सब सीता जी का वरण करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रण है राजा जनक का। और वो प्रण क्या है कि शिव जी के कठोर धनुष को जो इस राजसभा में तोड़ेगा उसी का विवाह जानकी जी से होगा। और ये प्रण सुनकर सभी राजा धनुष उठाने और सीता जी से विवाह करने के लिए लालायित हो उठे। एक एक करके सभी राजाओं ने अपने बाहुबल को आजमाया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। धनुष को कोई उठाने की तो बात ही छोड़िए, जैसे लगता था कि कोई स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राजा लोग केवल असफल रहे ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत कुछ गवा भी दिया। और क्या गवाया, तो तुलसीदास जी ने लिखा, कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। तीन चीजें इन राजाओं ने गवा दी। एक तो धनुष नहीं उठा पाए, ये उनकी हानि हुई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कीर्ति गवा दी, अपनी विजय गवा दी और वीरता गवा दी। क्या अर्थ है इसका? यानी अब तक उन राजाओं का यश था अपने अपने राज्य में, उन राजाओं की कीर्ति थी, सभी उनका मान सम्मान करते थे, उनको बहुत पराक्रमी मानते थे, बहुत वैभवशाली मानते थे, बहुत गुणी मानते थे। लेकिन आज राजा जनक के दरबार में मानो उनकी कीर्ति की परीक्षा हुई और वे उसे हार गए। यानी आज जो उन्होंने यश अभी तक कमाया था उस यश को उन्होंने गवा दिया। क्यों गवा दिया? क्योंकि आए थे धनुष उठाने, किंतु वे अपने मनोरथ में सफल नहीं हो सके। दूसरी बात, विजय गवा दी। अब तक उन्हें लगता था कि वो जो चाहें वो पा सकते हैं, जहाँ

चाहे विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सीता जी पर विजय प्राप्त करना यानी सीता जी को प्राप्त करने की जो उनकी लालसा थी वह पराजित हो गई, इस प्रकार वे विजयी नहीं हो सके। और तीसरी बात, अभी तक उनको इस बात का अभिमान था, गर्व था कि वो बहुत बड़े वीर हैं, लेकिन यदि वे सचमुच वीर होते तो धनुष को उठा लेते, ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए आज उनकी वीरता भी पराजित हो गई। और इस प्रकार ये राजा लोग अपना यश, अपनी विजय और वीरता सब कुछ मानो गवा करके बैठ गए हैं, सबकी दृष्टि में वे लज्जित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। और आगे आइए देखें तुलसीदास जी क्या कहते हैं। श्रीहत भये हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाइ समाजा, नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन उसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। राजा जनक को पूरी आशा थी कि दूर दूर से जो इतने श्रेष्ठ राजा यहाँ एकत्रित हुए हैं और सब एक ही उद्देश्य लेकर यहाँ आए हैं कि सीता जी को प्राप्त करना है और उसके लिए सबसे पहले इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी है, लेकिन कितने दुख की बात है कि कोई भी राजा ये कार्य करने में सफल नहीं हो सका। इसलिए राजा जनक बहुत दुखी हैं और उन्हें लगता है कि जितने भी नरेश, जितने भी राजा लोग यहाँ आए थे वो मानो हतप्रभ हो गए हैं, यानी आज उनका वास्तविक परिचय सबको मिल गया है। अभी तक तो बड़ी धूम थी कि ये राजा बड़े श्रेष्ठ राजा हैं, इन्होंने इन इन जगहों पर विजय प्राप्त की है, इतनी इतनी दूर तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है, इतना इनके पास बल है, वैभव है, लेकिन आज असली परीक्षा हुई और तब पता चला कि वास्तव में ये सब कुछ गवा बैठे हैं। क्योंकि यदि कोई पराक्रमी है तो वो अपने पराक्रम का यहाँ प्रमाण देता, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर सका। अतः राजा जनक बहुत ही निराश हो गए, उन्हें क्रोध भी आया कि मैंने इतना बड़ा आयोजन किया और मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। इसलिए दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक कह रहे हैं या उनके मन में ये सारी बातें चल रही हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता आए, दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और बहुत से रणधीर वीर आए, और कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनो रचेउ न धनु दमनीय। लेकिन धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। आइए इन चौपाइयों पर और इस दोहे पर थोड़ा विचार करें। राजा जनक कह रहे हैं कि मैंने तो इस विश्वास पर ये प्रण ठाना था कि जो बड़े बड़े द्वीपों से, बड़े बड़े राज्यों से राजा यहाँ एकत्रित हुए हैं, वे बहुत यशस्वी राजा हैं, उनका नाम चारों दिशाओं में फैला हुआ है, और ऐसे राजा यहाँ आए हैं तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई बड़ी सरलता से इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा और सीता जी को प्राप्त कर लेगा। और मैंने ये भी देखा कि मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, मनुष्यों की बात यानी जो मनुष्य राजा हैं और वो यहाँ आए, यदि वो हार गए तो चलो ये स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन सीता जी को पाने की कामना से तो देवता भी आए हैं और बड़े बड़े दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, और यदि देवता और दैत्य भी इस काम में सफल नहीं हो सके तब तो ये बहुत चिंता का विषय है, फिर मैं क्या करूं। और कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय कह रहे हैं,
मैंने तो ये सोच

किया था कि इस धनुष को तोड़ करके जो भी तोड़ेगा वो तीन चीजें अपने आप प्राप्त कर लेगा। एक धनुष तोड़ने से तीन लाभ अपने आप मिलने वाले थे। कौन से तीन लाभ मिलने वाले थे? मनोहर कन्या, सर्व सुंदरी कन्या, सर्व गुण संपन्ना जो कन्या है सीता के रूप में, वो तुरंत मिल जाती, क्योंकि प्रण है ऐसा कि जो भी धनुष उठाएगा, जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसे सीता जी वरमाला पहना देंगी। तो पहली बात, मनोहर कन्या की प्राप्ति। दूसरी बात, बड़ी विजय, क्योंकि उस राजा का यश पूरे संसार में फैल जाएगा कि राजा जनक की ऐसी सुंदरी, ऐसी सर्व सुलक्षणा कन्या के साथ इस राजा का विवाह हुआ है। तो उसकी जो विजय श्री है वो दिग दिगंतर तक फैलेगी। और तीसरी, उसकी जो कीर्ति है यानी उसका यश चारों ओर फैलेगा। लेकिन राजा जनक को लगता है कि ब्रह्मा जी ने ऐसे किसी को रचा ही नहीं है जो सीता जी को प्राप्त कर सके, जो इस धनुष को उठा करके सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त कर सके। बहुत निराश है राजा जनक, एक पिता के रूप में, एक राजा के रूप में, उनकी निराशा का कोई अंत नहीं है। इतना बड़ा उन्होंने समारोह किया था, एक एक राजा को उन्होंने अवसर दिया कि आओ और आकर के अपना भाग्य आजमाओ, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। इसलिए राजा जनक बहुत ही उदास हैं, बहुत ही निराश हैं। अब जनिको माख है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वै देही विबाहु। राजा जनक की क्या मनोदशा है, कितनी हताशा है, कितनी निराशा है, इसका बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में किया है। क्या कहते हैं राजा जनक कि अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। राजा जनक कह रहे हैं कि मुझे अब ये विश्वास हो गया है कि इस धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं है, क्योंकि यदि कोई वीर बचा होता तब तो वो इस धनुष को उठाता, लेकिन जिस पृथ्वी के बारे में मुझे मालूम था कि ये वीर वसुंधरा है, ये वीरों की धरती है, इसके ऊपर एक से एक महाबली लोग रहते हैं, आज मुझे उसकी वास्तविकता पता चली कि कोई है ही नहीं है इस धरती पर वीर जो आकर के इस धनुष को उठा पाएगा। इसलिए मैंने जान लिया, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, मैंने पूरा अनुभव प्राप्त कर लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इसलिए हे राजाओं, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी विनती है कि अब अपने मन की आशा को छोड़ दो, क्योंकि आप आए थे एक आशा लेके, एक विश्वास लेकर के कि आप सीता को पत्नी रूप में प्राप्त करोगे, लेकिन अब केवल आपके हाथ निराशा ही लग रही है, आप लौट जाइए, अपने अपने घर चले जाइए, मुझे विश्वास हो गया है कि ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है, सीता के हाथ में वर प्राप्ति नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कोई भी मेरे प्रण को पूरा नहीं कर पाया है। सुकृत जाई जो पनु परिहर हूँ, कुंवरी कुआरी रहूं का करूं, जो जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। राजा जनक बहुत दुविधा में है, निराशा भी है, दुविधा भी है, असमंजस भी है। उनकी मानसिक स्थिति इस समय बड़ी विचित्र है। केवल एक पिता, केवल एक राजा ही उस स्थिति को समझ सकते हैं, और राजा से ज्यादा एक पिता के मनोभावों का वर्णन यहां तुलसीदास जी कर रहे हैं कि राजा कहते हैं यदि मैं प्रण छोड़ देता हूं तो मेरा पुण्य चला जाता है। बहुत सुंदर बात है, वचन का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है।

क्योंकि जब हम किसी को कोई वचन देते हैं, हम किसी से कहते हैं हम तुम्हारा ये काम करेंगे, तो दूसरे के मन में ये विश्वास पैदा कर देते हैं कि उसका काम अवश्य ही हमारे द्वारा हो जाएगा। हम किसी से कहते हैं हम तुमको ये देंगे, इसका मतलब है जैसे ही हमने कहा तो हमने वचन दे दिया। और पहले तो जब बैंक वगैरह नहीं होते थे, लोग केवल वचन से ही अपने काम करते थे। किसी को वचन दे दिया तो वही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता था, वचन को ही सब कुछ माना जाता था। तो राजा जनक बोल रहे हैं कि मैंने तो ये वचन लिया है, मैंने ये प्रण किया है, ये वचन दिया था कि जो धनुष को उठाएगा उसे सीता मिलेंगी, तो ये मेरा प्रण है। अब मैं बड़ी दुविधा में हूँ, यदि मैं ये प्रण छोड़ देता हूँ तो मेरा पुण्य चला जाता है, यानी मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, अपने वचन से पीछे हट रहा हूँ, तो जो भी मैंने यश कमाया है, जो भी मैंने पुण्य कमाया है, वो सब समाप्त हो जाएगा, मैं पाप का भागी बनूंगा। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। दो ही स्थितियां हैं मेरे पास, या तो मैं अपनी कन्या को अविवाहित रहने दूं, और दूसरी स्थिति क्या है कि मैं अपना प्रण त्याग दूं। और यदि मैं प्रण त्याग दूंगा तो आप में से कोई भी राजा सीता का वरण कर सकता है, जिसे भी मैं समझूंगा कि आप में से सबसे श्रेष्ठ है, सबसे योग्य है, मैं उसे अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन इसमें क्या है, मेरा प्रण, मेरे वचन, मैं उससे मुकर नहीं सकता। तो फिर क्या करूं, क्या मैं अपनी कन्या को कुंवारी ही रहने दूं? बहुत दुविधा में हूं, बहुत हताशा में हूं, बहुत दुख में हूं, बहुत क्लेश में हूं, क्योंकि यदि मुझे ये पता होता, मुझे जरा भी इस बात का अनुमान होता कि ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, इस पृथ्वी पर अब कोई वीर बचा ही नहीं है, तो मैं ये प्रण कभी नहीं करता, क्योंकि आज अपने ही प्रण के कारण मैं उपहास का पात्र बन गया हूँ। उपहास का पात्र बन गया हूँ अर्थात सभी लोग मेरा उपहास करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि चले थे राजा जनक अपनी कन्या का विवाह एक ऐसे वीर से करने जो शिव जी के धनुष को उठा लेगा। लेकिन देखा, कोई तो वीर है ही नहीं है, कोई ऐसा कर नहीं सका। तो इस तरह से सब लोग मेरा उपहास करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मेरी कन्या दूसरी ओर अविवाहित रह जाएगी। हर तरफ से मानो मेरी हानि ही हानि हो रही है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या निर्णय लूँ, मैं क्या करूँ। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भये दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रद पट फर कत नय नर सौ हैं। जनक जी के इन वचनों को सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए। जब राजा जनक के इतने दुख भरे शब्दों को, इतनी करुणापूर्ण वचनों को जब सबने सुना, तो जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए कि अरे इतनी सुंदर कन्या, सर्वगुण संपन्न कन्या, जिसे देख करके देवता भी ललचा जाएं, उसे पत्नी रूप में पाने के लिए उत्साहित हो जाएं, ऐसी कन्या अविवाहित रह जाएगी। एक से एक साधारण कन्याओं के विवाह हो जाते हैं, और इतनी सुंदर, इतनी गुणी कन्या का विवाह नहीं हो पाएगा, ये सोच करके सभी स्त्री पुरुष बहुत दुखी हो रहे हैं। यानी जो भी वहाँ राजाओं के अतिरिक्त जितने भी नगरवासी थे, शुभचिंतक थे, वे सीता जी के लिए बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जितने राजा आए थे सबने अपना भाग्य यहाँ पे आजमा लिया है, कोई समर्थ नहीं हो पाया है, इसका मतलब है सब लौट करके चले जाएंगे और सीता जी अविवाहित रह जाएंगी। लेकिन अभी कोई वहाँ ऐसा बैठा हुआ है जिसने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, और वो कौन है? लक्ष्मण जी। माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपट फरकत नय नर सौ हैं। लक्ष्मण जी तमतमा उठे, लक्ष्मण जी का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, उनकी भौहें

टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। लक्ष्मण जी राजा जनक के इन वचनों को सह नहीं सके। उन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात राजा जनक ने कह दी। ठीक है कि बहुत सारे जितने भी राजा आए थे वे सब आए धनुष उठाने, उनमें कोई भी समर्थ नहीं हो सका, लेकिन जो राजा ने ये बड़ी बात कह दी कि ये धरती वीर विहीन हो गई है, ये तो उन्होंने मानो अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया है। उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। जब श्री राम जैसा राजकुमार यहाँ बैठा है तो भला राजा जनक ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। तुलसीदास जी कहते हैं, माखे लखन कुटिल भई भौहें। कैसे लक्ष्मण जी की मनोदशा और उनकी पूरी जो भाव भंगिमा है वो कैसी है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं वो तमतमा उठे, यानी क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ क्रोध के कारण फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। हम अपने क्रोध को किस प्रकार प्रकट करते हैं? अपनी भौहों के द्वारा भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, होंठ फड़कने लगते हैं, नेत्र लाल हो जाते हैं। ये सारी बातें लक्ष्मण जी पर हो रही हैं। लक्ष्मण जी का अंग अंग क्रोध से जल रहा है और उनका क्रोध उनके अंगों से, उनके होंठ से, उनके नेत्रों से, उनकी भौहों से अभिव्यक्त हो रहा है। कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। लेकिन मर्यादा का भी पालन करना है लक्ष्मण जी को। मर्यादा पुरुषोत्तम वहां बैठे हुए हैं, इसलिए रघुबीर जी के डर से वे कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण जैसे लगे। लेकिन जब नहीं रह सके तब उन्होंने रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और यथार्थ वचन बोलना आरंभ किया। लक्ष्मण जी के अंदर क्रोध की ज्वाला जल रही है। चाहते हैं कि अपना सारा क्रोध अपनी वाणी से अभिव्यक्त करें, और ना केवल अभिव्यक्त करें बल्कि यदि कुछ करना है, किसी को दंड देना है, तो उसके लिए भी वो तत्पर हैं। लेकिन राम जी बिल्कुल शांत धीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। राजा जनक के वचनों से ना तो वे निराश होते हैं, ना वे उद्विग्न होते हैं, और शांत मुद्रा में बैठे हैं। इसलिए जब लक्ष्मण जी उन्हें देखते हैं तो उनकी मर्यादा के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। क्रोध को अपने अंदर ही मान लो पीने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने हृदय में दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए जब राम जी को देख रहे हैं कि राजा जनक के इतने कठोर वचनों को सुनकर राम जी की क्या प्रतिक्रिया है, तो देखते हैं कि राम जी तो शांत बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को जनक जी के वचन बाण जैसे चुभते हैं, जैसे लगता है किसी ने उनके हृदय में तीर मार दिया हो और उनका हृदय घायल हो गया हो। बहुत प्रयत्न किया उन्होंने अपने क्रोध को, अपने आक्रोश को, अपने आवेश को रोकने का। चूंकि बहुत ऊंची बात कह दी थी राजा जनक ने, इसलिए उन्हें लगा कि मुझे तो अपनी प्रतिक्रिया देनी है, राम जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो बहुत ही मर्यादित आचरण करने वाले हैं। तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में सिर निवाया और वे यथार्थ वचन बोले, यानी जो उनके हृदय में बात है वो बोलने जा रहे हैं। क्या बोलने जा रहे हैं? रघुबंसी न महु जह को होई, तेही समाज अस कही न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी राजा जनक ने कहे हैं। लक्ष्मण जी कहना चाह रहे हैं कि रघुवंशी राम यहाँ उपस्थित हैं,

और जहाँ रघुवंशी राम यानी वो वंश रघुवंश जिसकी कीर्ति पताका दूर दूर तक लहराती है और उस रघुवंश में श्री राम हैं, उनकी उपस्थिति में कोई इतने कठोर वचन कहे कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ये तो बहुत ही अनुचित बात है। इसलिए जो जनक जी ने वचन कहे हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं इसे हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम पूरा करें। धन्यवाद। नमस्कार।

10:51 हुए हैं श्रोताओं, आपने साथ दिया इस कार्यक्रम में। भक्ति धारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। चलिए उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

0: 11 बज चुके हैं, स्टूडियो में आ गए हैं आदित्य, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास श्रोताओं को भी नमस्कार। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर आज फिर से लाथुकेनी का दौरा करेंगे। पिछले चार दिनों से वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इलाके से गंदे पानी की पंपिंग जारी रहे और GECC लिमिटेड कंपनी प्रभावित क्षेत्र से मृत मछलियां हटाए। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी

थी कि जनरल मैनेजर नवीन जवाहिर के अनुसार 6000 लीटर की क्षमता वाले तीन सैनिटेशन ट्रकों ने 50 से ज़्यादा चक्कर लगाए हैं और इसके अतिरिक्त GECC लिमिटेड की लोरियों के भी 106 चक्कर हुए हैं। असल में 16 फार्म परियोजना के सिलसिले में पिछले 11 जून को GECC लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे खुदाई कार्यों के दौरान वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक

0: क्षेत्र में काम करने के लिए अब अपने सभी परमिट्स प्रस्तुत करने होंगे। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि, घरों और रेजिडेंशियल केयर होम्स के केयरर्स के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक फंड की स्थापना और 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर चिकित्सा सेवाओं के विस्तार जैसे प्रस्ताव दिए हैं। ये घोषणा आज 15 जून को बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुबो ने अपने संदेश में की। उन्होंने बुजुर्गों की बेहतर सुरक्षा के लिए बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मौजूदा सहायता मैकेनिज्म्स पर फिर से गौर करने और नए कानूनी ढांचे स्थापित करने की बात कही। उन्होंने मॉरिशन समाज के विकास में बुजुर्गों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और ईरान ने ऐलान किया है कि दोनों पक्ष मध्य पूर्व में संघर्ष पूरी तरह रोकने और हॉर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए एक शांति संधि पर सहमत हुए हैं, जिस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि इस दस्तखत के बाद तेल सप्लाई की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस दावे के तुरंत बाद वैश्विक मंडी में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी ताकतों द्वारा किए गए सिलसिलेवार मिसाइल हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और एक ऐतिहासिक कैथेड्रल को की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनियन प्रधानमंत्री ने इसे देश की ऐतिहासिक विरासत पर गहरा आघात बताया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Radio Mauritius.
3: 819 kilohertz par ye hai Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.
4: Shamme Farooza.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے معزز سامعین امید ہے آپ بفضل خدا خیر وعافیت سے ہوں گے اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صوبائی کے ساتھ آج کی اس اردو نشریات میں ہر پیر کی طرح آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک حمد بیان نعت و سلام تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم

सदकल्लाहु लज़ीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। मौज़े सामीन, जब अल्लाह हमारे रास्ते में रुकावट भेजता है और हमें एक ही जगह पर रोक देता है तो वो हमारी हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि हम वो नहीं देख सकते जो वो देख सकता है। इसलिए ताखीर पर, देर पर अपने नसीब को या किसी को भी उसके ज़िम्मेदार ना ठहराएं, बल्कि शुक्र अदा किया करें। आगे कौन सी आफत, हादसा हमारा इंतज़ार कर रही थी जिसने अल्लाह ने हमें उस आफत से महफूज कर लिया। खालिक मालिक जानता है कि किस वक्त और कहां तक हमारा सफ़र करना बेहतर है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।

आप जहां से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका एक बार फिर दिल से खैर मकदम करते हैं। मौजूद सामीन, अब आप समाअत फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी।

अन पर काबू रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे, यानी बेकार इधर उधर ना जाओ और अपनी खता पर आंसू बहाओ। याद रहे कि जबान की हिफाजत और निगहदाश्त और वसूलियात व लगवियात से इसे बाज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा सरकशी और सबसे ज़्यादा फसाद नुकसान इसी जबान से होता है। और जो शख्स जबान को खुली छुट्टी दे देता है और इसको लगाम उसकी ढीली कर देता है तो शैतान उसे हलाकत में डाल देता है। जबान की हिफाजत करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे नेक आमाल की हिफाजत होती है। चूँकि जो शख्स जबान की हिफाजत नहीं करता बल्कि हर वक्त गुफ्तगू में मसरूफ़ रहता है तो ऐसा शख्स लोगों की गीबत में मुब्तिला होने से बच नहीं पाता। यूं ही इससे कुफ्रिया अल्फाज निकल जाने का बहुत अंदेशा यानी रिस्क रहता है। और ये दोनों ऐसे अमल हैं जिससे बंदे के नेक आमाल ज़ाया हो जाते हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी शख्स ने कहा, फ़लाँ शख्स ने आपकी गीबत की है। ये सुनकर आपने गीबत करने वाले आदमी को खजूरों की थाल भरकर रवाना कर दिया और साथ में ये भी कहला भेजा, सुना है कि आपने मुझे अपनी नेकियां गिफ्ट की हैं तो मैंने उनका बदला देना बेहतर जाना, इसलिए खजूरों का ये थाल हाजिर है। और दूसरा फ़ायदा यह है कि ज़बान की हिफाजत करने से इंसान दुनिया की आफात से महफूज रहता है। चुनांचे हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ज़बान से ऐसी बात ना निकालो जिसे सुनकर लोग तुम्हारे दांत तोड़ दें। और एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अपनी ज़बान को बेलगाम ना छोड़ो ताकि ये तुम्हें किसी फसाद में मुब्तिला ना करा दे। नीज ज़बान की हिफाजत ना करने का एक नुकसान ये भी है कि बंदा नाजायज़ और हराम लग और बेकार बातों में मसरूफ़ होकर गुनाहों में मुब्तिला हो जाता है और अपनी ज़िंदगी की कीमती तरीन चीज़ वक्त को ज़ाया कर देता है। हज़रत हसन बिन सिनान रहमतुल्लाहि ताला के बारे में मरवी है कि आप एक बाला खाने यानी मकान की छत पर बनाए जाने वाले कमरे के पास से गुज़रे तो आपके मालिक से पूछा, ये बाला खाना बनाने तुम्हें कितना अरसा गुजरा? ये सवाल करने के बाद आपको दिल में सख्त नदामत यानी शर्मिंदगी हुई और नफ्स को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए मगरूर नफ्स, तू फजूल और ला यानी सवालात में कीमती तरीन वक्त ज़ाया को कर देता है। फिर इस फजूल सवाल के कफ़ारे में आपने एक साल रोज़े रखे। अल्लाह अकबर। और दूसरा नुकसान ये है कि नाजायज़ और हराम गुफ्तगू की वजह से इंसान क़ियामत के दिन जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब में मुब्तिला हो सकता है जिसे बर्दाश्त करने की ताकत किसी में नहीं। लिहाजा आफियत इसी में है कि बंदा अपनी ज़बान की हिफाजत करे और इसे इन बातों के लिए इस्तेमाल करे जो उसे दुनिया और आखिरत में नफ़ा दें। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ज़बान की हिफाजत व निगहदाश करने की तौफीक अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊँ जो बदन पर हल्का और मीज़ान यानी स्केल में भारी? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? इरशाद फरमाया, वो खामोशी, अच्छे अखलाक और बेफायदा गुफ्तगू को छोड़ देना है। यानी आपका अच्छा अंदाज, लोगों का मिलना, लोगों से मिलना, उसे हुस्न अख़लाक कहते हैं। फजूल बात ना करना यानी खामोश रहना, ये भी अच्छी बात है, इससे रोब दबदबा भी होता है। और बेफायदा यानी जिसमें कोई फ़ायदा ना हो वो गुफ्तगू ना करना। प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। हज़रत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी की खूबसूरती क्या है यानी ब्यूटी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी ज़बान। जन्नत के नौजवानों के सरदार सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अपने नाना जान मक्के मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम अली मुरीदवान को जो नसीहत फरमाते सुना उनमें से एक ये भी है, खुशखबरी है उसके लिए जो फजूल गुफ्तगू से रुका रहा। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार ये बात इरशाद फरमाई, अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाए जो बात करता है तो फ़ायदा यानी सवाब पाता है और जो खामोश रहता है तो सलामत रहता है।
फरमाने इमाम।

0: खौफिलीन, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और अपने रब को अपने दिल में याद करो गिड़गिड़ाते हुए और डरते हुए और बुलंदी से कुछ कम आवाज़ में, सुबह शाम और गाफिलों में से ना हो। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक में यह भी है कि अल्लाह पाक की कसम मुझे तुम पर फ़क्र यानी गुर्बत का खौफ नहीं, बल्कि मुझे डर है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फैलाई गई थी, बस तुम भी इस दुनिया की खातिर पहले लोगों की तरह बहम यानी आपस में मुकाबला करोगे और ये तुम्हें गफलत में डाल देगी जिस तरह इनसे पिछली कौमों को गाफिल कर दिया। मुकाशफ़तुल क़ुलूब में है हज़रत सैयदुना शेख अबू अली दक्काक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़े वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह सख्त बीमार थे, मैं इयादत के लिए हाजिर हुआ, इर्द गिर्द मुअतक़िदीन का हुजूम था, वो बुज़ुर्ग रो रहे थे। मैंने अर्ज़ की, ए शेख क्या दुनिया छूटने का पर रो रहे हैं? फरमाए, नहीं बल्कि नमाज कज़ा होने पर रो रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर आपकी नमाजें क्यों कर कज़ा हो गई? फरमाया, मैंने जब भी सजदा किया तो गफलत के साथ, और जब सजदे से सर उठाया तो गफलत के साथ, और अब गफलत ही में मौत से हम आगोश हो रहा हूँ। फिर एक आह सर्द दिल पुर दर्द से खींच कर चंद अरबी अशार पढ़े जिनका तर्जमा ये है, मैंने अपने हशर यानी उठाए जाने, क़ियामत के दिन और कब्र में अपने रुखसार यानी गाल के पड़ा होने के बारे में गौर किया, मुझे मिली हुई इतनी इज्जत व रिफत यानी बुलंदी के बाद भी मैं अकेला पड़ा हूँगा और अपने जुर्म की बिना पर रहन यानी गिरवी होऊंगा और खाक ही मेरा तकिया होगी। मैंने अपने हिसाब की तवालत यानी लंबा होने और नामाए आमाल दिए जाने के वक्त की रुसवाई के बारे में भी सोचा, मगर ए मुझे पैदा करने वाले और मुझे पालने वाले, मुझे तुझसे रहम की उम्मीद है, तू ही मेरी ख़ताओं को बख्शने वाला है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े में किस कदर इबरत है, ज़रा इन अल्लाह वालों को देखिए जिनका हर लामा याद इलाही में बसर होता है मगर फिर भी आजजी का आलम यह है कि अपनी इबादात व रियाजात को किसी खातिर में नहीं लाते और अल्लाह पाक की बेनियाजी और उसकी खुफिया तदबीर से डरते हुए गिरिया उजारी करते यानी रोते धोते हैं। उन गफलत के मारों पर सद करोड़ अफसोस कि नेकी के नून का नुक्ता तक जिनके पल्ले नहीं, इखलास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, मगर हाल यह कि अपनी इबादतों के बुलंद बांग दावे करते नहीं थकते। अल्लाह पाक के नेक बंदे गुनाहों से महफूज होने के बावजूद खौफ इलाही से थर थराते, कप कपाते, आंसू गिराते, मगर गफलत शियार बंदों का हाल यह है कि बेधड़क मासियत यानी नाफरमानी का सिलसिला चलाते, अपने गुनाहों का आम ऐलान सुनाते और फिर इस पर ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगाते, ज़रा नहीं लुजाते यानी शर्म नहीं आती। कान खोल कर सुनिए, हज़रत सैयदुना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं, जो हंस हंस कर गुनाह करेगा वो रोता हुआ जहन्नम में दाखिल होगा। गुनाहों से मुझको बचा या इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ा या इलाही। ए आशिकाने रसूल, गफलत की नींद उड़ाने, गुनाहों की आदत छुड़ाने और सुन्नतों पर अमल का जज्बा बढ़ाने के लिए दीनी माहौल से वाबस्ता होइए, काफ़िलों में सफ़र कीजिए और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इन नेक आमाल की बरकत से, दीनी माहौल की बरकत से नेकियों का जज्बा मिलेगा। गफलत की चादर जो हम ओढ़े हुए हैं वो उतरेगी, नेकियां करने के मौक़े मिलेंगे, गुनाहों से बचने का मौका मिलेगा, गुनाहों से कैसे बचा जाता है वो सीखने का मौका मिलेगा। जो हमने बयान सुना कि हमें लग्व यानी फजूल काम नहीं करने, फजूल बातें नहीं करनी, फजूल आदतें नहीं अपनानी, इन सब कामों को छोड़कर नेकियों के काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं। अल्लाह पाक हमें नेकियां करने वाला बनाए, फजूल बातों से फजूल कामों से बचने वाला बनाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा होगा।

हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मरीज़ के पास जाओ तो उसकी उम्र के बारे में

उसके दिल को खुश करो, यानी उसकी उम्र और उसकी ज़िंदगी के बारे में उसको खुश करो। इस तरह की बातें किसी होने वाली चीज़ को रद्द तो ना कर सकेंगी, लेकिन इससे उसका दिल खुश होगा और यही आयादत का मकसद है। बहवाला जामा अल-तिर्मिज़ी शरीफ।

मौजूद सामीन, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज की पेशानी पर दस्ते मुबारक रखते, फिर उसके सीने और पेट पर हाथ फेरते और दुआ करते, अल्लाह इसे शिफा दे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज के पास तशरीफ़ ले जाते तो फरमाते, कोई फ़िक्र की बात नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये बीमारी गुनाहों का कफ़ारा और तहूर बन जाएगी। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमने आज जो कुछ सीखा और सुना, हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाई यूसुफ़ ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समय थयो जब बपोरना पौणा बे
2: मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। घड़ी मिला लीजिए, समय दिन के ठीक 2:30 बजे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम 819 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है और मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आपकी सेवा में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर बेहतरीन से बेहतरीन गीतों का ये जो सिलेक्शन है जो आप करके आते हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कि कहाँ से ढूंढे, पर चलिए कोशिश हमारी जारी रहती है कि आपके गीतों को हम चला सकें। तो चलिए 4028085 पर लाइंस खुली हैं और साथ ही साथ 5251705 पर आप ही के पसंदीदा गीत का ये डेडिकेशन के लिए नंबर है, जहां पर आप अपने नंबर व्हाट्सएप के द्वारा या आम मैसेज के द्वारा हमारे साथ बेशक जुड़ सकते हैं। निवेदन करते हैं हम अपने सभी लिसनर्स के साथ कि 5251705 पर आप केवल अपने मैसेजेस भेजें, ना कि फ़ोन करें। चलिए आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और 90s के हसीन दौर को एक बार फिर जीते हैं और ये गाना बहुत ही मशहूर, हालांकि ये फिल्म 90s के ज़माने में यानी लेट 90s में आई थी 1989 में, और इस फिल्म में डेब्यू कलाकार थी भाग्यश्री। और वैसे सलमान खान ने इस फिल्म में लीड रोल के बतौर डेब्यू किया था। तो आइए इस फिल्म के इस बहुत ही मशहूर से गाने को सुनते हैं और उस जमाने के इस गीत को जीते हैं। SP बालसुब्रमण्यम की आवाज में रखा हुआ ये गीत।

0: आपकी पसंद।
1: लाजवाब गाना, और मैं समझती हूँ ये गाना सुनते ही आपके दिलो दिमाग पर सलमान खान की जैसे शक्ल आ गई होगी। बिल्कुल एसपी बाला सुब्रमण्यम की प्यारी सी आवाज़, उनकी आवाज़ सलमान खान पर बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। और यहाँ पर चलिए अगला जो मैसेज है ये है शनाया की ओर से। और शनाया, आपका मैसेज पहले तो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा क्योंकि आपने गाना मांगा फिल्म अनारी का, पर उससे पहले आपने लिखा 1956 1957 1958 1959 की फिल्म अनारी। अब ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, पर मैं आपको सच बताऊं उस ज़माने में एक ही फिल्म आई थी अनाड़ी, और ये थी राज कपूर साहब की। तो ज़रूर इस गीत को हम चलाएंगे आपके नाम शनाया नाना और नानी ऑफ वाकवा के लिए। ज़रूर इस गाने को आप एंजॉय कीजिए, लता जी की प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ ये गाना।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को हम सजा रहे हैं यहाँ रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। और चलिए इसी के साथ 2:41 हो चुके हैं और ये अगली फरमाइश आई है अनीता जी की ओर से, जो मोरालबिया से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं। और फिल्म दो भाई का ये अगला गाना वे मांगती हैं करुणा, अमृता और विनीता के नाम। तो बस आप भी हमारा प्यार से साथ दीजिएगा, लाजवाब गीतों का ये सिलसिला जारी रखते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: लाजवाब गीतों का ये सिलेक्शन जारी रखते हैं और चलिए यहाँ पर हमारे साथ रिहाना जी हमेशा की तरह साथ दे रही हैं और माला फाउदा जो कुछ नासाज है उनकी तबीयत बहुत बीमार है और सुरेखा जी भी की भी तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो चलिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप बस जल्द ठीक हो जाएं। आपकी प्यारी सखी रिहाना आपके लिए बेहद परेशान है। सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं जो आपकी तकलीफ़ में बस आपका साथ देते हैं, आपकी तकलीफ़ को सुनकर ही वे परेशान हो जाते हैं। तो चलिए फिल्म अगला गीत ये है फिल्म सजा से लिया हुआ, तलत महमूद और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद का कार्यक्रम, बहुत ही खास कार्यक्रम, और जहां पर अपने अपनों के नाम हम करते हैं कोई ऐसा गाना जो उन्हें अपने बचपन के दिनों की या जवानी के दिनों की याद दिला दे। और वैसे आज बहुत सारे लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, यहाँ पर मना रहे हैं जन्मदिन विवेक बंजन जो हुए हैं 23 साल के। उनके पापा है प्रवीण, मामा है वीना, सभी बंजन परिवार गिवजपुर से। और खास कर ये विशेष आ रही हैं उदय जी की ओर से विवेक बंजन के लिए। यही विश हम जरूर करना चाहेंगे प्रेमिला सी गुलाम को, जो अपना जन्मदिन मनाने वाली हैं कल यानी 16 तारीख को, मंगलवार को। उनकी प्यारी बहन अनसुईया राम के अलावा जो हैं त्रियोले से, और साथ ही साथ उनके भगीने हैं भगीना नीतीश, नातिन है याना, साथ है उनकी प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो हैं बेचू परिवार से, हिश्मा फ्लाक से हमेशा साथ देती हैं। और आज 64 वर्ष के हो चुके हैं मुनीर तुलसी जी। हाँ, आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाइयाँ। मौडाल बिया से आप हमारा साथ दे रहे हैं और बहुत सारी बधाइयाँ आ रही हैं रानी, स्वीटी, आशा, वंदना, बबीता, राजश्री, पिंकी, आरती, कृष्टि, साथ है परी, शनाया, मनोज और आपकी प्यारी छोटी सी नातिन चिश्विका की ओर से। साथ ही साथ आज देवीना दोगाज जो हैं 60 वर्ष के हो चुकी हैं, मौडाल भी ऐसे आप हमारा साथ दे रही हैं। देवीना जी, आपको भी जन्मदिन बहुत बहुत बधाई हो। आपके पति हैं सुनील, बेटा जेवीन, अनुषा, जेनिष्ठा, नीतीश, नितेश, रानी, नातिन है आपके आरवी, साथ है आरव, सभी दोगाज बिहारी दुबारी और तुलसी परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा आशीर्वाद। चलिए, आपके सभी सपने पूरे हों, आप स्वस्थ रहें और ईश्वर का असीम प्यार और आशीर्वाद आप प्राप्त करें।

0: बस यूं ही खुशियों के दीपक जलमलाए आपके आंगन आपके झोली में। और साथ ही साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म है वचन और ये गाना है गायत्री जी की ओर से, जो सैंपियर से इस वक्त साथ दे रही हैं। बहन है अमृता, उनकी तीन बेटियां नेहा क्षिति दिव्या, बेटे हैं सुधीर और कमलेश बहू सुधा, और आपकी प्यारी भाभी मीरा, उनकी दो बेटियां गिरिशा और मेधा के नाम। फिल्म है वचन और चलिए यही गाना हमें जोड़ेगा सपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ। समाचारों के बाद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा।
1: यहाँ

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सपहर की ठीक 3 बजे आइए, जुड़ते हैं 3 बजे के समाचारों के साथ।

0: मेरे सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। शनिवार रात को मोतायलों के पास दिमागियान के हिल्स व्यू रिसेप्शन हॉल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। 54 साल की रीता सिबारत की मौत एक ट्रक से कुछ ले जाने से हुई। ये ट्रक उसके बेटे युधिष सिबारत की थी, जो एक ढलान पर पार्क थी और अचानक चल पड़ी। तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स ट्रक का परीक्षण करेंगे। घायल सदाल हत्याकांड के सिलसिले में दो अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो ही नियानका न्यून और उनका बेटा शहाद यानका न्यून शामिल हैं। दोनों पर इस सोमवार को हत्या के आरोप में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार शाम रेजिडेंस लाक्यूआ की रोबोट स्कॉट गली पर हुई एक झड़प में 28 वर्षीय घायल सदाल की मौत हो गई। उसे चाकू लगी थी। पुलिस द्वारा जुटाई गई शुरुआती जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोही नियानका न्यून और घायल सदाल के बीच बहस हुई थी। इस मामले के तीसरे संदिग्ध मोहम्मद शेख बुलाकी, जो दोही यानका न्यून के सबसे छोटे बेटे हैं, उनको चोट लगी। फिलहाल वे पोटवी के जितु अस्पताल में पुलिस की निगरानी में भर्ती हैं। पॉइंट साबला में एक नाली से गंदा पानी बहकर लगून के पास पहुंच गया। इस पानी के बहाव को रोकने के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की लगभग 100 टैंकर तैनात की गई हैं। 5 दिनों में करीब 1000 क्यूबिक मीटर गंदा पानी पंप किया गया। गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पाइप टूट गया, जिसके बाद बुधवार रात से ही एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नाली में भले ही मरी हुई मछलियां पाई गई हैं, लेकिन पॉइंट साबला के समंदर को प्रदूषित होने से बचाया जा सका है। विदेशी समाचारों में वर्ल्ड कप की बात करते हैं। वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस का दौर जारी है। नेदरलैंड्स और जापान के बीच खेला गया मैच आज ड्रॉ रहा 2-2। वहीं स्वीडन का सामना हुआ ट्यूनिशिया से और स्कोर रहा स्वीडन 5 और ट्यूनिशिया 2। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वेडर को हराया 1-0। आज रात को लोगों की नजरें एक और रोमांचक मैच पर रहेगी। ग्रुप एच में स्पेन खेलेगा काबो वर्दे के खिलाफ और रात 11 बजे बेल्जियम का सामना होगा इजिप्ट से। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius, Radio Mauritius.
3: आपकी पसंद।
4: आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में बढ़िया से बढ़िया गाने आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को जारी रखते हैं। माइक पर आपका साथ दे

रही है रत्ना, जरूर साथ दीजिएगा प्यार से। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, और ये है फिल्म बेजुबावरा का गाना। ये गीत की फरमाइश कर रही हैं बोपासे से बसंती जी, सभी सुनने वालों के नाम। लता जी की प्यारी सी आवाज़ है और ये गाना, चलिए आइए सुनते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम के बीच।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम। और चलिए यहाँ पर 3:08 होने जा रहे हैं और अगला गीत जो है फिल्म मदहोश से लिया हुआ गाना, ये जाएगा शकुंतला जी के लिए जो इस वक्त मोतालोंग से साथ दे रही हैं और साथ दे रहे हैं उनकी प्यारी ननंद गायत्री, जोहन अल्फोंस से बेटा अजय, साथ है मामी कल्याणी मोहन मेबक से और सभी सुनने वालों के नाम। फिल्म है मदहोश, तलत महमूद की प्यारी सी आवाज। चलिए इसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहेंगे, यहाँ पर ज्योति जी हमेशा साथ देती है, यूनियन पार्क से प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्ठा के लिए।

0: की पसंद।
1: कुछ यादें ऐसी होती हैं जो मिटाए मिटती नहीं, बस यूं ही जिंदगी के इस राह में हमारे साथ मरते दम तक चलती है। चलिए यहाँ पर काटरबोन से प्रेमिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये अगला गाना सीपोल परिवार के नाम जलाना चाहती हैं। फिल्म दोस्ती का गीत उनके खास उनके भगीने के लिए, भगीना जो इस वक्त उनकी तबीयत कुछ नासाज है, उनके माता पिता, तीन भाई एक बहन के लिए और सभी सीपोल परिवार के नाम।

लाजवाब गीतों का ये सफर। और यहाँ पर अनीता जी फ्लिक ऑन फ्लाक से जुड़ चुकी हैं, उनके पति राज, बेटे हैं अंतिश, साथ है अंकुश, बहू है मनीषा, आशिमा, पोती है हिमेशा, आध्या और पोता है आंच। और उनके नाम करते हैं ये अगला गीत। फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल ट्रैक लता जी की आवाज़ में।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रखते जाएंगे और यहाँ पर मीला जी हमारे साथ है गिशानू से और आज उनके प्यारे जीजा आनंद बंतु का जन्मदिन है जो विल में रहते हैं। और आनंद जी, आपकी प्यारी पत्नी शीला और सभी बच्चों की ओर से, खासकर दामगी, सीमादगी और साथ ही साथ लीला लालधारी परिवार, मंडप परिवार और सभी प्रियजनों की ओर से आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए, हमारी ओर से आपके लिए ये गाना लेकर आए हैं हम। जिंदगी में चाहे खुशी हो चाहे गम हो, उतार चढ़ाव से निकलते हुए, अपनों का प्यार पाते हुए जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां आपको।

चलिए इसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहेंगे। गीता जी, आप के प्यारे नाती आदित्य का, जिनके आज 11 वर्ष पूरे हुए हैं, बहुत बहुत प्यार, प्यारी दादी गीता, दादा हैं रोहित पोफेया से, प्यारा भैया आरव, मामा है मनीषा, पापा रवि, चाचा विनय और राजीव, दो चाचियों की ओर से, साथ ही साथ आपकी प्यारी कजिन जानवी और तनिष्क।

0: आपकी पसंद।
1: वही जिंदगी भी इन गीतों की तरह हंसती मुस्कुराती यूं ही कट जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला गीत जो है फिल्म बाबुल से लिया हुआ गाना, और ये जो गाना है आफेज लावेनिया से अपने सभी बाबा साहेब परिवार के नाम मांगती हैं। ये गाना जो है तलत महमूद और शमशाद बेगम की प्यारी सी आवाज में, 1948 के जमाने का ये गीत। चलिए यही गाना हम करेंगे सुनीता जी के लिए, जो इस वक्त घोंघुब से साथ दे रही हैं कुंगमा से, उनकी प्यारी बहन विमला वीना जी है गुडलैंड से, और अमृता जी भी घोंघुब से ही साथ दे रही हैं।

चलिए, यहाँ पर 3:31 हो चुके हैं, 4 बजे तक ये कार्यक्रम जारी है। विद्या जी इस वक्त यूनियन पार्क से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चाची कुमारी बहन है सतीश, सुरेखा, बबीता और सुनीता के नाम करेंगे ये अगला गीत। फिल्म है आरजू, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

फिल्म है छोटी बहू। ये गाना जाएगा सरिता जी के लिए, जो इस वक्त का ट्रिब्यून से हमारा साथ दे रही है। और सुनीता जी हमारे साथ कोविडॉन्स से जुड़ी हुई है। आज मन कुछ उदास है, दिल कुछ भारी है, कई बार होता है, सब दिन समान नहीं होते। चलिए रेडियो का साथ हर सुख दुख का साथी।

चलिए यहाँ पर अपनापन, उमा जी आप अपनी प्यारी ममा सुमन सुबाया गंडोला को कहना चाहती हैं जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। रोज़ बेल से आप साथ दे रही हैं और रोज़ बेल से ये प्यारी सी विशेस जाती है सुमन जी के लिए। और ये अगला प्यारा सा बहुत ही प्यार से भरा हुआ तराना है, खाकी फिल्म से लिया गया और ये जाएगा दीपिने से शीला जी के लिए।

इस वक्त हमारा साथ दे रही है और ये है श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में। चलिए यही गाना हम जोड़ते चलेंगे हमारे और अन्य लिसनर्स के लिए। विश्वानी दुमन वाकवा से है, इंदिरा शारदा उनकी प्यारी बहने, नीला प्रतिभा उनकी सखियां, साथ है शोभा और गीता गजाधर। सुदेवी जी भी वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ है ललिता कुशल त्रियोले से, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना मलेंगा से है, अनुषा, किरण, किशनी, कृषय, प्रनीता, वंश, वैभव, वीर, निया, राम रतन, राम गुलाम और कुवारू परिवार के नाम।

दिल से दिल का रिश्ता हुआ, जुड़ा हुआ ये रिश्ता। और चलिए यहाँ पर प्यार से जुड़ता है और आप भी हमारा बहुत ही प्यार से साथ देते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। गिविद खयोल से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं साधना जी, मौदालबिया से उनकी प्यारी बेटी अनुषा, दामाद है सतीश, नाती है, नातीन साथ है जिया, तेजल

और लाहौजा से कुशल है और बहू संहिता, यूनियन पार्क से बेटा नितीश, बहू कवीना, नाती है क्रियान और सब ये थाश्विक दुबई से हमारा साथ दे रहे हैं और बेटी मंशा और सभी जीवन परिवार के नाम अगला गीत ये जोड़ते हैं। और बिल्कुल ये गाना है फिल्म रफ्तार का। चलिए आप भी हमारा साथ देते रहिएगा। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्यामा रघुनंदन घोंगोप से, साथ है उनकी प्यारी सखियाँ वीना रामफल और विश्वानी जी, भैया है जयप्रकाश, भाभी नम्रता, केशव और युधीश हमेशा की तरह साथ देते हुए। जी हाँ, फिल्म है रफ्तार, गीत है मुकेश साहब और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: की पसंद।
1: चलिए इसी के साथ इंद्रानी जी इस वक्त वाकवा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कल यानी 16 तारीख को इंद्रानी जी अपना जन्मदिन मनाने वाली है सभी चतागु परिवार की ओर से। उनके पति हैं राजमन, बेटा दो बेटियां नीरू और नीता, बेटा है रोशन, बहू है पद्मिनी, साथ है पोता अंकुश और पोती मोक्षदा। फिल्म अनुपमा का ये गाना आपने मांगा है आशा ताई की आवाज़ में।

0: की पसंद।
1: चलिए यहाँ पर बंधु परिवार भी हमारे साथ रियोली से जुड़ा हुआ है और ये आखिरी गाना जाएगा माहिन जी की ओर से, पालमा से भी साथ दे रहे हैं और ये आखिरी गाना है फिल्म मैंने प्यार किया से लिया हुआ, लता जी की आवाज़ में, उनकी खास दीदी मान के लिए और सभी सुनने वालों के नाम। कॉन्फोको से इस वक्त संध्या जी भी अपनी गज़ल का इंतज़ार कर रही है, पर क्या करें संध्या जी, समय बहुत कम रह गया है, पर कोशिश रहेगी जारी, आप भी अपना प्यार यूं ही हम पर बरसाते रहें, आप भी साथ देते रहें, ज़रूर कोशिश रही तो हम अगले प्रोग्राम में आपकी फरमाइशी गीत को हम ज़रूर चलाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुदत्त, सुरेश और देविका, आशा करते हैं ये आखिरी गाना भी आपको पसंद आएगा। बस यूं ही साथ देते रहिएगा दिल से, और इसी के साथ फिल्म मैंने प्यार किया का ये आखिरी गीत SP बालासुब्रमण्यम और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, ठीक 4 बजे आप जुड़ पाएंगे क्षितिज कार्यक्रम के साथ, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे श्रीमान शंभू जी। तो इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्ते, शुभ संध्या आप सभी को।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: क्षितिज, क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
3: नमस्कार श्रोतागण, प्रिय श्रोतागण, आज एक बार फिर हम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से क्षितिज कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी भाषा, साहित्य तथा इनसे संबंधित अन्य बातों पर विचार विनिमय करते हैं, ताकि हिंदी भाषा का विकास हो सके, इसकी प्रगति में चार चांद लग जाए। इस विषय पर आज हमारे विशेष मेहमान प्रोफेसर सत्यपाल सिंह जी भारत से पधारे हुए हैं और MBC की स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। प्रोफेसर जी, हम आपका सादर नमन करते हैं।
4: धन्यवाद श्रीमान जी।
3: जैसे कि मैंने बताया कि ये भारत से आए हुए हैं और संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ भी है, और यहाँ पर महात्मा गांधी संस्थान में ये व्याख्याता के रूप में पधारे हुए हैं। तो अधिक न कहते हुए हम यही आशा करते हैं, हम उन्हीं से पूछने जा रहे हैं कि संक्षिप में कृपया आप अपना परिचय दीजिए।
4: धन्यवाद श्री धनराज शंभू जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय देने से भी पहले विश्व हिंदी सचिवालय और MBC का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया। मैं प्रोफेसर सत्यपाल सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सीनियर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अब यहाँ भारत से महात्मा गांधी संस्थान में संस्कृत और भारतीय दर्शन की संयुक्त पीठ पर 2 वर्ष के लिए नियुक्त हुआ हूँ। मेरा विषय मूल रूप से संस्कृत है, जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, भाषा विज्ञान और वैदिक साहित्य मेरे अध्ययन और शोध के प्रमुख क्षेत्र हैं।
3: बहुत अच्छी बात है। हमारे

0: छात्रों को या हमारे जितने भी नागरिक हैं उन सभी लोगों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई होगी। प्रोफेसर जी, हम यह जानना चाहेंगे कि हिंदी और संस्कृत का संबंध कैसा है और क्यों है?
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे दिल के बहुत समीप है, मेरे हृदय को छूता हुआ प्रश्न है। कारण ये है कि हिंदी और संस्कृत दो भाषाएं नहीं हैं, बल्कि इनका अंतः संबंध ऐसा है जैसे माता और पुत्री का संबंध होता है। संस्कृत बल्कि माता से भी आगे बढ़े तो माता मही का स्थान इनका है, दादी का स्थान है। संस्कृत वह भाषा है जो अपने मूल रूप में वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है, उसके बाद रामायण महाभारत और संस्कृत साहित्य में हमें उपलब्ध होती है। लेकिन उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो उसका विकास महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर इत्यादि के समय में, ईसा पूर्व छठी सातवीं और पाँचवीं चौथी शताब्दी में, ये पाली और प्राकृत के रूप में हुआ। उसके आगे बढ़ते हैं तो वह थोड़ा सा और भाषा का एक प्रकृति होती है, सरलीकरण, सरलता की तरफ जाना, तो उसी को आधार बना करके लोगों ने भाषा में उसको सरल करने का प्रयास किया और वह अपभ्रंश के रूप में हमारे सामने आई। लेकिन जिस भाषा को आज हम बोलते हैं वह साक्षात संस्कृत से विकसित न होकर के अपभ्रंश से विकसित हुई है।
0: अच्छा।
1: तो आज हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो अनेक हैं, जिनको हम विविध नामों से जानते हैं। खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है जिसको हम ब्रज बोली भी कहते हैं। तो इस तरह से जो जो भी हमारी संस्कृत की भाषा से निकली हुई भाषाएं थी, वही जो स्थानीय भाषाएं जिनको हम प्राकृत और अपभ्रंश कहते हैं, उन्हें भाषाओं से विविध बोलियों के रूप में भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। तो उनका संबंध संस्कृत के साथ में एक अंतः और आंतरिक संबंध है। यदि हम शास्त्रीय स्तर पर देखें तो संस्कृत के जो ध्वनियाँ हैं वे ही ध्वनियाँ मूल रूप से हिंदी भाषा की भी हैं। तो ध्वनि के स्तर पर इनमें एक समानता दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त हम भाषा में कारक और क्रिया के संबंधों की बात करते हैं, वाक्य की संरचना की बात करते हैं, तो वह भी हिंदी ने संस्कृत से लिया है।

0: प्रत्यय मूलक भाषाएं कहते हैं उस रूप में दोनों हैं, लेकिन दोनों में मूल अंतर यह है कि जहां संस्कृत में योगात्मक भाषा है, ये श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत में प्रत्ययों को जोड़ते तो हैं, साथ में तो रखते हैं, लेकिन उनके साथ में चिपकते नहीं है। दोनों की स्वतंत्र सत्ता दिखाई देती है। जैसे हम कहते हैं मैं पुस्तक को देखता हूं, तो को जो प्रत्यय है जो भाषा में कर्म को अभिव्यक्त करता है वह उसके साथ तो होता है लेकिन मिला हुआ नहीं। अच्छा। लेकिन संस्कृत में जब हम कहते हैं अहम पुस्तकम पश्यामि, तो पुस्तक और अम अलग नहीं होते। हाँ। उसको दिखाने वाला प्रत्यय उसके साथ में जुड़ा रहता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि संस्कृत में जो साहित्य है, हिंदी भाषा का साहित्य उससे बहुत अधिक प्रभावित है। न केवल प्रभावित है बल्कि उपजीव्य है। हमारे जो हिंदी भाषा के जितने भी प्रारंभिक आचार्य हैं वो सारे लगभग संस्कृत के आचार्य भी थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी, ये सब महादेवी वर्मा, ये सब संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो उनका जो संस्कृत का ज्ञान था वो उनके साहित्य में भी अभिव्यक्त होता है। ये तो रही भाषा के स्तर पर बात। और साहित्य के स्तर पर तो जितनी हमारी हिंदी की रचनाएं हैं, जैसे मैं प्रिय प्रवास को देखूं, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार महाभारत और पौराणिक कथाएं हैं।
1: जी जी।
0: हम रश्मि रथी को देखें दिनकर साहब की, तो उसका आधार क्या है? कर्ण के जीवन की घटना जो कि महाभारत का एक अंश है। हम भारत भारती को देखें तो इसमें भारतीय इतिहास की पूरी झलक मिलती है। यदि हम जयद्रथ वध को देखें तो महाभारत की घटना पर आधारित है। जहां भी हम देखते हैं चारों तरफ संस्कृत में का जो प्रभाव है वो हमें हिंदी भाषा के साहित्य पर दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, कामायनी साकेती सब वहीं से लिए गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अतिरिक्त हम जब देखते हैं तो संस्कृत भाषा का एक प्रभाव और हम देखने को हमें मिलता है। किसी भी भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक है भाषा और दूसरा है भाषा शास्त्र। तो जब भाषा शास्त्र की बात करते हैं तो उसके भी अनेक विविध पक्ष हो जाते हैं। एक उसका साथ में जुड़ा हुआ विषय है साहित्य शास्त्र। तो साहित्य की जो विधाएं हैं वो निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य से प्रभावित हैं। नाटक, प्रकरण, एकांकी, प्रहसन, ये सारे के सारे जो आपको नाटक के भेद मिलते हैं ये सारे मूल रूप से संस्कृत से आए हुए हैं। संस्कृत में जिसको हम नाटक कहते हैं आज हिंदी में, इसका मूल नाम है रूपक। क्योंकि हम किसी व्यक्ति के, किसी पदार्थ के, किसी स्थान के स्वरूप को धारण करते हैं, बनाते हैं आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से, और उसके आधार पर हम अभिनय करते हैं उसका, तो इसलिए उनको रूपक कहा जाता है मूलतः। उसके 10 भेद हमारे यहाँ संस्कृत में गिनाए गए हैं, उनको 10 रूपक कहा। वो 10 के 10 भेद संस्कृत के भेद आपको हिंदी में भी देखने को मिलते हैं। नाटक के जो सिद्धांत हैं उसमें अभिनय की कौन कौन सी विधाएँ हैं, कौन कौन से उसके स्वरूप हो सकते हैं, वो सब आपको वहीं से प्राप्त होते हैं। तो हमारे साहित्य शास्त्र का आधार भी हिंदी का संस्कृत से लिया गया है, भाषा का आधार भी वहीं से लिया गया है, काव्य संरचना में वह उपजीव्य का कार्य भी करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे मानक जो हैं वो सारे के सारे वही हैं हिंदी में जो संस्कृत में उपलब्ध होते हैं।
1: तो आपने बहुत विस्तार पूर्वक हमें समझाया संस्कृत भाषा और हिंदी का अंतर संबंध बहुत गहरा है।
0: जी।
1: वैसे मैं चलते हुए यह संकेत कर दूं कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर साहित्य सम्मेलन के जो पाठ्यक्रम है और जो परीक्षाएं यहाँ से होती है
0: जी,
1: हम कह सकते हैं प्रवेशिका से लेकर उत्तमा तक के जो पाठ्यक्रम है सभी में संस्कृत का कोई ना कोई ग्रंथ, कोई ना कोई पुस्तक अवश्य पाई जाती है जिसमें छात्र तैयारी करते हैं।
0: जी, जी।
1: प्रोफेसर जी, आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। हम ने देखा कि आप यहाँ के छात्रों को संस्कृत का ज्ञान दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहूँगा, बल्कि हमारे जो देश के श्रोता हैं वे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर संस्कृत की स्थिति क्या है अभी।
0: देखिए, इसके दो पक्ष हैं। पहले संस्कृत की स्थिति बताने से पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि हम संस्कृत क्यों पढ़ें।
1: जी बिल्कुल,
0: ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि समाज में जिस विषय की उपयोगिता नहीं होती उसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। हर चीज़ उपयोगिता को नमस्कार करती है, नमन करती है। तो पहले हम संस्कृत को क्यों पढ़ें, ये एक विचारणीय विषय। अब इसके दो पक्ष हो जाते हैं। किसी भी विषय को अध्ययन के दो कारण होते हैं। एक है कि वह हमारी आजीविका का साधन बने, दूसरा है उसके साथ में हमारी अभी

0: रुचि जुड़ी हो, और तीसरा एक अन्य पक्ष है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, वह है उसका ऐतिहासिक पक्ष, वह है अपनी परंपराओं से जुड़े रहने का पक्ष, वह है उसका मानवीय पक्ष। देखिए सर,
1: ये जीवन की नींव भी है।
0: बिल्कुल, ये एक एक चीज आप जो आजकल जिसको हम पाश्चात्य शिक्षा कह रहे हैं, आधुनिक शिक्षा कह रहे हैं, उस शिक्षा में एक बहुत बड़ी उपयोगिता उसकी है। वह आपको एक विशेष विषय का विद्वान बना करके देती है। आप इंजीनियर बनाते हैं, आप दार्शनिक बनाते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं, आप मैथमेटिशियन तैयार करते हैं, आप साइंटिस्ट तैयार कर, सब तैयार करते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप क्या एक अच्छा मानव तैयार कर रहे हैं? आप जो तैयार कर रहे हैं वो मशीन कर रही है
1: जी,
0: वो बिल्कुल, उनका जीवन भी मशीनी है, उनका सोचने का प्रकार भी मशीनी है, क्योंकि उनमें मानवीयता के जो संस्कार हैं वो आते हैं केवल और केवल साहित्य पढ़ने से। हम जैसा साहित्य पढ़ेंगे वो अंदर जाएगा, जो अंदर जाएगा वो हमारे जो मानस शरीर है उसका निर्माण करेगा। तो मानस का निर्माण विचारों से होता है, और विचार कहाँ से आएंगे? विचार हमारे कहानियों के माध्यम से आएंगे, कथाओं के माध्यम से आएंगे, परंपराओं के माध्यम से आएंगे, साहित्य के माध्यम से आएंगे, और ऐसा साहित्य जो संस्कृत साहित्य के पास में जो थाती है वो हमारे पास हिंदी में चल करके आई है, उसमें एक अंश आया है संस्कृत का। यदि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, यदि हमें मानवीय भावों को सर्वत्र फैलाना है, यदि आज एक समस्या है, मैं मॉरिशस में भी देख रहा हूँ, भारत में भी है और पूरे विश्व में, परिवार के बिखराव की समस्या
1: जी,
0: संयुक्त परिवार नहीं रहे, पति पत्नी के बीच थोड़े से समय के बाद बिखराव शुरू हो जाता है।
1: सही है,
0: कारण
1: सही
0: क्या है? उसका कारण है हम लोगों ने जब निर्माण किया तो उस निर्माण की नींव ठीक से नहीं देखी। हमने उसमें क्या दिया, खाद में क्या दे रहे हैं, पानी क्या दे रहे हैं, यदि उसको आपने नहीं देखा तो वृक्ष क्या फल देगा? भूमि अपने आप फल नहीं देती, भूमि को आप जोतते हैं, आप उसको उर्वरा बनाते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, लेकिन वो बीज क्या डालते हैं ये भी विचारणीय है, फिर उसकी रक्षा कितने करते हैं ये भी। यही स्थिति हमारे यहाँ मानव जीवन के विकास के लिए भी होनी चाहिए थी। हमें जो संस्कार देने चाहिए थे, हमें जो शिक्षा देनी चाहिए थी, जो हमें उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़ करके रखना चाहिए था, ये कार्य केवल और केवल संस्कृत साहित्य कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि संस्कृत साहित्य को पढ़ने का एक तो ये पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि हमारी जो प्राचीन ज्ञान की परंपरा है, नॉलेज ट्रेडिशन है, उस ज्ञान की परंपरा से जुड़ना, उसको जान पाना, ये एक बहुत बड़ी हमारी थाती है, एक हमारा पूरा का पूरा परंपरा का एक सार है, उसको हमें जानने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें संस्कृत को भी पढ़ना चाहिए, और उससे हम हिंदी को भी और अच्छी तरह समझ पाएंगे और दोनों के अंतर संबंधों को भी हम समझ पाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात है, यह विषय इतना गहरा है और इतना सारगर्भित है कि इस पर बोलते जाएंगे समय का अभाव हो जाएगा। अंत में हम यह जानना चाहेंगे आपसे, फिर कभी मौका मिले तो इस पर विस्तार पूर्वक बात कर सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: अंत में मैं बल्कि यहाँ के जितने लोग हैं यही जानना चाहेंगे कि संस्कृत के संबंध में आपका संदेश हमारे पाठकों के लिए या हमारे हिंदी प्रेमी संस्कृत प्रेमियों के लिए क्या होगा?
0: मैं एक बात एक हिंदी के एक छोटे से दोहे से अपनी बात कह करके समाप्त करने की चेष्टा करूँगा। अपनी भाषा है भली
1: जी,
0: भलो है अपनो देश
1: जी,
0: जो कुछ अपनो है भलो, यही राष्ट्र संदेश। हमारी हमारी भाषा, हमारी संस्कृति राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है, और ये संदेश हमारी संस्कृत में ही है, और वो राष्ट्र प्रेम हमारा विश्व प्रेम बन जाए, ये इसके लिए हमें संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। मेरा यही संदेश है, हम इन्हीं भावों के साथ में अपने परिवार और समाज में अपने जीवन का यापन करें।
1: बहुत अच्छी बात है। प्रिय श्रोतागण, हम कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे बीच में प्रोफेसर जी आए हुए हैं, सत्यपाल सिंह जी, और उन्होंने बहुत अच्छे विचार हमारे सामने रखे, संस्कृत भाषा, संस्कृत और हिंदी का संबंध, और उससे क्या लाभ है हमारे जीवन के लिए, हमारी जीवन की नींव कितनी गहराई तक पहुंच सकती है, इन सभी बातों पर बहुत कम समय में बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। हम उनको कोटिशः धन्यवाद देंगे और यही चाहेंगे कि हमारे जो छात्र हैं उनको उचित दिशा मिले। अपने तकनीकी सहयोगी शिव जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और एक और कार्यक्रम तक हम आपसे विदा लेते हैं। क्षितिज की प्रतीक्षा कीजिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। MBC रेडियो आपके साथ।
2: हेलो दोस्तों, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर बचपन ऐसा कार्यक्रम में हम आ पहुंचे हैं एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ। मीडियम वाट्स 19 किलोहर्ट्ज पर मैं हूं रत्ना, आपका साथ देने आ पहुंची हूं आज के आधे घंटे के सफर में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूं कि आज

का दिन बढ़िया रहा होगा। भाई मंडे का दिन कभी बढ़िया हो सकता है? मंडे का दिन तो बहुत ही बोरिंग होता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, है ना। हम जानते हैं आजकल स्ट्रेस कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और जहाँ एक और स्कूल की टेंशन, पढ़ाई का लोड, ढेर सारा होमवर्क और कितनी सारी डेडलाइंस। अब इस पर ऑब्वियसली घर पर आकर तो हर कोई मोबाइल लेकर बैठना पसंद ही करता है, पर इतना बस नहीं था कि मम्मी पापा की नज़र पड़ते ही जो डांट शुरू हो जाती है कि लो फिर लेकर बैठ गए मोबाइल, अब कौन समझे हमारी बात को। चलो आज के इस प्रोग्राम में आपसे दिलचस्प बातें भी करेंगे और आपके लिए गाने भी चलाएंगे और आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देंगे जिससे कि आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस पहले गीत के साथ।

0: है।
1: दोस्तों, आप में से कौन कौन बोर्ड गेम्स के बारे में जानता है? वैसे तो वो कितने सारे बोर्ड गेम्स हैं, कितने सारे इंडोर गेम्स हैं, जैसे कि स्नेक एंड लैडर्स यानी सांप सीढ़ी, लूडो, चेस, स्क्रैबल, मोनोपोली, चेकर्स और कई सारे ऐसे हैं, बैटलशिप, क्लू। अभी तो बहुत ऐसे नए नए निकल चुके हैं। भाई मेरी जैसी उम्र है, मैं तो सिर्फ इतने गेम्स को जानती हूँ।

0: पर मैं आपको बताऊं, इंटरनेट पर तो हमने देखा बोर्ड गेम्स की तो लाइन लगी हुई है, इतने सारे बोर्ड गेम्स, और भाई खेलना आसान नहीं होता ये बोर्ड गेम्स। कुछ होते हैं जिसमें हमें एंटरटेनमेंट भरपूर मिलता है, जैसे स्नेक एंड लैडर्स। बड़ा ही मज़ा आता है जब हम 98 पर पहुंचते हैं और फिर लगता है कि बस हम 100 की ओर पहुंच ही चुके हैं, और तब जाकर सांप फिर काटता है और हमें फिर शुरुआत करनी पड़ती है, है ना। पर इतना ही नहीं, लूडो, चेस, स्क्रैबल जैसे गेम्स में भी भाई बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, ये कोई ऐसा वैसा गेम नहीं है। और जब दिमाग लड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं, सच बताएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम हो जाता है, और ऐसे में टेंशन को वो बिल्कुल कम कर देता है, रिलैक्स हो जाता है, और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। बिलीव मी, मैं जब ये गेम खेलती हूँ घंटों हम ये गेम खेल सकते हैं। तो भाई कभी कोशिश करिए अपने मम्मी पापा के साथ या भाई बहनों के साथ ऐसा गेम खेलने की। चलिए एक गाना सुनते हैं और बचपन ऐसा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: बटकन बटकन दही चटोकन, मुसुआ मोटा, रुपया खोटा, माला टूटी, बेबी छोटी, मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी।

बचपन ऐसा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, बोर्ड गेम्स के अलावा ऐसे भी बहुत सारे गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं, जैसे पहेलियां पूछना, रिडल्स पूछना, साथ ही साथ टंग ट्विस्टर्स। भाई बहुत ही लाजवाब समय स्पेंड होता है, टाइम स्पेंड होता है। अच्छा, कोशिश करिए ये बोलने के लिए, ब्लू ग्लू येलो ग्लू। बोलते जाइए और फिर आप देखेंगे कि क्या शब्द निकल रहे हैं मुंह से। आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे और कुछ देर के लिए आप सब कुछ भूल कर बिल्कुल इसी पर आपका दिमाग फोकस करेगा। चलिए एक और आपको देते हैं टंग ट्विस्टर, ब्लू ब्लड बैड ब्लड। बोलते जाइए और देखिए क्या लाजवाब शब्द निकलते हैं। इतना ना हो तो ये भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। बोलने की को

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा।

बचपन ऐसा कार्यक्रम कुछ भी कह लो दोस्तों, आपके दिन बहुत ही ज्यादा मजेदार है। कुछ लोग कहते हैं हाय हम कब बड़े होंगे, अरे भाई बचपन के दिन सबसे लाजवाब दिन है, एंजॉय कीजिए क्योंकि ये गोल्डन डेज है ना, ये दोबारा नहीं आने वाले। चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मैं अपनी बकबक यहीं बंद करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और बस फिर मिलेंगे अगले सप्ताह अगले सोमवार को बचपन ऐसा कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही लाजवाब बातों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप कीजिए एंजॉय अपने होमवर्क के साथ साथ, और भूलिएगा नहीं टंग ट्विस्टर्स ट्राई करने के लिए। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए बाय बाय।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे हैं, घड़ी मिला लीजिए।

शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म करने और होर्मुज तेल शिपिंग चैनल दोबारा खोलने पर समझौता हुआ, जिसकी घोषणा मध्यस्थ रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने की। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले SMEs इस समय बढ़ती लागत श्रम

0: की कमी और फंडिंग की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए सरकार ने से वित्तीय मदद और तकनीकी मदद की मांग। आज विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये एक ऐसा अवसर है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तेजी से बढ़ती वैश्विक आबादी के संदर्भ में बुजुर्गों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। और लॉन्ग माउंटेन स्थित मॉरिशस के पहले हिंदी स्कूल तिलक विद्यालय के शताब्दी समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति और हिंदी प्रचारिणी सभा के सदस्यों की उपस्थिति में एक प्रतिमा का किया गया अनावरण। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब पेश समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों पक्ष स्थायी समझौते तक पहुंचने के लिए आगे की बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी हटा दी जाएगी। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: अमेरिका और ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होने तय हुए हैं। इसे महीनों की लड़ाई के बाद एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं और वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस समझौते के हिस्से के रूप में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान, जिसने रविवार देर रात इस समझौते की घोषणा की थी, का कहना है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान समाप्त हो जाएंगे। ये युद्ध 28 फरवरी को ईरान भर में अमेरिका और इजरायल के हमलों के साथ शुरू हुआ था, जिसके जवाब में ईरान ने इजरायल और खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले किए थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने समझौते की सराहना करते हुए इसे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस समझौते को युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बिना किसी शुल्क के नौवहन यानी नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर बारूदी सुरंगें हटाने के अभियानों में सहायता देने की भी पेशकश की। कतर राज्य ने दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए अमरीका और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन का स्वागत किया है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी शामिल है। कतर इसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शांति को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली सहित E4 देशों ने रविवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए समझौते के बाद ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम पर उठाए जाने वाले कदमों के जवाब में वे उस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी को समाप्त करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक ऐतिहासिक अमेरिका ईरान समझौते की घोषणा के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 3.9% गिरकर लगभग $84 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लगभग 4.8% की गिरावट के साथ $80 प्रति बैरल से नीचे चला गया, जो मार्च की शुरुआत के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है।
0: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आगे आई हैं। वैश्विक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनको सुनते हैं।
2: अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिखाई देने लगा है। यूरोप और एशिया के लिए शेयर बाजारों में फिर से तेजी दर्ज की गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की गिरावट आई है। होर्मुज को फिर से खोलने की संभावना पर भी चर्चा तेज हुई है, जिसे मॉरिशस के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विदेश मंत्री रितेश रामफल ने बताया मॉरिशस जैसे छोटे टापू देश के लिए जो पेट्रोली सामानों के आयात पर निर्भर करता है बेहद अच्छी खबर है। हम खाद्य सामान भी बड़ी मात्रा में आयात करती हैं। फ्रेट के बढ़ने से दाम भी बढ़े हैं। शांति समझौता मॉरिशस और दुनिया भर के हित में है।

समझौते की शर्तें तय करने और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन पिछले समझौते के विफल रहने के अनुभव को देखते हुए सतर्कता अब भी बनी हुई है। जॉन क्लोड दुलिक्साक बताती हैं, ये 60 दिन बेहद कठिन

0: आएगा, पर अभी के लिए बड़ी प्रगति हुई है।
1: À la table des négociations finales. Nous avons appris par expérience que très souvent, ce type d'accord, ces accords cadres, ne sont pas toujours respectés à la lettre. Hein. Le temps nous dira. Mais pour l'instant, c'est une avancée.
0: इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। ये G7 शिखर सम्मेलन के बाद होगा, जिसका आरंभ सोमवार को फ्रांस में हुआ है और जिसका समापन बुधवार को होना है।
2: मॉरिशन अर्थनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एसएमई क्षेत्र छोटे और मध्यम उद्योगों के जरिए हजारों नौकरियां पैदा होती हैं, फिर भी उनके लिए चुनौतियां कुछ कम नहीं। लागत बढ़ रही है, कर्मचारियों की कमी हो रही है और वित्तीय मदद की भी कमी है। ये रोज की समस्याएं हैं। इसी के चलते छोटे और मध्यम उद्योग अधिक सहयोग की मांग कर रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुल जाने की संभावना की खबर उनके लिए थोड़ी बहुत राहत लाई है। पंतसाबला में एक नाली में गंदा पानी बहकर लगून के पास पहुंच गया। इस पानी के बहाव को रोकने के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की लगभग 100 टैंकर तैनात हैं। 5 दिनों में करीब 1000 क्यूबिक मीटर गंदा पानी पंप किया गया है। गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पाइप टूट गया, जिसके बाद बुधवार रात से ही एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नाली में भले ही मरी हुई मछलियां पाई गई हैं, लेकिन पंतसाबला के समंदर को प्रदूषित होने से बचाया गया है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: पिछले बुधवार जेक लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। ये पाइपलाइन, जिसकी मरम्मत हो चुकी है, पंतसाबला के इंडस्ट्रियल जोन में डाइंग गतिविधियों संबंधित 80% और 20% घरेलू गंदा पानी ले जाती थी। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से निकलने वाला गंदा पानी पास स्थित एक नहर में बह गया, जो पंतसाबला लगून से लगभग 50 मीटर दूर स्थित हैं। प्रदूषण के कारण इस जलधारा में मछलियां और ईल मृत पाई गईं। जतिल सुखराम ने कहा, एक पाइप टूट गई। ये करीब 180 क्यूबिक मीटर पानी प्रति घंटे पंप करती थी। हमने उचित मरम्मत की। दूसरे दिन पंपिंग का काम सामान्य हो गया। इंजीनियर हुमेश गोपाल ने कहा, गंदे पानी की पंपिंग जारी है, उम्मीद है जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाए। लहरों से नहर के मुहाने और लगून के बीच बनी रेत के एक प्राकृतिक घेरे की बदौलत गंदा पानी लगून में नहीं जा सका। पर्यावरण मंत्रालय में जूनियर मंत्री फाब्रिस दाबिद ने कहा, पर्यावरण मंत्रालय और मछलीमार मंत्रालय ने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पोर्टवी नगर पालिका और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर स्थिति पर निगरानी रखी है। सैंपल लेकर टेस्ट किए जा रहे हैं। आरबीओ रिसर्च सेंटर की प्रयोगशाला द्वारा समुद्री पानी के परीक्षण किए गए नतीजों के अनुसार पानी सामान्य समुद्री जल गुणवत्ता मानकों यानी कोस्टल वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप हैं। दो परीक्षणों को छोड़कर जहां पारा मर्क्यूरी का असामान्य स्तर पाया गया, विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। इस बीच मृत मछलियों पर किए गए परीक्षणों के नतीजों का इंतजार है। ये भी उल्लेख्य है कि पंतसाबला के लगून में तैरने की मनाही है, क्योंकि ये बंदरगाह क्षेत्र का हिस्सा है।
2: बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ संघर्ष का विश्व दिवस आज है। ये मौका है अधिकारियों के लिए लापरवाही, हिंसा और दुराचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का। साल की शुरुआत से वेलफेयर एंड एल्डरली प्रोटेक्शन यूनिट के तहत 600 मामले दर्ज किए गए हैं। समाज सुरक्षा मंत्रालय कानून में सुधार पर काम कर रहा है, ताकि दुर्व्यवहार के शिकार बुजुर्गों की रक्षा के लिए एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जा सके। हायर स्कूल सर्टिफिकेट के लिए सब्सिडियरी विषय के रूप में खयोल मोहिसिया की पहली परीक्षाएं इस साल और मेन लेवल पर अगले साल 2027 के लिए निर्धारित हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मॉर

0: राक्षस एग्जामिनेशन सिंडिकेट को अक्रेडिटेशन के लिए जिम्मेदार संस्था के रूप में मान्यता दी है। आज इसी पर एक बैठक लगाई गई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: ये उन प्रथम छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने ख्योर मोगिसिया को HSC में सब्सिडियरी विषय के रूप में चुना है। ये लोअर सिक्स के छात्र आए हैं।
2: C'est insister comme me sentir à l'aise pour causer comme mon confident pour participer dans ma activité dans classe.
3: Moi j'avais une professeure créole mauricien dans primaire et ou soit traductrice dans parlement si madame est leader parlement oui.
4: Vu qu'ils m'ont pas des offres quand même, premier coup de lit ça fait difficile pour moi. Mais après, j'ai décidé de lire ma langue maternelle, vu qu'il fait mon bac avec CFRI.
1: Adhyapika Jayashree Mahua ne kaha, HSC ke star par Creole Mauricien ne ek bada charan paar kiya hai. Isse ek shaikshik vishay ke roop mein manyata di gayi hai aur academic vishay banne par zyada chhatra ise tertiary level par bhi se le sakte hain. स्कूल सर्टिफिकेट में ख्योल मोगिसिया पूर्ण रूप से परीक्षा का विषय है। 2026 में एक अहम चरण के तहत एक पहली बैच द्वारा HSC के स्तर पर सब्सिडियरी के रूप में इसकी परीक्षा दी जाएगी। MES के निदेशक सेज निंग टैकचंग ने कहा, मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद कैम्ब्रिज ने MES को इसकी सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए मान्यता दी। हम अपने साझेदारों यूनिवर्सिटियों मॉरिशस और नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ मिलकर काम करेंगे। सब कैम्ब्रिज द्वारा वैलिडेट किया जाएगा।
5: Une fois la validation faite, automatiquement, le KM devient sujet d'examen pour le A-level.
1: शिक्षा मंत्रालय अब तक SC के लिए 8 विषयों को सब्सिडी प्रदान करता था। अब ये फैसला लिया गया कि जो विद्यार्थी ख्योल मोगिसिया को 9वें विषय के रूप में चुनेंगे, उन्हें भी ये वित्तीय सहायता दी जाएगी।
6: Nous gagnons un petit peu par nos revendications et nous trouver.
1: प्रीतम मोहित राम ने कहा, सरकार ने परीक्षा का सभी दायित्व लेने का फैसला किया जो SC और HSC स्तर पर पहले साल परीक्षा देंगे। वर्तमान में लगभग 100 छात्र HSC स्तर पर ख्योल मोगिसिया का अध्ययन कर रहे हैं।
0: देश में हिंदी संस्था पहली हिंदी संस्था तिलक विद्यालय अपनी शताब्दी मना रही है। उसकी स्थापना को 100 साल हो गए। इस अवसर पर कल मोतालोंग में हिंदी प्रचारणी सभा की सीट पर लोकमान्य तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कई महानुभाव वहां पर उपस्थित रहे। जरा विस्तार इस खास रिपोर्ट में।
7: 12 जून 1926 को मोतालोंग में हिंदी शिक्षा प्रदान करने वाले पहले विद्यालय की स्थापना हुई थी। तिलक विद्यालय नामक इस संस्था का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में रखा गया था।
8: लिचनगांव फ्रीडम फाइटर एट द सेम टाइम लिचन हिंदी प्रोमोटर वन एंसेस्टर्स कंसिविना जो ची कोंटा गो जो कल्चर जो तीन गादर एन प्लस जो तीन जे लिसनो वेन लेकोल जो तीन दन जो प्रीमियर लेकोल की इन फेयर इसी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
7: एक शताब्दी बाद विद्यालय की विरासत को सम्मानित करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हिंदी प्रचारणी सभा द्वारा संचालित इस विद्यालय ने दशकों के दौरान हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि हिंदी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और युवाओं को इससे जोड़ने के लिए इसके शिक्षण को समय के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।
9: हिंदी इज लूजिंग ग्राउंड and how do we make sure that future generations adopt, learn Hindi, use Hindi, speak Hindi? How do we simplify Hindi? Because there is so much competition about so many things that people have to learn. So simplify as far as you can. You must think about, not about yourself, but about the child, about the youth. Where he is, where she is, and how to take them from there.
10: जिस संस्था ने किसी एक उद्देश्य से एक यात्रा शुरू की थी,

0: आज के दिन 100 वर्ष उसके पूरे हो रहे हैं और वो यात्रा पूरी गरिमा से सफलता की परचम लहरा रही है।
1: अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हिंदी का प्रचार इस तरह से ना हो सकते। हम तो सुविधा दे रहे हैं स्कूलों में और स्कूल के बाद भी, जो ब्लूप्रिंट आ रहे हैं एक प्लेजेंट सरप्राइज है उसमें, तमिल तेलुगु अनेक भाषा, उन लोगों को कैसे बच्चों को रुचि फिर से इस भाषाओं में दी जाए।
0: एम क्या है, क्या करना है हमको, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैं छोटा था, मुझे याद था, मैं गांव में रहता था, अभी भी वहीं रहता हूँ। मुझे याद है किस तरह से हिंदी की सेवा होती थी। हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यापक गली गली घर घर जाते थे, कितना जोर करके, कितना परिश्रम करके। हर गांव में पाठशालाएं होती थी, सायंकालीन पाठशाला, मैं वहीं पर पढ़ा था।
2: आज हिंदी प्रचारिणी सभा के अंतर्गत देश में 150 से अधिक विद्यालय संचालित हैं। इस अवसर पर प्रतीकात्मक सम्मान भी प्रदान किए गए तथा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

0: विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस का दौर जारी है। नेदरलैंड्स और जापान के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा और कल भी कई मैच खेले गए थे, जिस पर पेश है ये खास रिपोर्ट।
1: आज सुबह फिलेडेल्फिया में ग्रुप ई के दूसरे मैच में आइवोरी कोस्ट ने अंतिम मिनट में जाकर इक्वाडोर को 1-0 से हराया और ये गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी अमाद जालो ने स्कोर किया सब्स्टिट्यूट के रूप में आकर। एमबीसी 11 पर यह मैच सीधा प्रसारित किया गया था। अफ्रीका के हाथी कहलाते हैं आइवोरी कोस्ट वाले और इस ऐतिहासिक जीत से ये लोग बेस्ट ऑफ 16 में जाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा पाए। पिछली बार आइवोरी कोस्ट की जीत हुई थी 2014 में। अब जबकि जो टीमें तीसरे स्थान पे आएगी, 12 टीमें, उनमें से 8 टीमें क्वालिफाई होंगी। इस तरह से आइवोरी कोस्ट के लिए अगले राउंड में जाने का रास्ता खुल रहा है। पहली बार के लिए आइवोरी कोस्ट की टीम ग्रुप स्टेज पार करके बेस्ट ऑफ 16 में जा सकती है। इससे पहले ग्रुप ई में जर्मनी की भारी जीत हुई, 7-1 से जर्मनी ने क्वासाओ टीम को हराया। इस प्रकार मानचाफ्ट इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाली टीम हो गई है, 239, यानी ब्राजील से एक गोल ज्यादा। इस मैच में एनमेचा ने पहला गोल स्कोर किया 6 मिनट पर जर्मनी के लिए और कुआसाओ का गोल स्कोर किया कोमेनेंसिया ने। ये एक ऐतिहासिक गोल है क्योंकि कुआसाओ पहली बार वर्ल्ड कप में भाग ले रहा है और ये पहला गोल। इसके बाद 23वें मिनट से 28वें मिनट के बीच द नेशनल मैनचेस्टर 6 गोल स्कोर कर पाया, खासतौर पर शोलोबेक, फिर हैवर्ट्स, पेनाल्टी पर मुसियाला ने गोल स्कोर किया, ब्राउन का एक गोल, उंदव का एक गोल और हैवर्ट्स का डबल। इस भारी जीत से जर्मनी की टीम अब ग्रुप ई में पहले हैं और उसके पीछे हैं आइवोरी कोस्ट। इन दोनों के बीच मैच होगा शनिवार को रात्रि के 12 बजे। वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में नेदरलैंड्स की टीम को काफी कठिनाई हुई जापान की टीम के खिलाफ। स्कोर रहा 2-2। आर्लिंगटन में ये मैच खेला गया। सेकंड हाफ में जाकर वान डाइक ने पहला गोल स्कोर किया, 7 मिनट बाद नाकामुरा ने इक्वलाइज किया जापान के लिए। उसके बाद समरविल ने फिर से नेदरलैंड्स की टीम को लीड दिलाई, पर मैच के अंतिम मिनटों में दी ब्लू सामुराई इक्वलाइज करते हैं ओगावा का गोल। नेदरलैंड्स और जापान दोनों के पास 1-1 अंक है।
0: और मैच का दौर जारी है। स्पेन खेलेगा काबो वर्दे के खिलाफ और रात 11 बजे बेल्जियम का सामना होगा इजिप्ट के साथ। इस पर ज्यादा विस्तार आप सुन पाएंगे।
1: यूएसए के मायामी स्टेडियम में आज बेल्जियम और इजिप्ट के बीच आमना सामना होगा। ये ग्रुप जी का पहला मैच है। ये 11 बजे खेला जाएगा। इसमें लेजाबल रूज यानी बेल्जियम की टीम फेवरेट हैं, पर इजिप्ट की टीम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रूडी गार्सिया की टीम है बेल्जियम और 26 ऐसे खिलाड़ी लाए गए हैं जो बहुत दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें जेनो डेबास्ट घायल हैं और रोमेलु लुकाकू, केविन डे ब्रुइन, जेरेमी डोकू इस टीम के मुख्य खिलाड़ी होंगे। बेल्जियम के सामने है मोहम्मद साला की टीम इजिप्ट, जो एक आउटसाइडर के रूप में यहां पर आ रहा है। ले फराओं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है क्योंकि इन दोनों के बीच जब आमना सामना हुआ था वर्ल्ड कप 2022 में तो 2-1 से इजिप्ट की जीत हुई थी। तो ग्रुप जी में ईरान और न्यूजीलैंड भी हैं। फिर कल सुबह 2 बजे दूसरा मैच है ग्रुप एच का, जिसमें यूरुग्वे का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। यूरुग्वे की टीम जो फीफा रैंकिंग में 17वें स्थान पे है और सऊदी अरब 62वें स्थान पे, ये हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। मार्चेलियो बेल्सा की टीम ला सेलेस्ते इस ग्रुप में फेवरेट हैं। यूरुग्वे की टीम में वाल्वेर्दे, नूनेज, ओरोयो जैसे खिलाड़ी हैं, बेंताको भी हैं यहाँ पर। ये लोग चकमा दे सकते हैं। याद होगा आपको 2022 में अर्जेंटीना को हराया था पहले मैच में इस सऊदी अरब की टीम ने।
0: अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल दोपहर बाद 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में कल दोपहर बाद से न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 18 से 20, अधिकतम 23 से 25 और तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रारोड नोवेल फ्रांस में रॉयल गेट स्टोर के पास सतहत्तर साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देविका सामल पैदाशी नाम बिहारी और जो इंदिरा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे कमल सामल के मकान रारोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। बोनेस्पोर रोड रिविया डी क्रियोल में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड की श्री राजेंद्र लखन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके बेटे मुन लखन के मकान बोनेस्पोर रोड रिविया डी क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबोलेन मीबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। कालीचरण लेन काहोला लियान वाकवा में 42 साल की 42 ईयर्स ओल्ड की कुमारी रितिशा राम सहा कुमारी रिति

0: ईशाराम सहा, जो अनुषा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान कालीचरण लेन काहोलालियान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। रॉ रोड पालमाओ में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री संजय बोधी, जो जीसू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी पत्नी रीता हिरलाल के मकान रॉ रोड पालमाओ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट नून। फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री स्वराज आपादू, जो संजीव मेकानिसियन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 3 बजे उनके मकान फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वामा महल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 3 PM। नंबर 82 रुतबा 54 में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री शाहनन किरोदा, जो सारा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके मकान नंबर 82 रुतबा 54 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा महल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। एनएचडीसी कॉम्प्लेक्स मॉडल बेया में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री महावीर मानिक की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विशाल मानिक के मकान एनएचडीसी कॉम्प्लेक्स मॉडालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचित बेलिया मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। सेंट अंतोन कॉन्फुक्रो में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री नंद कुमार केदन, जो कृष्णा सादव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सपहर 3 बजे उनके मकान सेंट-अंतोन कॉन्फुक्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्फुक्रो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8 PM। रेजिडेंस ओतेंसिया सी ओ सिक्स मॉडल बेया में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीतू देवी अजुदा, जो प्रिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति रामलोल सूरज के मकान रेजिडेंस ओतेंसिया सी ओ सिक्स मॉडल बेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। रॉ रोड पालमाओ में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री संजय बोधी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी पत्नी हिरलाल रीता के मकान रॉयल रोड पालमाओ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट नून। फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री स्वराजा पादू, जो संजीव मेकानिसिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सपहर 3 बजे उनके मकान फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा महल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस

0: सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: मंगलवार 16 जून को सत्यार्थ प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में बोआडवाजो महिला समाज शाखा नंबर 5 एक यज्ञ और सत्संग का आयोजन कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस मंगलवार 16 जून को लावोचिया आर्य समाज में 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
3: समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं भजले प्रभु का नाम आपकी सेवा में आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। सोमवार का ये पावन दिन आपके लिए बेहद ही मंगलमय हो। आज का दिन समर्पित है भगवान शिव को और आपको पता है कि भगवान शिव भोले है। शिव में ही सत्य है, सत्य में ही शिव है। तो चलिए श्रोताओ, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ और विश्वास के साथ मिलकर हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को याद करेंगे।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम, हम इस कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा के बारे में, विश्वास के बारे में। बस जब हम इन बातों पर ध्यान रखते हैं तो हमें ये सीख मिलती है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और प्रभु हमेशा हमारे साथ है। सच्चा विश्वास केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे विचारों, व्यवहार और जीवन जीने के तरीके में भी दिखाई देता है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम आपके लिए हम चला रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। जब हम अध्यात्म की राह के बारे में बात करते हैं तो विश्वास सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। जब मनुष्य अपने ईश्वर, अपने कर्म और अपने भीतर की अच्छाई पर विश्वास रखता है, तब कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती है।

आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं कि जिस हृदय में विश्वास का दीप जलता है वहाँ निराशा अधिक देर तक नहीं ठहरती। अध्यात्म हमें सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। समय आने पर हम प्रश्न का उत्तर मिल ही जाता है। जी हाँ, हमें प्रश्न का उत्तर मिल ही जाता है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखेंगे, अगले भक्ति गान की ओर हम बढ़ेंगे।

श्रोताओं, जहाँ श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, ये सब मिलकर आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाती है। आशा करते हैं इन सभी भक्ति गान के साथ आपने एक अच्छा समय बिताया हमारे साथ है। वैसे भोले बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। भोले बाबा कृपालु है, दयालु है, और हम सब की प्रार्थना वो सुनते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। हमारे तकनीकी सहायक डोमिनिक को धन्यवाद देंगे। एक और मुलाकात तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: औज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। मौज़ सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़्ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी मरीज़ की आयादत को जाओ तो उससे कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। उसकी दुआ फरिश्तों को दुआ के मानिंद होती है। बहावाला इब्ने माजा शरीफ।

हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मरीज़ के पास जाओ या किसी करीबुल मर्ग शख्स के पास जाओ तो उसके सामने भलाई का कलमा ज़ुबान से निकालो, क्योंकि तुम जो कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। बाहवाला मुस्लिम शरीफ।

हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बंदाए मोमिन जब अपने साहिब ईमान भाई की अयादत करता है तो वापस आने तक वो गोया जन्नत के बाग में होता है। बहवाला सही मुस्लिम शरीफ। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। भाई यूसुफ ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात 15 जून 2026 के 9:06 होल बा और आपके अपन मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का में हम किरण आप सबको एक स्वागत करत है। हमार करजोर नमस्ते स्वीकार करा ई उम्मीद के साथ कि आज के दिन आप सबको के बहुत अच्छा से बीतल बा। आप में से कितने जना के घर में अभी एक बगल फुटबॉल के धूम मचल बा, तो दूसर बगल आप बेसब्री से अपन मनपसंद प्रोग्राम के इंतज़ार में हव। तो चला ई प्रोग्राम के शुरुआत करी जा। जेकर इंतज़ार आपके रहेला उ चाहे कुछ भी घटी उधर, कुछ भी बड़ा कोनो इवेंट में रही, लेकिन आपके चाहे अपन रेडियो सुने के। तो चला आज के पहला गीत आप सब कोई के नाम कुणाल हिरीलाल के आवाज़ में।

रात के 9:11 होलबा और आज जून महीना के 15 तारीख है। आज सकब्जा बोले ये जून बरिस बा, ये बरिस के हमने बीचों बीच में ही सा एक तो जून महीना जोन की ये बरिस के छठा महीना है और जून के बीचों बीच मतलब कि आधा बरिस पार कर दिली सा। और ऐसन में यही आशा बा कि जैसे जे तैसे ये जोन बरिस बा वो कटले आवता, कभी छाँव तो कभी धूप, लेकिन अगर अभी तक सब कुछ ठीक चला था तो ये उम्मीद चाहे रखे के कि आगे भी एकर से बढ़िया रही। और अभी रात के समय बा बोलल जला रात के जोन विचार करके सुते जेबा तो वो विचार सच में एगो हकीकत के रूप ले लेवेला। बोलल जला अंतमति सोगति, मतलब कि जोन आखिरी विचार करके आप सुते जेबा तो वैसन ही गति आपके होई, वैसन ही आपके वास्तविकता रही। तो चला यही प्रण ले जा कि ये जोन बाकी बरिस बा वो बहुत अच्छा से बीती। अगला गीत के फरमाइश कर ले हवन आत्माराम जी बेलिया से। आप नंदकेश्वर के आवाज़ में सुने चाहत हवा पैसा बात करेला, सच में पैसा बात करेला। पैसा नहीं रही तो आपके बोली के भी कोनो मोल नहीं रही। और आत्माराम जी ये गीत अपन चार गो बहिन के नाम करत हवन, ललिता, सुदेवी, छोटी और प्रभावती के नाम।

सुना नोयान की आवाज में बाचा बोल दुनिया बात चारों तरफ गोल गीत सुने चाहत हवन विजय बेनी प्रसाद आप शामुनी से हवा और गीत आप पूरा दुली परिवार बेनी प्रसाद परिवार और अपन दोस्त शास्त्री बुनुमाली के साथ साथ जितना कोई भी ई बखत ई प्रोग्राम सुना था वजह आप सब कोई के नाम करत हवन तो विजय जी आपके पसंद के गीत चला था।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

आज 15 जून 2026 के जितना कोई भी अपन जन्मदिन मनावत हवा जा, जेकर भी घर में अभी खुशी के माहौल छाल बा फजर से, और पार्टी चलता या फिर दावत चलता या फिर पारिवारिक जुटाव बा या फिर अपनों ही के साथ साधारण रूप से जे आप अपन जन्मदिन मनावत हवा या अपन परिवार के सदस्य के जन्मदिन मनावत हवा, त आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। आप सब कोई के जीवन में खुशी, सुख, शांति और मुस्कुराहट रले रही, ऐसन हमनी के शुभकामना बा। और आज एगो खास जन्मदिन बा, आज हमर भी माताजी के जन्मदिन बा, और हमर माताजी प्रेमिला जी के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और ये शुभकामना देवे खातिर हमर संगे पूरा परिवार जुड़ता, उनकर बेटी शशि, उनकर बेटा, उनकर नाती पोता रुद्राक्ष, कबीर, यौवन, श्लोक, हंसले, और उनकर सब बहन, उनकर सब भतीजा भतीजी और सब परिवार, और ख़ास तौर पर उनकर पतिदेव सुरन के ओर से जन्मदिन के ढेरों शुभकामना। बुरल जना जे आपके जीवन दिलेबा, आपके जे जननी है उनकर जन्मदिन दुनिया में सबसे बड़ा जन्मदिन है। त जे जन्म दिलेबा, जे हमके जन्म दिलेबा, जेकर बदौलत आज हम हैं जहाँ पर हैं, उनका आज जन्मदिन के ढेरों शुभकामना। जन्म दिवस हो तुझको मुबारक, हमको जन्म देने वाली। और आप प्रेमिला के साथ साथ अभी जितना कोई के भी जन्मदिन मनावल जाता आज के ई विशेष दिन पर, आप सब कोई के हमर दिल से, दिल के गहराई से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।

आज 15 जून 2026 के रात्रि के एगो जबरदस्त मैच चला था और हमर ख्याल रहा कि ढेर कोई नहीं फोन करी, सब कोई फुटबॉल के पीछे रही, या तो जितना परिवार के सदस्य टीवी के सामने बैठल बा ओकर साथ दे बजा, लेकिन हमने के प्रोग्राम के जो रस बा जो स्वाद बा वो अलग ही है। हमने के महफिल वो चाहे कुछ भी होई वो सजबे करेला और आपके फ़ोन कॉल्स नहीं आए ये बात के तक कोनो गुंजाइश ही नहीं है। आपके फ़ोन कॉल्स आते बा एक हला 5-6 फ़ोन कॉल्स आवता हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब कोई के ये जो दिलचस्पी बा, आप सब कोई के स्नेह आपके प्यार खातिर। और अगला गीत के फरमाइश करत हवन ते आगोश से शांति जी सुनने चाहत हवन हमर नाना राजेश खाना हमर नानी हेमा मालिनी गिरीश रूपचंद के आवाज़ में। ये बहुत ही मजाकिया गीत जितना नाना नानी अभी हमने के सुनत है वजह आप सब कोई के नाम ये गीत शांति जी के ओर से। और शांति जी ख़ास तौर पर दागोचिया अपा दागोचिया के अपन पूरा मराठी परिवार और उनकर भगीना ओम के नाम ये गीत करत हवन। और आप बोलत हवा कि ये गीत आप हमार नाम भी करत हवा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो जितना नाना नानी बा सुना जा आपके हेमा मालिनी और राजेश खाना बतावल जाता काहे नहीं, चला ई गीत के संगे आनंद ले जा।

आजकल ढेर कोई के जन्मदिन बा और ढेर कोई के जन्मदिन के फरमाइश भी आवता। पूर्णिमा फोकिरा जी बोलत हवन कि उनकर नाती के जन्मदिन बा शायन कालिया चेटी जे गुडलैंड्स के हवन। शायन के उनकर माँ पिंकी, उनकर पिताजी, दादा दादी और खुद उनकर नानी के ओर से और मौसी और सब परिवार के ओर से जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और पूर्णिमा जी हमेशा की तरह अपन सब सखी सहेली, अपन सब दोस्त, अपन सब जो नुकर ज़िले भवनजा गुशनुआ के सब कोई के नाम ये गीत करत हवन और सब कोई के शुभकामना आज शायन कालिया चेटी के। आपके जीवन में हमेशा सुख शांति रही, आपके जीवन में हमेशा प्रगति बनल रही, ऐसा हमनी के शुभकामना बा। उधर चाची शांता भी फ़ोन कर लन और शांता सुकारी जी और आपसे जमील से हवा, आपके भी नाती के आज जन्मदिन बा। नाती के नाम है नरेश। नरेश के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद उनकर पिताजी अशोक के ओर से, दादी के ओर से, दादी शांता और फिर चाची किरण हवन, चाचा रवीन और उनकर गर्लफ्रेंड निधि के ओर से। नरेश के बहुत बहुत जन्मदिन के शुभकामना और पूरा परिवार नरेश के आशीर्वाद देवता, प्यार देवता और लंबा आयु के साथ साथ

जीवन में सफलता के शुभकामना प्रकट करता। त पूर्णिमा फुकीरा के आवाज में एगो सुंदर गीत पलना में झूले श्री राम, शांता जी के नाती नरेश के नाम और फिर पूर्णिमा जी के नाती शायन काल्याचेती के नाम और जितना कोई के भी जन्मदिन आज मनावल जाता आप सब कोई के नाम।

इजन गीत अभी चरल संतोष महादेव के आवाज में, ये खास तौर पर फोंजिसक के उमा जी के नाम रहल। उमा जी जिनकर परिवार में अभी अभी एगो विवाह संस्कार होल, एगो

0: शादी विधि होल तो उमा जी ये गीत आपके नाम रहल और जितना भी परिवार में आजकल शादी ब्याह के मौसम चलता शादी ब्याह के समा बंधल बा आप सब कोई के ये शुभकामना हमने प्रकट करत है जा इस शुभ अवसर पर और ये वैवाहिक दंपति हमेशा खुश रही सुख शांति से रही परिवार के आशीर्वाद के साथ रहन सा और आपस में उन लोग के बीच जो प्रेम बा जो प्यार बा जो मोहब्बत बा वो बढ़ते रही ऐसा हमने के शुभकामना बा। और अगला गीत किशोर खिमिया के आवाज़ में एगो बहुत ही मशहूर गीत ऐसा एगो गीत जो बॉलीवुड में काफ़ी धूम मचेले बा तो ये गीत के धुन पर कैसे किशोर जी भोजपुरी गीत सजेले हवन चला एकर आनंद संगे उठाई जा।
1: RM3 Radio.
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 10:03 हो गल बा और हमने के सुने होला लोग खाली मॉरिशस में ही नहीं बल्कि मॉरिशस से बाहर भी आवन जा ऊ चाहे हमने के फोन करियन या नहीं उ लोग के जो हित मित्र बा संबंधी बा सगी संबंधी हमने के साथ संपर्क रखेला जा और विदेश में जो लोग बसल हवन जा उ लोग खातिर भी गीत मांगत हवा जा और ऐसन में साजिद हमेशा के तरह अपन दोस्त अपन सहेली सरोवर के नाम अगला गीत करत हवन साथ में जितना कोई भी ई बखत सुनत हवा जा आप सब कोई खातिर ई गीत चल लाली सिनेमा देखे एगो ऐसन गीत जोन ई प्रोग्राम में हमर प्रोग्राम में शायद पहला चला था तो हम भी सुने चाहत है हम भी देखे चाहत है कि ई गीत में का ऐसन बात बा कि साजिद इतना उत्सुकता के साथ ई गीत के मांग कर ले हवन तो चला सुनी जा साजिद के पसंद पर चल लाली सिनेमा देखे।

10:10 होला बा रात के, और अगला गीत के फरमाइश कर ले हवन भाई अब्बू जे आप ही की तरह हमेशा ये प्रोग्राम सुनेलन और फ़ोन करेलन और अपन मनपसंद गीत मांगेलन, और उनका मनपसंद गीत में या था छोर के मोरी स्वाबा या फिर धोती पोती पगड़ी। और आज आप आतिश भागीरथी के आवाज़ में ये गीत सुनने चाहता हुआ हमेशा की तरह अबू अफेज़ अयाज जहीरा रईस काला चोटी आपके दोस्त अपी उनकर पत्नी के नाम, और जितना कोई भी ई बखत काम करत हवन जा रात के, जितना कोई सफ़र में हवा जा, जितना कोई ई प्रोग्राम सुनत हवा जा, आप सब कोई के नाम ई अगला गीत।

0: RM3 Radio.
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 10:20 होल बा और अगला गीत के फरमाइश आल बा प्रभावती दादी के ओर से। प्रभावती दादी जे बहुत से हमने के श्रोता के तरह उनकर तबीयत नासाज बा, उनकर आज रोपिताल में गौदेवू रहल और बड़तवन की उनकर गोर में दर्द बा और ऐसा ढेर हमने के सुने होला लोग हवजा जे लोग के ढेर दर्द बा या तो कमर में या तो गोर में या फिर आपके कोनो ऑपरेशन होल बा या फिर आपकी तबीयत खराब चलता तो आप सब कोई के हमार ओर से यही शुभकामना बा कि आपके स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और बोलल जरा कि ई जोन बीमारी बा एकर बारे में ढेर बोलबा तो वो बीमारी सच में बुझाला आपके सामने आके बैठ गल बा। ई खातिर बीमारी के चर्चा ढेर नहीं चाहिए करे के दुख दर्द के चर्चा जितना हो सकी तो नहीं कर उ जितना ओकर चर्चा करबा उतना ओके महसूस करबा, जितना ओके भुलाए के कोशिश करबा उतना ओकर असर कमती रही। तो ये बहुत अच्छा बात बा कि आप लोग के स्वास्थ्य चाहे कैसन भी होई आप लोग जोर जाला जा अपन मनपसंद रेडियो के साथ और अपन मनपसंद गाना सुनने के फरमाइश भी करे ला जा। तो प्रभावती दादी सुने चाहत हवन एगो शादी के गीत, आपके खातिर ये शादी के गीत हम चलावे जात हैं और गल महीना के प्रभावती दादी के 80 बरिस हो गल। तो एक बार फिर प्रभावती दादी आपके जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। आज जितना कोई के भी जन्मदिन बा आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। अगला गीत आप सब कोई के नाम प्रभावती दादी के

इबा खतरा रात के 10:30 हो गल बा और आप लोग के मैसेज भी आते बा हमने के व्हाट्सएप नंबर पर और हमने के सुना था वन वकवा से सुदेवी हमेशा के तरह और आप अपन सब परिवार के नाम ये गीत अगला गीत करा था वा आत्मा राम भैया ललिता दीदी सुनीता दीदी शोभा देवीना मालेगा के राम रतन परिवार राम गुलाम कोतवारू परिवार और जितना कोई भी ये बखत हमने के सुना था वंजा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत सुदेवी जी के ओर से जे वाकवा से हवन अब हमने के सुना था वन खाली हिये से नहीं बल्कि विदेश से भी कितने जना सुना था वंजा हमने के फ़ोन करा था वंजा और मैसेज भी भेजा था वंजा और लंदन से राजेन रघुपत हमने के सुना था वन राजेन जी ये अगला गीत आपके नाम नया सिरे और फिर हमने के साथ जुड़ल हवन फ्लिक ऑफ लक से अनीता जी और अनीता जी भी हर रोज़ प्रोग्राम सुनेलन और फरमाइश करते रहेलन अपन पति राज बेटा अंतिश अंकुश बहु मनीषा आशिमा पोती हिमेशा आध्या पोता अंश सब के नाम आप ये अगला गीत करत हवा और ख़ास तौर पर MBC के जितना भी टीम ये बखत काम करता रेडियो पर सब कोई के नाम अगला गीत तो चला आप सब कोई के फरमाइश पर ये अगला गीत चली कुनाल बाबूलाल के आवाज़ में नया सिरे

ए दादा कहाँ जाला बेटी घरे का भाई हो बड़ी भेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

रात के 11 बजे में 15 मिनट कम्ती बा और ई बखत ले आप साथ देवत हव। आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 मिनट में हमने के ई प्रोग्राम समाप्त हो जाए।

और ये प्रोग्राम के साथ ही मतलब कि जैसे 11 बज जाए तो एकर बाद हमेशा के तरह सुनहरे पल प्रोग्राम चली। और अभी तक आप लोग साथ देवत हव जा इ खातिर एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सब कोई के। कोनो कोनो गीत बा जेकर फरमाइश आ रहा पहला तबा रेशम के सारी रंभा राम दोहल के आवाज़ में ई अभी चली। और एकर बाद जलसा के रात राधा के शोभेला और नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में एगो बहुत जोशीला गीत। और इस सब गीत के साथ हम आपसे विदा चाहब हमके आज्ञा दा हमने के मुलाकात काल फजर के फिर से होई हमेशा की तरह हमारी धरोहर कार्यक्रम में। और नहीं तो हमने के अगला मुलाकात ई कार्यक्रम के अंतर्गत भोजपुरी तड़का में आवत बीफे के होई। तब तक अपन ख्याल रखिया और अच्छा नींद सुता अच्छा विचार के साथ फजर के भी उठबा तो अच्छा विचार के साथ। जितना भी इधर उधर के जो खबर बा वो तो रेडियो टीवी पर सुनते बा ओकर से थोड़ा दूर रह कहे कि जितना बात अपन दिमाग में अनबा उतना वो सच्चाई के रूप लेवेला। अच्छा अच्छा सोचा अच्छा चीज देखा अच्छा चीज सुना। आप सब कोई के शुभरात्रि नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग, यू आर एम थ्री मनोरंजन रेडियो।

सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। पुरानी फिल्मों के गीत आज भी इसलिए अमर हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सुर नहीं, दिल की सच्चाई बसी हुई है। आइए उन अनमोल नगमों का स्वागत करें। जी हाँ दोस्त, आप सभी लोगों का भी स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम।

को और भी खूबसूरत बना देता है। तो चलिए आज की शाम, आज की रात को यादों के नाम करते हैं और उन्हीं खूबसूरत यादों को दोबारा फिर से जीने के लिए आप तैयार हो जाइए ऑन रेडियो मॉरिशस।

जिंदगी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना चल रही हो, पुराने गीत हमें वो दो पल रुक कर जीना सिखा देते हैं। इसी सुकून के साथ बने रहे, हमारा साथ यूं ही देते रहे। ये गीत सिर्फ रेडियो पर नहीं बज रहे हैं, ये हर उस दिल में गूंज रहे हैं जहां प्यार, यादें और एहसास आज भी जिंदा है। और ये है आपका सुनहरे पल।

0: वैसे हर लफ्ज, हर धुन और हर आवाज में एक जादू है मेरी जान, जो सिर्फ पुराने बॉलीवुड के गीतों में ही मिलता है। आज उसी जादू का आनंद लीजिए और आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत खूबसूरत नगमों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

चाहते हो? तुम लोग उदास रहना चाहते हो?

रात बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर चाय पीने का इरादा है तो हम तो कहेंगे कि एक कप चाय, ठंडी हवा और रेडियो मॉरिशस पर बजते पुराने गीत जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का असली मजा इसी में है। बिल्कुल जी, अगला नगमा हमारी तरफ से उन तमाम सुनने वालों के नाम जो प्यार से शिद्दत से बैठे हुए हैं और जो हमारा साथ गुनगुना रहे हैं।

हर जेनरेशन का अपना म्यूजिक होता है, लेकिन एवरग्रीन गाने सबके दिलों को एक एक साथ जोड़ देते हैं। आज हम वही दिलों का रिश्ता लेकर आए हैं। कभी अपने माँ बाप के साथ बैठकर ये गीत सुनिए और समझ जाएंगे कि असली संगीत किसे कहते हैं। ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, दिल से आपके लिए।

कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और आज हम उन्हीं गीतों का खजाना लेकर आपके बीच हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हो और बस हर इन खूबसूरत इमोशंस को फिर से जी रहे हो। बस यूं ही साथ देते रहे कि निशा का ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और सुनहरे पल के खूबसूरत शो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

संभल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मैंने आरडी बर्मन को उसके बचपन में देखा, उस वक्त जब मैं मिस्टर एसजी बर्मन के फादर के साथ काम किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि ये म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। ये वेस्टर्नाइज ज़्यादा करते थे म्यूजिक को, तो बर्मन साहब को ज़रा इस पर शिकायत होती थी। तो एक दिन हमसे कहने लगे कि भाई तुम इसके चाचा हो, तुम ज़रा इसको कहो। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा देखिए अंकल, बाबा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखूंगा, लेकिन मैं उनके राह पे नहीं चलूंगा, मैं अपना रास्ता कुछ अलग निकालूंगा। आर डी बर्मन एक एरा था, एक स्कूल था हिमसेल्फ, वो लेवल मेरे ख्याल में दोबारा आना आसान नहीं है।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस